मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 980 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज बुधवार है शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो घड़ी में भोर के 5:56 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है इस मंगल ध्वनि के साथ।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। भोर के 6 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर में पहले आप हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना

0: लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta yesterday, Mr. Modi said, India follows path of development, not expansionism.
0: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: जीव के प्रत्येक कार्य, कर्म, व्यवहार, संकल्प, विकल्प, प्रत्यक्षदर्शी और साक्षी ईश्वर स्वयं होता है। परमात्मा का अपने अंश, जीवात्मा की देखभाल उसका निजी दायित्व है। जीव के लिए यह संसार विविधताओं का विराट संकलन है, जैसे तेज सूर्य का, अमृत चंद्रमा का, ज्ञान ब्रह्मा जी का, शक्ति शिव की, आदर्श श्री राम का, योग वैराग्य श्री कृष्ण का, नीति नियम विदुर जी के, त्याग महर्षि दधीचि का, भक्ति हनुमान जी की, प्रीति शबरी की, गुरु नानक देव जी, गौतम बुद्ध, महावीर, ईसा मसीह की क्षमा, दया, अहिंसा आदि जीवात्मा के लिए है। संसार में विविधताओं का सृजन, उसका करिश्मा परमात्मा सत्यचित आनंद भी है, और उसने जीव को सत्यम शिवम सुंदरम बनाकर एकाकार करना चाहा है। उपनिषद में जिक्र आता है, मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति है। रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा संख्या 125 में उल्लेख आता है, नरतन सम नहीं कब निज देही। किंतु बड़ी विडंबना है कि जीव मिथ्या अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, मोह माया में निबद्ध होते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगता है। कथनी करनी रहनी की एक रूपता समाप्त हो जाती है। फलतः है जीव को अपने दुर्गुणों पर पर्दा डालने के लिए आए दिन झूठ, फरेब और दाव पेंच का ताना बाना बुनना पड़ता है। वह अपने को एको हम द्वितीयो नास्ति मानकर दैहिक दैविक मानसिक वेदनाओं से ग्रस्त हो जाता है। ईश्वर द्वारा जीव को चेतावनी दी जा चुकी है, निर्मल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। कालक्रम में जीव माता पिता, परिवार और समाज से प्रदत्त सुविधाओं दायित्वों को अधिकार समझ लेता है, और यही जीव और ब्रह्म के बीच दूरियां बढ़ाने का कारण बनता है। जबकि जीव और ब्रह्म के बीच अन्योन्याश्रय संबंध अटूट है, और ये संबंध अन्य कितने ही रूपों में अभिव्यक्त है। ऐसा संबंध स्थापित करते ही जीव के मानसिक आत्मिक दोनों बल संतुलित हो जाते हैं। द्वापर युग के महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सारथी बनाकर उसे प्रमाणित भी कर दिया। संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में प्रार्थना की

0: चाहो न सुगति सुमति संपत्ति रिद्धि सिद्धि विपुल बढ़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। वस्तुतः हमारे उच्च विचार ही संसार को सुंदर बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे मन में होता है। अत्यधिक ज्ञान हेतु अपराज्ञान से ऊपर पराविद्या की आवश्यकता होती है। इस विद्या द्वारा जीव जीवात्मा परमात्मा सहित संबंधों का ज्ञान आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्राप्त होता है और ये ज्ञान भूत वर्तमान और भविष्य तीनों के बीच का एक सुसंस्कृत और संकलित अध्ययन है।
1: अभी आप आज का चिंतन सुन रहे थे। विषय था जीव की गति और नियत। वाचक स्वर जशपाल सिंह राठौड़ का था। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरत का है।

आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारी तीनों सभाओं के कार्यक्रमों की जानकारी। 7:10 पर खेत खलिहान में कृषि में नीम का महत्व विषय पर जानकारी दी जाएगी। 12:50 पर ग्रामीण श्रोता सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान, जिसमें आज जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक विषय पर ग्रामीण श्रोता सुनेंगे जानकारी। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7:00, जिसमें व्हाट्सएप, ईमेल और पत्रों पर आधारित आपके पत्रों के उत्तर दिए जाएंगे। उपलब्ध हुआ तो बाजार भाव और मौसम की जानकारी भी चौपाल कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। मानसगान आप सुनेंगे 7:20 पर। आज सुनेगा भाग संख्या 298, मुख्य स्वर ए हरि हरण का होगा। मरुमंगल कार्यक्रम हमारे केंद्र से होता है 9:10 पर। आज कलाकार होंगे प्रभु राम। कार्यक्रम सुप्रभात 7:30, 9:45 पर आप सुनेंगे युगल फिल्मी गीत। 10:00 कार्यक्रम होगा सुहाना सफर। प्रोग्राम सैनिकों के लिए दिन में 11:00। 12:05 पर कुछ बातें कुछ गीत, चंदौर फिल्मी गीतों का लुत्फ आप ले सकते हैं। 2:30। शाम 7:45 पर फिल्म संगीत होगा। एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात 8:00। और रात 10:00 आप सुनेंगे हेलो मन भवन। निर्देशक संयोजक नवीन सिसोदिया, प्रस्तोता संजय बैद। पर सैराइकी शाम 5:00 युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आपकी पसंद और टुडे हिस्ट्री विषय पर जानकारी होगी। बहनों के लिए उनका अपना कार्यक्रम महिला जगत होगा 1:05 पर, जिसमें बच्चों को दें लाड़ प्यार के साथ अनुशासित दिनचर्या, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में हमारा योगदान, दिखावे से बचें और औषधियों के गुणों का खजाना है जामुन। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें 9:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे हास्य झलकी सेल्फी सुख। इसके निदेशक नवीन सिसोदिया, लेखक डॉक्टर विशाल छाबड़ा। इसमें प्रतिभागी हैं डॉक्टर विशाल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, रश्मि छाबड़ा, पुष्पेंद्र सिंह, सुमन कंवर, स्मृति बोहरा और डॉक्टर अक्षत चावला। समय नोट करें 9:30 और आप सुनेंगे हास्य झलकी सेल्फी सुख।

सुनना ना भूले। रात 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, और रात और शाम 6:40 पर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होगी। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की तीनों सभाओं में प्रसारित मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने को है। अब पहले संस्कृत में, 7 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध, समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए।

फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हर सुबह हमें ये
1: बहुत महत्व है और भी नीम में कई औषधीय गुण होने के कारण वो अपनी जैविक खेती में भी बिंगो बहुत अच्छा उपयोग है और वर्तमान में अपने कैसे भी ज्यादातर महत्वपूर्ण वृक्ष है जो को मान्य गया है। इनके साथ साथ नीम की देख लो के निमोली है, पत्ता है, छाल है, ये सारी की सारी बिंगी अपने औषधीय गुणों के कारण हरेक तरीके से मांग काम आवे और यह केस का भी अब जो को ये टाइम में अपने वो वृक्ष है जो को बड़ो ही महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है। नीम का जका वृक्ष है वह ज्यादा में ज्यादा जका लगाना चाहिए और औषधीय गुण होने के कारण इनको अपने जीवन में बड़ो ही महत्व है। इनके साग साग विशेष तौर जो कि आप खेती पाती करा बी में भी इनको बड़ो महत्व है तो इन खातर आपने ज्यादा में ज्यादा नीम का वृक्ष जका लगाना चाहिए और बाकी सार संभाल जकी करनी चाहिए। तो सारों पहल पोता है कि जितनी भी आप खेती पाती करा चाहे सावणी की हो चाहे हाड़ी की हो वह मैं टेम टेम सारू आप देखभाल करता रहा। जब भी मैं कोई हारी बीमारी कीड़ो कांटो लगे तो भी मैं विशेष तौर जका नीम का कीटनाशक है बांगो आपने उपयोग है जो करना चाहिए। जे आप टेम सारू नीम का कीटनाशक से उपयोग करा तो बांशु आप रोकथाम कर सका के एक तो है सस्ता हो आंशु अपने वातावरण जो दूषित कोनी हो तो जहाँ नीम की सर्वाधिक उपयोगी जकी नीम गिरी निम्बोली का बाव है भी मैं तेल की मात्रा 40 ले गए 50 सैकड़ा तय हुआ अजा डिरेक्टिन 0.3 ले गए 0.35 सैकड़ा तय हुआ निम्बिडिन 1.2 ले गए 1.6 सैकड़ा तय हुआ और निम्बिन 0.1% तय हुआ विपिनिन 0.15 सैकड़ा तय हुआ। हमें सारों ज्यादा उपयोगी अजा डिरेक्टिन नामक रसायन है और नीम की निम्बोली की गिरी 40-45 सैकड़ा ताई आवरण 55-60 सैकड़ा ताई जो हुआ किसान भाई नीम के महत्व की बात करा वो एक बहु उपयोगी वृक्ष है। इंगा प्रत्येक भाग पत्ती फूल फल जड़ तना को उपयोग जो करो जे नीम मनुष्य की अनेक बीमारियां जिया कैंसर है, खाज है, खुजली है, चरम रोग है, रक्त अल्पता, हृदय रोग, पीलिया अन्य रोकने में भी मददकारी है। इनके अलावा शरीर में इनके उपयोग से कोलेस्ट्रॉल में कमी आवे। नीम में पाए जाने वाले रसायनों में से वर्तमान में दंत मंजन है, सौंदर्य प्रसाधन, शैंपू, औषधियां, कीटनाशक रसायन, जैविक खाद ए व्यावसायिक उत्पाद जका तैयार कर जाए। जैविक खेती में नीम को विशेष महत्व है किसान भाइयों। ईशु प्राप्त रसायन शु विभिन्न प्रकार का कीटनाशक रसायन तैयार कर जाए जके शू के फसलों पर छिड़काव कर पर्यावरण एवं मनुष्य को नुकसान से भी बचाया जाए। किसान भाई नीम का खेती के में महत्व की बात करा तो नीम की निमोली ने पीस कर 100 ग्राम पाउडर पौधे के चारों तरफ 3 इंच गहराई में डालने से भूमिगत हानिकारक कीटों को नियंत्रण हो जाए। किसान भाई 5 लीटर देसी गाय के छाछ में 5 किलो नीम का पत्ता डाल के 10 दिन तक आपने सड़ाना चाहिए। बिंग बाद में पत्तियां ने निचोड़ के अच्छी तरह बिंग रस है जो निकाल लेना चाहिए। बिन मिश्रण ने छान के 150 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ आपने छिड़काव करना चाहिए जैसे कीटों को नियंत्रण हो जाए। किसान भाई 5 किलो

का पत्ता 3 लीटर पानी में घाल के अपने उबालना चाहिए। जब अदोक रह जावे तो बिना छान के 150 लीटर पानी में घोल तैयार करके बिमे 2 लीटर गोमूत्र मिला के ई मिश्रण ने 1 एकड़ में फसल पर कीटा के नियंत्रण खातर आप छिड़काव जो कर सका। किसान भाइयों, नीम बीज की निम्बोली पाउडर 1.25 किलोग्राम ने जे आप 100 किलोग्राम गेहूं बीज में मिला देवा तो वो लगभग यहाँ गैस का भी अपने काफी टाइम तक जो को सुरक्षित रह सके। भी में कोई हरी बीमारी कीड़ो कांटो जो को लागे को नहीं। नीम बीज का 9 ग्राम पाउडर ने 9 लीटर पानी में घोल बना के 0.1% सांद्रता को घोल बना के छिड़काव करने से कीटा ने पौधे से दूर रखो जा सके। जे आप नीम के सूखे पत्ता ने भंडारित अनाज में रख दें तो गेहूं की इल्ली है, खपरो है, भरंग है, इसे कीटा चुम्बानसू बचाया जा सके। तो इन तरीके से नीम को अपने जीवन में बड़ो महत्व है और विशेष तौर जैविक खेती के माँ भी इनको बड़ो महत्व है। तो आपने नीम की सार संभाल करनी चाहिए और इनके जितना भी औषधीय गुण है बांसू आपने अपने जीवन में उपयोग है जो करना चाहिए। तो अब हूँ खेत का नहीं चालू। राम राम साह।

0: खपरो है, भ्रंग है, इशक कीटा शू मान शू बचाओ जा सके। तो इन तरीके से नीम को अपने जीवन में बड़ो महत्व है और विशेष तौर जैविक खेती के माँ भी इनको बड़ो महत्व है। तो आपने नीम की सार संभाल करनी चाहिए और इनके जितना भी औषधीय गुण है बांसू आपने अपने जीवन में मांगो उपयोग है जो करना चाहिए। तो अब हूँ खेत का नहीं चालू। राम राम सा राम राम।
1: नीम में कृषि का महत्व, खेतिहर वास्ते कार्यक्रम में अभी ग्राम श्रोता सुन रहे थे जानकारी। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं बैरागनाथ की आवाज़ में ये लोक भजन।

अभी आपने बैरागनाथ की आवाज़ में ये लोक भजन सुना। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए मानस गान। आज सुनिए भाग संख्या 298।

रावण का दूत शुक, जिसको उसने विभीषण के पीछे पीछे श्रीराम की सेना का भेद लेने के लिए भेजा था, लौटकर रावण को वानर सेना की विशालता और बल का विवरण देता है। उसने द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, शट, जामवंत आदि वीरों के अतुलनीय बल की झलक देखी थी और सहज ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। शुक ने रावण को वास्तविकता से परिचित कराने का भरसक प्रयत्न किया। वे करोड़ों शूरवीर रावण को सहज ही परास्त कर देंगे। सभी वानर समुद्र को सोख लेने या पर्वतों से उसे पाट देने को उतारू हैं, केवल राम की आज्ञा उन्हें नहीं मिल रही। स्वयं शुक तथा अन्य गुप्तचरों की भी उन्होंने मारपीट कर दुर्गति कर दी थी। वह तो श्रीराम की सौगंध सुनकर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। शुक संवाद को रावण हंसकर टाल देता है, किंतु जब उसने लक्ष्मण का पत्र उसे दिया तो रावण एक बार भय से कांप गया।

अभी आप मानस गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए सुप्रभात। दोस्तों,

क्या होता अगर सूरज अपनी तपिश किसी से नहीं बांटता? क्या होता अगर नदियां अपना पानी आगे लेकर नहीं जाती? पेड़ अपने फल किसी को देते नहीं तो ये दुनिया मरुस्थल हो जाती है। कमाल की बात यह है कि आज तक इतना बांटने पर भी ना तो सूरज का प्रकाश कम हुआ है और ना ही पेड़ों के फल कभी कम हुए हैं। और तो और कभी नदियों के पानी में भी कोई कमी नहीं आई। अगर हम प्रकृति से सीखें तो जानेंगे कि प्रकृति हमें सिखाती है बांटना। हमारे पास जो भी ज्यादा मात्रा में है, जिसकी जरूरत हमसे ज्यादा किसी और को है, हमें उसे सहर्ष बांटना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, कपड़े, जूते, खाना, बिस्तर, पैसे, और तो और प्रेम को भी बांटना चाहिए। अगर हम अपनी खुशियां किसी के साथ बांटेंगे तो हम और नई खुशियों की जगह बनाएंगे अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों, चीजें बांटिए, खुशियां बांटिए, प्रेम बांटिए, लोगों के साथ मिलजुल कर रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़।

हम सब उस्ताद हैं। इस फिल्म में आपने किशोर कुमार को सुना। सुप्रभात कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। दोस्तों, जिंदगी में कदम कदम पर मुश्किलें हैं, बाधाएं हैं, लेकिन कभी इनसे हार मत मानो। चलते चलो और रुको मत, बैठो मत, लगे रहो। राह में मुश्किलें होंगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा। तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे बढ़ो तो सही। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे। तुम एक राह चुनो तो सही, तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।

संपर्क फिल्म में भी आपने यशोदास को सुना? सुप्रभात कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। हमारे मीटर्स हैं मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, DRM 909 किलोहर्ट्स, FM 100.1 किलो मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन ए

IR पर भी आप हमारे प्रसारण सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुप्रभात। दोस्तों, अक्सर आपने बड़ों से सुना होगा कि पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती हैं। एक सच्चा मित्र तो वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ता और सही मार्गदर्शन करता है। कभी हमसे झूठ नहीं बोलता, कभी अपनी बात से पलटता नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो हमसे कुछ छिपाता भी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों, अच्छी पुस्तकें भी हमारे जीवन की हर परिस्थिति से हमें अवगत कराती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं। प्रेरणा का असीम स्रोत, ज्ञान का अपूर्व भंडार और राष्ट्र समाज का दर्पण होती हैं पुस्तकें। पुस्तकें विकास की सूत्रधार होती हैं। इनके द्वारा ज्ञान विकास की अविरल धारा मानव मस्तिष्क में नवीन स्फूर्ति और रचना का प्रसार करती हैं। पुस्तकें प्रचार का साधन भी हैं। पुस्तकों से ही हम अनेकों महत्वपूर्ण हमारे देश में क्रांतियां हुई। धर्मगुरुओं, दार्शनिकों और समाज सुधारकों ने अपनी विचारधाराओं द्वारा दुनिया में व्यापक परिवर्तन किया। पुस्तकें मनोरंजन का साधन है। अनेकों उपन्यासकार, कवि, कहानीकार, निबंधकार की रचनाओं में मनोरंजन मौजूद है। इसलिए दोस्तों, पुस्तकें हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास में अत्यंत सहायक होती हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस लघु विज्ञापन से पहले आपने पराया धन फिल्म में किशोर कुमार और आशा को सुना। दोस्तों, भगवान की बनाई इस सृष्टि में जिसमें करोड़ों जीव जंतु, पशु पक्षी, फल फूल, पेड़ पौधे मौजूद हैं, हम एक ऐसी धरती पर रहते हैं जहां अनेकों खनिज, सोना चांदी, लोहा हीरे मोती, बड़े पहाड़, सब कुछ मौजूद है। इस सृष्टि ने हमें अनगिनत वस्तुएं दी हैं। हमारा शरीर उन सभी खनिजों से बना है जो इस धरती में पाए जाते हैं। मानव शरीर सक्षम है, जो बुद्धि मानव में है वह किसी और प्राणी में नहीं, इसलिए हम मानव जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि मानव में प्रेम, करुणा, मानवता, ये सभी भाव मानव में उपस्थित हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत ने क्या खूब मानवीय वर्णन अपनी कविता में किया है और कहा है, सुमन है विहंग सुमन सुंदर,

मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी तिल सुषमा से तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम।

लता और सुरेश वाडकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यासा सावन। यह है प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। सुप्रभात से अपने दोस्त हरप्रीत को अनुमति दें और आप सुनते रहिए ये खूबसूरत गीत।

अभी आप सुप्रभात कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 8 बजने को है। अब पहले समाचार प्रभात, उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर खबरनामा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और असर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर

0: मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रंक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वही 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी

0: बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में तीन व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
2: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: इंडिया एंड इंडोनेशिया स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड कॉल फॉर डिसाइसिव एंड कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट दिस मेनेस। Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime

0: व्यवस्था में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स है, हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: वजीर आजम मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योग्यकर्ता में मशहूर प्रम्बलन मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके इस दौरे से गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों की अहमियत का इजहार होता है, जिनकी वजह से भारत और इंडोनेशिया 1000 साल से ज़्यादा अरसे से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्रम्बलन 9वीं सदी में तामीर किया गया था और ये इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो जुनूब मशरकी एशिया के बेहतरीन तामीराती शाहकारों में शामिल होता है। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिये में शिरकत की। खसूसी इशारे के तौर पर इंडोनेशिया के सदर जनाब सुबियांतो ने भी वजीर आजम मोदी के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत में हालिया बरसों में काबिले जिक्र तरक्की को उजागर किया। भारत ने ये तरक्की अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर स्टार्टअप इनकलाब तक की है और सामाजिक तरक्की के प्रोग्रामों में खातिरख्वाह तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
0: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ करते।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हममनसब एंथनी एल्बनीज के साथ 3री सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहाँ वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही $33 अरब से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे $1 खरब तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनअती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम के दफ्तर PMO ने मुख्तलिफ शोबों पर एल नीनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में यह मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरतेहाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखिर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि ज़रूरत पेश आने पर ज़रूरी इकदामात किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन ज़िलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की ज़रूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमू सूरत हाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरतेहाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा

0: रकम मशकूक मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवसुस से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में तीन तजारती जहाज़ों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमरीका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमरीकी फौजों ने यह हमले एक बैन अलावामी गुजरगाह में कमर्शल जहाज़ों पर हमले करने के का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताज़ा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने एक लाइसेंस को भी मनसूख कर दिया है जिसके तहत अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को ख़त्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख्त की इजाज़त दी गई थी। अमरीका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मनसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और ज़रूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एन्जो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकत दारी के सुनहरे बाब का आगाज। वज़ीर आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफ़े पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाक़े में कम अज़ कम 3 के हलाक और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की खबर को अपने पहले सफ़े पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद बैन अलावामी खबरों की सुर्खियाँ इस तरह हैं, धमकियाँ जारी रहीं तो हतमी माहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, अमरीका का तुर्किया पर आई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान,
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलावामी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने एल नीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाब्तगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुगम संगीत में लीजिए सुनिए जगजीत सिंह को।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप जगजीत सिंह को सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 9 बजने को है हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से होंगे।

0: नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। इंडोनेशिया में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बन रही मुकुंदरा टनल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर समझौता हुआ और मॉनसून के अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में दोनों देशों के शीर्ष व्यापारिक नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। उनका प्रवासी भारतीयों की एक विशाल सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री ने जकार्ता में भारतीय समुदाय के स्वागत समारोह में भाग लिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में भारत में बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर स्टार्टअप क्रांति और सामाजिक विकास कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
1: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शान से जिंदगी जीने आरंभ करते।
0: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। एक्सप्रेसवे पर कई जगह सड़क टूटने और निर्माण में खामियों की खबरों के मद्देनजर वे सड़क निर्माण की गुणवत्ता को परखेंगे। श्री गडकरी दोपहर में दौसा और उसके बाद बूंदी जिले में स्थित लबान इंटरचेंज पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ इस निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री कोटा के पास मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक बन रही दरा टनल का जायजा लेंगे और निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। एनएचएआई के राजस्थान जनरल मैनेजर संजय कदम ने बताया कि निर्माण कार्य में कमी पाए जाने से संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाटूश्याम मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित प्रस्तावित रेलवे स्टेशन भवन का निर्माण राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में मंदिर ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि नए रेलवे स्टेशन के निर्माण से खाटूश्याम जी आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी। ये स्टेशन सीकर रिंगस रेलखंड पर पलसाना और बावड़ी ठिकरिया स्टेशनों के बीच बनाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए रेल संपर्क और यात्री सुविधाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। जयपुर के कमला नेहरू नगर में कल हुई सड़क दुर्घटना की जांच के लिए जिला प्रशासन ने 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने समिति को 5 दिनों में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समिति में पुलिस, परिवहन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जयपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड के अधिकारियों को शामिल किया गया है। समिति दुर्घटना स्थल का निरीक्षण कर दुर्घटना के कारणों, राहत और बचाव कार्यों तथा विभिन्न विभागों की कार्रवाई की समीक्षा करेगी। गौरतलब है कि इस हादसे में बेकाबू तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: नर्मदा नदी के जल के बेहतर उपयोग को लेकर लंबित नर्मदा अवार्ड लाभार्थी राज्यों राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच सहमति बन गई है। कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल की उपस्थिति में हुई बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और अन्य तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि इस समझौते से सहकारी संघवाद की भावना और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े इस निर्णय से जालौर और बाड़मेर सहित पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को फायदा मिलेगा। प्रदेश की जल सुरक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी। इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ फसलों की बुवाई, मॉनसून की स्थिति और अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में हुई बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अगले दिनों में राजस्थान गुजरात हरियाणा और पंजाब में वर्षा की संभावना के चलते बुवाई में तेजी आने की उम्मीद है। इस दौरान कम वर्षा वाले जिलों के लिए आपातकालीन कार्य योजना बनाने सहित उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता की समीक्षा की गई। साथ ही जलाशयों में जल भंडारण पर चर्चा हुई। कृषि मंत्री श्री चौहान ने कल ही प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य कृषि उद्यमियों और किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: राज्य सरकार ने उद्यानिकी फसलों के सुरक्षित भंडारण और बेहतर विपणन को बढ़ावा देने के लिए सोलर क्रॉप ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। योजना के तहत 70 और 100 किलोग्राम क्षमता वाले ड्रायर पर अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से धनिया, मेथी, टमाटर, मिर्च और पालक जैसी फसल उगाने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। 12 जिले में रबी सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर धनिया की खेती होती है। एक किसान अधिकतम 5 इकाइयों की खरीद पर 7,00,000 रुपए तक का अनुदान प्राप्त कर सकेगा। इससे फसलों की गुणवत्ता बनाए रखने और किसानों को बेहतर बाजार मूल्य मिलने में सहायता होगी। और अब मौसम। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर, जोधपुर और राजगढ़ से होकर गुजर रही है। वहीं आज से दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आज बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर को छोड़कर समूचे राज्य में बरसात का येलो अलर्ट है। वहीं विभाग ने 12 झालावाड़ और कोटा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच कल करीब 20 शहरों में हल्की से मध्यम बरसात हुई। डूंगरपुर में कल रात अच्छी बारिश हुई। भरतपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर सुबह तक जारी रहा। सवाईमाधोपुर और नागौर में रात भर बरसात की झड़ी लगी रही। डीग में सुबह से ही बारिश का सिलसिला बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे। इंडोनेशिया में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज कोटा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रही मुकुंद्रा टनल परियोजना का निरीक्षण करेंगे। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच नर्मदा अवार्ड के लंबित भुगतान के निपटारे पर समझौता हुआ। और मॉनसून के अगले 2 दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मरुमंगल कार्यक्रम में लीजिए सुनिए प्रभु राम को।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिले सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94-144-67-186।
1: मरुमंगल कार्यक्रम में आप प्रभु राम को सुन रहे हैं।

मरुमंगल कार्यक्रम में आज आप प्रभु राम को सुन रहे थे। मीडियम वेब 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। हम आपको सुनवा रहे हैं हास्य झलकी सेल्फी सुख। इसके निर्देशक नवीन सिसोदिया, लेखक डॉक्टर विशाल छाबड़ा। इस झलकी के प्रतिभागी हैं नवीन सिसोदिया, डॉक्टर विशाल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, रश्मि छाबड़ा, पुष्पेंद्र सिंह, सुमन कंवर, स्मृति बोहरा और डॉक्टर अक्षत चावला। तो आइए सुनते हैं हास्य झलकी सेल्फी सुख।

0: अरे रुको रुको रुको, कोई हिलेगा नहीं।
1: क्या हुआ?
0: देखो ना, सूरज की रोशनी परफेक्ट, ये फूल परफेक्ट, ये पार्क परफेक्ट, और सबसे ऊपर मैं परफेक्ट। वैसे वो तो मैं हूं ही
2: परफेक्ट। सोनिया, तुमने वो जोक सुना है? तुम्हारे कॉन्फिडेंस को देखकर याद आ गया।
0: कौन सा?
2: यूं के चूहे ने बिल्ली को किया प्रपोज, हाथ में लेके रेड रोज बोला आई लव यू। बिल्ली बोली जाके आईने में अपनी शक्ल तो देख। उस पर चूहे ने कहा शक्ल को छोड़, तू मेरा कॉन्फिडेंस तो देख।
0: तू तो ठहर जा पिंटू के बच्चे, तुझे तो मैं बताती हूँ।
3: लुक लुक लुक गाइस, दिस इज सो एस्थेटिक ना।
0: हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, सुन लो सब लोग, ऐसी एस्थेटिक जगह पर मैं सेल्फी न लूं ये हो नहीं सकता, और कोई मुझे रोके ये मैं हॉर्न नहीं दूंगी।
1: लगता है आने वाले समय में ये डायलॉग जेन जी की डिक्शनरी में ऐड करना।

0: पड़ेगा।
1: और स्कूलों में पढ़ाया जाएगा सेल्फी लो आगे बढ़ो, सेल्फी लो आगे बढ़ो।
2: राम राम टावरो,
3: राम राम राम काका,
4: राम राम काकी। काका गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग काकी ब्रो, माय स्वीट काकी।
2: अरे छोरा छोरी, पार्क घूमने आया हो या मोबाइल में घुसने आया हो, मैं कितनी देर से देख रहा हूँ।
5: काका हम मेमोरीज बना रहे हैं, आई मीन टू से यादें संजो रही हैं।
6: बेटा मारे टाइम में तो यादें दिल में संजोई जाती थी।
2: हाँ पर आजकल मोबाइल में ही रखी जाती हैं। मोबाइल गुम तो यादें भी गुम, और पासवर्ड गुम तो पूरा जीवन ही गुमसुम।
4: काका यू आर सेवेज।
2: और तू हिंदी से इतनी नाराज क्यों रहती रिया बेटा?
0: काका ये जैन जी है।
6: गंजी है मतबल?
2: गंजी नहीं जैन जी है, जैन जी।
6: अच्छा तो मतबल रिया और जैन है।
2: अरे जैन नहीं है जैन जी, मतबल आज की जनरेशन। वैसे ये ना बात बात में अंग्रेजी की बम रोड़ने वाले होते हैं।
6: अच्छा मैंने तो क्या ही समझ लिया था।
0: आज समय बहुत बदल गया है काका, भाई बहन दोस्त सब ब्रो हो गए हैं, बातचीत के तरीके भी बदल गए। पहले लोग पूछते थे आप कैसे हैं, परिवार में सब कैसे हैं, अब पूछते हैं व्हाट्सएप ब्रो, मेरा स्टेटस देखा क्या, मेरी स्टोरी देखी क्या।
2: हाँ बेटा रोहन, पहले लोग दूसरों के चेहरे पढ़ लेते थे, आजकल मोबाइल के कैमरे इतने बड़े आ गए कि सब कुछ बहुत ही साफ दिखाई देता है, बस घर वालों के टाइम ही ना पिक्सल फट जाते हैं।
5: क्या मतलब काका?
2: मतबल बेटी, घर में माँ बैठी हो उसकी आंखों की उदासी नहीं दिखती, पिता बैठे हो उनकी चिंता नहीं दिखती, और बूढ़े दादा दादी बैठे हो उनका अकेलापन नहीं दिखता, लेकिन चेहरे का एक छोटा सा पिंपल तुरंत दिख जाता है।
6: पहले लोग अपनों के बीच परिवार के साथ बैठते थे,
2: और अब परिवार के बीच में भी बैठते हैं तो मोबाइल के साथ ही बैठते हैं।
0: वाह काका, बात तो सही कही आपने।
2: सेल्फी बुरी नहीं है बेटा, लेकिन जब आदमी को अपने अलावा दूसरा दिखाई देना ही बंद हो जाए ना, तब सेल्फी सेल्फिश बना देती है। क्यों बेटा रिया, अंग्रेजी ठीक बोली ना मैंने?
4: यस काका।
2: वैसे अब तो मोबाइल का युग ही आ गया है।
4: स्मार्टफोन का युग काका, स्मार्टफोन का।
2: नाम चाहे जो रख लो, फोन तो स्मार्ट हो गया पर आदमी, पहले जो गांव में पढ़ा लिखा नहीं होता था ना, जानते उसे क्या कहते थे?
6: क्या कहते थे?
2: अंगूठा छाप। और अब फेसबुक पर भी अंगूठा, इंस्टाग्राम पर अंगूठा, व्हाट्सएप पर अंगूठा, हर रील पर अंगूठा, दिन भर अंगूठा ही अंगूठा। मारे हिसाब से फोन तो स्मार्ट हो गया पर आदमी फिर से अंगूठा छाप हो गया।
5: काका अंगूठा छाप नहीं, अंगूठा स्टार हैं हम।
4: वी आर द डिजिटल सुपरस्टार्स काका।
2: अरे वाह, फिर तो सरकार को इन डिजिटल सुपरस्टार्स के लिए ना नई योजना निकालनी चाहिए, है राष्ट्रीय अंगूठा विकास योजना। चाहे इनका शरीर आराम करता है पर भाई इनका अंगूठा तो काम करता है दिन भर।
7: लो जी गर्मा गर्म चाय लो।
5: रुको रुको रुको,
7: क्या हुआ जी?
5: पहले फोटो, क्योंकि ऐसी जगह पर मैं सेल्फी न लूं ये हो नहीं सकता, और कोई मुझे रोके ये मैं होने नहीं दूंगी।
0: फिर क्या करेंगे?
5: वीडियो बनाएंगे।
0: फिर
5: रील,
4: देन स्टोरी, देन अपलोड, देन हैशटैग, देन वायरल, हैशटैग टी विद फ्रेंड्स, हैशटैग वाइब्स, हैशटैग वायरल रील।
7: और चाय कब पियोगे? मुझे कब चाहिए?
5: अरे रुको भैया, बढ़िया सी सेल्फी तो लेने दो, मेरे स्नैपचैट की स्ट्रीक टूट जाएगी।
7: मेरे कप खाली कर दो, मेरे दूसरे ग्राहक चले गए तो मेरी तकदीर फूट जाएगी।
6: हम लोग तो चाय को पीकर तरोताजा होते हैं।
2: और आज के ये बच्चे चाय की फोटो डालकर ही हो जाते हैं।
7: सही कहा काका, पिछले हफ्ते एक ग्राहक आया, एक घंटे तक फोटो खींचता रहा और चाय पीना ही भूल गया।
0: फिर
7: क्या भैया, मोबाइल देखते देखते बिल भर कर चला गया।
1: मतलब ना चाय पी ना कुछ खाया?
7: हाँ बस सेल्फियों से ही पेट भर लिया। कमाल के लोग होते हैं।
5: सब लोग कप ऊपर करो, टी सेल्फी टाइम।
2: मैं तो नहीं ऊपर करूँगा भाई।
5: क्यों काका?
2: मैं तो चाय पी कर ही मजे लेता हूँ, उसके साथ फोटो खिंचवा।

0: me.
1: वाह, क्या ब्यूटीफुल जगह है
2: भाई। यहाँ तो हर तरफ कंटेंट ही कंटेंट है यार।
3: Really guys, this place is giving me main character vibes.
4: ये रिया बार बार गाए गाए क्यों कर रही है? पहाड़ पर कहाँ चढ़ेगी गाय?
0: रिया बेटा, तू हिंदी में भी कष्ट कर दे, नहीं तो तेरी काकी को समझाते समझाते मेरी सांस फूल रही है।
3: काकी गाइस, तो मैं अपने दोस्तों को कह रही थी, उनको बता रही थी कि कितनी ब्यूटीफुल जगह है ये।
0: अच्छा, तो जगह की सुंदरता का आनंद लो, हर 5 कदम पर फोटो लेना जरूरी है क्या बेटा?
5: काका, अगर फोटो नहीं ली तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम यहाँ आए थे?
0: वाह, लोग अपने लिए घूमने कम आते हैं, दुनिया को सबूत देने आते हैं कि घूम कर आए। वाह भाई वाह, वाह।
2: अरे काका, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ता है।
0: हाँ, और घर में भले ही इनएक्टिव रहो दिन भर।
5: रिया, ये देख मेरी नई पोस्ट।
3: लाइटिंग ठीक है, पोस्ट ठीक है, लेकिन मेरी वाली थोड़ी ज्यादा एस्थेटिक है।
5: इम्पॉसिबल,
3: देखो रोहन।
1: वाह,
2: लगता है अब तो मुकाबला शुरू हो गया।
1: सेल्फी प्रीमियर लीग,
6: आज का मुकाबला सोनिया सेल्फी सुपर क्वींस वर्सेस रिया वायरल वॉरियर्स।
1: तालिया।
5: मैं हार नहीं मानूंगी।
3: नीदर विल आई।
0: राम बचाए, इन्होंने पहाड़ों पर आकर भी यहाँ की सुंदरता नहीं देखनी, अपने मोबाइल में अपनी फोटो देखनी जिसे रोज दिन में 40 बार देखते हैं।
4: वैसे भी जिसा डोड़ होगा फोटो तो वैसी ही आएगी ना, बार बार फोटो लेने से डोड़ बदल तो नहीं जाएगा।
5: रिया, अगर हम उस पहाड़ी के किनारे जाकर फोटो लें तो?
3: OMG, that will be epic.
1: और वायरल भी।
2: 10,000 लाइक्स पक्के।
0: लाइक्स पक्के, पर लाइफ पर रिस्क है।
5: काका, रिस्क है तो जिंदगी से इश्क है।
0: बेटा, जिंदगी से कम मन हॉस्पिटल से ज्यादा लगे तेरा।
7: अरे सुनो, लाइन के पीछे रहो भाई, सभी आगे जाना मना है। नहीं नहीं
5: भैया, ऐसी जगह पर मैं सेल्फी न लूं ये हो नहीं सकता, और कोई मुझे रोके ये मैं होने नहीं दूंगी।
7: मैडम मजाक नहीं है ये, कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे पहले।
3: जस्ट वन क्लिक गाइस, बस एक फोटो,
6: बस 2 सेकंड, बस 3 सेकंड।
7: अरे ये 2-3 सेकंड कई बार लाइफ पे भारी पड़ जाते हैं भाई।
0: सही बात है, पर इन्हें तो लाइक्स चाहिए ना।
7: अरे मैडम पीछे हो जाओ, गिर जाओगे।
6: सोनिया ध्यान से।
0: अरे एक मिनट, बेटी बेटी बेटी, हाथ पकड़ बेटा, हाथ पकड़, शाबाश शाबाश, हाथ पकड़। आराम से बेटा, आ जाओ।
6: काका पकड़ो ध्यान से,
0: आराम से ऊपर आ जाओ। शाबाश शाबाश।
7: मैंने कितनी बार बोला था आप सबको।
5: थैंक गॉड।
3: सोनिया आर यू ओके?
5: पर रिया, मेरा मोबाइल गिर गया।
0: देखियो बेटा, तेरी जान बची, देख।
6: सोनिया तुम ठीक तो हो?
5: हाँ, लेकिन मेरा फोन नीचे गिर गया।
0: वाह बेटी वाह, तू नीचे गिरते गिरते बची, और तेरे को चिंता तेरे फोन की अभी भी?
4: फिर तो आपने इसको छोड़कर इसके फोन को बचा लेना था।
1: सच कहूं, अगर किसी ने 10 साल पहले कहा होता कि आदमी अपनी जान से ज्यादा मोबाइल की चिंता करेगा तो मैं विश्वास ही नहीं करता।
0: और आज हालत ये है, आदमी गिर भी रहा होगा ना तो भी सोचता है मेरा फोन तो सेफ है ना।
3: पहले तो मुझे भी फोमो हो रहा था सोनिया को देखकर।
0: अब ये फोमो क्या बोला है?
1: फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कुछ छूट जाने का डर। काका, ये एक ऐसी भावना है जिसमें आदमी को लगता रहता है कि बाकी सभी लोग उससे ज्यादा मजेदार चीजों का हिस्सा बन रहे हैं, और वो इससे चूक रहा है।
0: और जिंदगी से चूक जाती तो?
3: गाइस, दैट वाज रियली स्कैरी।
5: हाँ, आज पहली बार लगा लाइक से बड़ी लाइफ

0: होती है।
1: और परिवार भी।
0: थैंक गॉड सोनिया तू बच गई, वरना अभी वायरल हो जाती। हैशटैग रेस्ट इन पीस।
2: वाह बेटी, आज तो तूने अंग्रेजी में भी समझदारी की बात करी है।
0: आज मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। कितनी बार फोन करती हैं वो, और मैं कह देती हूँ मम्मी अभी बिजी हूँ। मेरा सारा टाइम फोन पर निकल जाता है, पता ही नहीं चलता।
3: सही कहा, मेरे पापा जब भी शाम को मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं सुनता ही नहीं, उनकी तरफ देखता ही नहीं। मुझे फोन में बिजी देखकर वो भी चुप रह जाते हैं।
2: यही तो मैं कह रहा था बेटा, घर में बैठे माँ बाप दिखाई नहीं देते, लेकिन स्क्रीन पर बैठे अजनबी जरूर दिख जाते हैं।
0: काका आप सही थे, सेल्फी बुरी नहीं है, लेकिन जब दुनिया में सिर्फ मैं ही दिखाई देने लगे तब समस्या शुरू हो जाती है।
2: बिल्कुल, सेल्फी से ज्यादा जरूरी अपना सेल्फ और अपनों की मुस्कान है।
1: बात तो सही है।
0: तो आज से मेरा एक नया डायलॉग है।
4: क्या?
0: ऐसी जगह पर मैं सेल्फी न लूं तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ऐसी जगह पर मैं जान जोखिम में डालूं ये अब मैं होने नहीं दूंगी।
1: वाह वाह वाह।
2: मोबाइल बुरा नहीं है बेटा, सेल्फी भी बुरी नहीं है। बुरा तब है जब मोबाइल जेब से निकल करके दिमाग में घुस जाए, जब लाइक्स लाइफ से बड़े हो जाए, और जब फॉलोअर्स रिश्तों से बड़े हो जाए, जब रील कोई हम रियलिटी समझने लग जाए, तब मुश्किल होती है।
0: यू आर राइट काका, नो फिल्टर, नो हैशटैग, नो वायरल पोस्ट कैन रिप्लेस रियल रिलेशनशिप्स। हैशटैग नो हैशटैग।
3: आज से सेल्फी लेंगे लेकिन समझदारी से
1: और सुरक्षित जगह पर।
0: और अब सबसे पहले घर जाकर मैं मॉम के साथ एक फोटो लूंगी।
2: फोटो जरूर ले लेना बेटा, लेकिन 5 मिनट बैठकर बात भी कर लेना उनसे।
4: जिंदगी रहेगी तो 1000 सेल्फियां ले लेंगे,
0: लेकिन एक सेल्फी के लिए जिंदगी नहीं खोएंगे।
4: तालियां।
5: हाँ, कभी कभी मोबाइल को भी आराम दे दिया करो।
2: और क्या, बेचारा दिन रात तुम्हारा मुंह देख देख कर वो भी तो थक जाता होगा।
0: अच्छा काका,
4: बाय
0: बाय काकी।
2: अरे सुनो, इधर आओ सब।
4: जी काका।
2: तुम्हारी काकी कह रही है चलते चलते एक सेल्फी तो ले ही लेते हैं।

अभी आप हास्य झलकी सुन रहे थे, सेल्फी सुख। इसके निर्देशक थे नवीन सिसोदिया, लेखक डॉक्टर विशाल छाबड़ा। प्रतिभागी थे नवीन सिसोदिया, डॉक्टर विशाल छाबड़ा, गुलशन मेघानी, रश्मि छाबड़ा, पुष्पेंद्र सिंह, सुमन कंवर, स्मृति बोहरा और डॉक्टर अक्षत चावला। ये झलकी आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। कार्यक्रम सुनिए चंद युगल फिल्मी गीत, लता और मोहम्मद रफी की आवाज में। ये एक दो गाना महबूब की मेहंदी फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे कुछ युगल फिल्मी गीत। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुहाना सफर। पहले सुने किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत आरडी वर्मन का, फिल्म का नाम डार्लिंग डार्लिंग। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत।

प्रोग्राम के लिए पेशकश अनजान का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाज किशोर कुमार की, फिल्म का नाम डॉन।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का ये गीत सुनिए।

आशा भोंसले की आवाज, फिल्म का नाम शान। श्रोताओं, ये फिल्म नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त हरप्रीत। कार्यक्रम है सुहाना सफर।

धर्मात्मा फिल्म का एक दो गाना मुकेश और कंचन की आवाज़ों में, गीत एंडीवर का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम जैसा आपने सुना धर्मात्मा।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है?

दीवार फिल्म का एक दो गाना आप सुन रहे हैं, आशा और किशोर की आवाज में, साहिर के बोल, संगीत आरडी वर्मन का। सुहाना सफर कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

एक दो गाना फिल्म दो कलियों से, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीत रवि का।

लीजिए अब सुनते हैं खानदान फिल्म से ये गीत मोहम्मद रफीक और आशा भोसले की मिली जुली आवाजों में। राजेंद्र कृष्णा की शब्द रचनाएं और संगीत रवि का है।

श्रोता अभी सुहाना सफ़र कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी दोस्त स्मिति का सहस्नेह नमस्कार। लीजिए श्रोताओं, पहला गीत हम आपको सुनवाते हैं लव आजकल फिल्म से। आवाज़ राहत फतेह अली खान की है, इरशाद कामिल की शब्द रचनाएं और संगीत प्रीतम का है।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। जी हाँ, इस फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की मिलीजुली आवाज़ों में। शब्द रचना इरशाद कामिल की है और संगीत प्रीतम का है।

लम्हे फिल्म से अब ये गीत सुना आपने लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत शिवहरि का था। लीजिए अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं परदेस फिल्म से। आवाज़ कुमार सानू की है, आनंद बख्शी की शब्द रचनाएं और संगीत नदीम श्रवण का है।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं दहक फिल्म से ये गीत हरिहरन और साधना सरगम की मिलीजुली आवाज़ों में। गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत में सवारा है आनंद मिलन ने।

लीजिए अब सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ, इस फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की मिली जुड़ी आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन जतिन ललित की है।

असद भोपाली का लिखा ये गीत सुन रहे हैं आप। मैंने प्यार किया फिल्म से, आवाज़ एसपी बालासुब्रमण्यम की है और इस गीत को संगीत में बांधा है राम लक्ष्मण ने।

लीजिए अब सुनते हैं डुप्लीकेट फिल्म से ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत अनु मलिक का है।

लीजिए श्रोताओं, आप सुनते हैं दुश्मन फिल्म से ये गीत उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में। इंदिवर की शब्द रचनाएं और संगीत उत्तम सिंह का है।

लीजिए अब सुनते हैं युवा फिल्म से ये गीत मधुश्री और एआर रहमान की मिलीजुली आवाजों में। महबूब की शब्द रचनाएं और संगीत एआर रहमान का है।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की और उनके प्रसारण समय की।

आज दोपहर 3 बजे श्रोता सुनेंगे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी श्रोता सुनेंगे आज शाम 6:40 पर। कुछ ही पलों में श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, और आज बातें होगी अपेक्षाओं पर उम्मीदों पर। सुगम संगीत का समय रहेगा आज दोपहर 12:30 पर, और आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें। श्रोताओं की टेलीफोन कॉल्स पर आधारित हेलो मनभावन कार्यक्रम का समय रहेगा आज रात्रि 10 बजे। इस कार्यक्रम के निर्देशक व संयोजक रहेंगे नवीन सिसोदिया और प्रस्तुति संजय बैद की रहेगी। खेत खलियान का समय रहेगा आज दोपहर 12:50 पर, और आज इस कार्यक्रम का विषय रहेगा जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक।

चौपाल का समय रहेगा आज शाम 7 बजे, और ये कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों, ईमेल व पत्रों पर आधारित पत्रोत्तर कार्यक्रम रहेगा। साथ ही बाजार भाव व मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। महिला जगत कार्यक्रम का समय रहेगा आज दोपहर 1:05 पर, और इस कार्यक्रम में जानकारी के विषय रहेंगे, बच्चों को दे लाड़ प्यार के साथ अनुशासित दिनचर्या, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में हमारा योगदान और दिखावे से बचें। साथ ही औषधीय गुणों का खजाना जामुन पर भी चर्चा होगी और होंगे कुछ चुनिंदा गीत। प्रस्तुति रजनी मोदी की होगी। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं आज दोपहर 2:30 पर, शाम 7:45 पर और रात्रि 8 बजे होगा एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा आज शाम 5 बजे और आपकी पसंद। ये कार्यक्रम श्रोताओं की पसंद के गीतों पर आधारित रहेगा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति रहेगी राजेंद्र शर्मा की। हमारी आज की सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर, और श्रोताओं ये थे हमारी आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की प्रस्तुति के साथ आज मैं आपकी दोस्त स्मिति, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, एक कहावत है, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि जो मन का नहीं होता उसमें भगवान की मर्जी छुपी होती है। लेकिन असल जिंदगी में इस धारणा को उतारना बहुत मुश्किल रहता है। जब व्यक्ति के मन का नहीं होता तो उससे जुड़ी उसकी सारी अपेक्षाओं पर पानी फिर जाता है। जितनी अपेक्षाएं व्यक्ति के भीतर बढ़ती है उतना ही व्यक्ति दुखी होता चला जाता है। अपेक्षा का दामन छोड़ना भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि यदि व्यक्ति अपेक्षा नहीं रखेगा तो उसके सपने कैसे सच हो पाएंगी। लेकिन कई बार हम हमारे अपनों से, हमारे रिश्तों से इतनी अपेक्षाएं रख लेते हैं कि यदि हमारे मन का नहीं होता तो हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और शायद इसलिए ही हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर परेशानियों और मानसिक तनावों का एक कारण अपेक्षाएं रखना भी होता है।

श्रोताओं, अपनी ख्वाहिशों और चाहतों को पूरा करने के साथ साथ हम दूसरों से भी उम्मीदें लगा देते हैं कि वह हमारी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे और यही हमारी अपेक्षाओं का उद्गम होता है। यदि हम अपने भीतर चल रहे पूर्वाग्रह और आगे होने वाले परिणामों का आंकलन करना छोड़ दें, तभी हम हमारे भीतर चल रही अपेक्षाओं को समाप्त कर पाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, एक स्त्री की व्यथा अपेक्षाओं में कुछ यूं कह जाती है, कुछ खलिश सी दबी है मेरे मन में, कुछ खलिश सी दबी है मेरे मन में, उसी को अल्फाजों में कह जाती हूँ, कोई समझी तो ठीक वरना अल्फाजों तक ही रह जाती हूँ। कुछ कहानियाँ दबी है अंदर मेरे, हजारों किस्से समेट रखे हैं मैंने, यूं तो हूँ पानी सी शीतल सरल में, बस कभी पानी सी बह जाती हूँ। अपनी कल्पनाओं में झूमती रहती हर पल, कुछ न कुछ ढूंढती रहती, जिंदगी की तपिश से तपती हूँ, आखिर राख सी हो जाती हूँ मैं। हर गम का घूट पीने

0: दोस्तों, जब हमसे अपेक्षाएं रखी जाती हैं तो सबसे कठिन कार्य होता है उन पर खरा उतरना, दूसरों की इच्छाओं को समझना और उसी के अनुरूप कार्य को परिणाम देना। किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन जब हम दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के विचारों को समझेंगे, तभी हम उस रिश्ते की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे।
1: चला उस

दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि हमारी इस छोटी सी ज़िंदगी में सारी इच्छाएं, ख्वाहिशें, उम्मीदें सब की सब पूरी हो। यद्यपि हमें उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, किंतु यदि हमारी इच्छाएं पूरी न हो तो हमें अत्यधिक दुखी भी नहीं होना चाहिए। दूसरों से अपेक्षाएं रखने से अच्छा है कि हम अपने कार्य को 100% दें, तभी हम सफल हो पाएंगे।

ज़िंदगी की इस भागदौड़ में वक्त के साथ चलते चलते कई बार वक्त हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हम तन्हा हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारा अपना अब कोई नहीं, लेकिन दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि वक्त एक दवा भी है। जब पूरा पल बीत जाता है तो वक्त ही उस जख्म को भरता है। काश किसी दुनिया पर बिकता गुजरा वक्त, काश किसी दुनिया पर बिकता गुजरा वक्त, खरीद लाता ढेर सारा और किश्तों में चुकाता सारा कर्ज। अपेक्षाएं वक्त के साथ बदल जाती है और कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है। यही है ज़िंदगी।

ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय दोपहर की 12:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें।

0: सुगम संगीत के अंतर्गत श्रोता अभी जगजीत सिंह की गायक कुछ चुनिंदा गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेत खलियान। आज इस कार्यक्रम का विषय है जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक।
1: किसान भाइयों राम राम। भाई लोगों बात कर शां खेती बाड़ी की और थे आ बात जानो कि खेती करने वास्ते बढ़िया पानी और खेचड़ गसा के बढ़िया माटी होनी भी जरूरी है। बढ़िया माटी जद ही आप मान सकान जद माटी में बेसारा पोषक तत्व तो मौजूद होवे जका माटी ने उपजाऊ और तकड़ी बनावे। भाई लोगों धरती की ऊपरी सतह पर मोटा मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिलवा कणा ने आप माटी के वहाँ माटी में मौजूद कार्बनिक पदार्था में जरूरी कार्बन ने मृदा कार्बन या माटी जैविक कार्बन के वहाँ। किसान भाइयों माटी में मिलेड़ा या मौजूद वानस्पतिक और जीव जंतु का अवशेष सूक्ष्म जीव जिया कीड़ा मकोड़ा या दूसरा जीवांगा मृत शरीर इनके अलावा माटी में मिलान वाली गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट हरी खाद राख पशुओं को बिछावन यानी सुखीड़ो ये सब मृदा कार्बनिक पदार्थ कहलावे। मृदा जैविक कार्बन मृदा स्वास्थ्य में सुधार और बदलती जलवायु में माटी की उर्वरकता ने बनाए रखे। भाई लोगों अपने देश में फिलहाल माटी की उर्वरकता घटन लाग रही है जबकि बड़ी चिंता को विषय है और माटी में जैविक कार्बन तत्व में इतनी भारी गिरावट माटी की उत्पादकता ने भी प्रभावित करे क्योंकि सूक्ष्म जीव जीवित ना रहसी तो पौधा ने पोषक तत्व मिलना बंद हो जासी और अपन जैव खेती छू उत्पादन बढ़िया कौन ले सकांगा। फसलों की जड़ा में मृदा जीवांश कार्बन को स्तर 0.75 सैकड़ा या इंशु ज़्यादा होना जरूरी है फिर भी माटी को स्वभाव है जो या स्वास्थ्य है वो अपने बढ़िया बना सकें और उर्वरा शक्ति में आप बढ़ोतरी कर सकें। भाई लोगों जीवांश कार्बन को स्तर 0.5-0.75% के बीच में होना छूँ माटी की उर्वरा शक्ति मध्यम या कम हो जासी। जरूरी जीवांश कार्बन स्तर माटी में होने पर ही सूक्ष्म जीवांगी क्रियाशीलता बढ़ सके और पोषक तत्व मौजूद फसल ने मिल सके। भाई लोग जलवायु परिवर्तन होने से माटी में जीवांश कार्बन घट जाए। अब बात करा माटी में जीवांश पदार्थों का प्रभाव के है। किसान भाइयों जीवांश पदार्थ मृदा का प्रमुख अवयवा में से एक है जको अलग अलग प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी मानी जाए। मृदा जीवांश पदार्थ की मौजूदगी में लगभग लाभकारी जीवाणु ज़्यादा सक्रिय रहे और ए माटी के पीएच मान ने भी नियंत्रित करके रखे। माटी में उपस्थित अलग अलग प्रकार का लाभकारी जीवाणुओं की क्रियाशीलता पर पीएच

वो सीधो असर पड़े। पौधा के वास्ते पोषक तत्वों की उपलब्धता माटी के पीएच मान पर निर्भर करे। इन प्रकार से मृदा जीवांश पदार्थ फसलों की पोषकता में आपको बहुत बड़ो योगदान देवे। माटी में जीवांश पदार्थ की कमी से माटी में उपस्थित लाभकारी जीवाणु और सूक्ष्म जीव खत्म हो जाए। इनके अलावा किसान भाइयों इंगी कमी से माटी में होने वाली अलग अलग अपघटन क्रियाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसे पोषक तत्वांगों और खनिज लवणांगों बहुत मोटो हिस्सो पौधा ने उपलब्ध कोनी होवे। इनके अलावा खेती में कार्बनिक खाद बहुत कम मात्रा में प्रयोग करण से भी भूमि में जीवांश की कमी देखने मिलने लग रही है। अब बात करा माटी में जीवांश पदार्थ को प्रबंधन किया करना है। किसान भाइयों जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव ने कम करण वास्ते माटी में जीवांश पदार्थों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। इन खातर हर किसान भाई ने कई जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए, जिया फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए। एक दो साल के अंतराल में आप फसल चक्र अपनावा तो बहुत बढ़िया रहे। एक बार कम पानी वाली फसल बीजांत करा और एक बार सिंचित फसल की बीजांत करा। इनके अलावा कम गहरी और ज़्यादा गहरी जड़ वाली फसलों की बीजांत करा तो माटी में मौजूद पोषक तत्व फसलों के बढ़िया काम आ जावे। इन वास्ते हर किसान भाई फसल चक्र जरूर अपनावे। इनके अलावा रासायनिक उर्वरकों के सागे सागे कार्बनिक खाद को प्रयोग भी अपनी खेती वास्ते करना चाहिए, क्योंकि रासायनिक तरीका माटी को उपजाऊपन खत्म कर दिए। कई किसान मित्र कीट जीव रसायन शू खत्म हो जाए। इन वास्ते रासायनिक खेती ने धीरे धीरे कम करके प्राकृतिक खेती जैविक खेती आकानी आपने ध्यान देना पड़सी। भाई लोगों पानी बचाना भी जरूरी है। खेत में बरसात को पानी भेड़ो करने खातर जरूरी व्यवस्था करनी है। पानी बचाशा तो जीवन भी बच जासी और खेती करण जोगा भी आप रह जासा। इन वास्ते आपने खेत में सिंचाई की आधुनिक विधि से सिंचाई करके पानी आप बचा सका और जितो हो सके आपने वानिकी ने बढ़ावो देना जरूरी है। जितना पेड़ पौधा धरती पर होसी बीती ही बरसात ज़्यादा होसी। इन वास्ते खाली पड़ी भूमि पर पेड़ जरूर लगाना है ताकि पर्यावरण और प्राणी जगत को बचाव होन तो रहे। किसान भाइयों भूमि में जीवांश की मात्रा बढ़ाने सारू आप बाँ फसलों की बीजांत करा, जिसे ज़्यादा पत्ता और ज़्यादा अवशेष मिले। फसलों का अवशेष यूँ सड़गे खाद बनसी और माटी भुरभुरी बनी रहेगी। इस यूँ माटी में पानी धारण करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होसी। भाई लोगों अब बात करा माटी में जीवांश स्रोतांगी। भाइयों मृदा में जीवांश पदार्थों को स्तर बढ़िया बनियो रहे। इनके वास्ते कार्बनिक खाद जिया गोबर की खाद कंपोस्ट खाद बायोगैस घिसलरी इंगो आप प्रयोग लगातार करता रहे। इनका प्रयोग शू पौधा में जरूरी पोषक तत्वों की उपलब्धता के सागे सागे माटी में पानी धारण भी बढ़िया हो जाए और उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हो जाए। इन माटी की भौतिक दशा में सुधार हो, टिकाऊ खेती और माटी स्वास्थ्य में सुधार खातर खेती में हर किसान ने बदलाव करना जरूरी है और धीरे धीरे जैविक खाद से जैविक खेती करना भी बहुत जरूरी है। जीवांश की मात्रा भी भूमि में बढ़ाने को जतन करना पड़सी। इनके लिए हरी खाद की बीजांत भी आप कर सका। दलहनी और अदलहनी फसलों की बीजांत करके और हरी अवस्था में जुताई करके भूमि में जीवांश की बढ़ोतरी करी जा सके। मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बनिक स्रोता में हरी खाद एक बहुत बढ़िया विकल्प मान सका। किसान भाइयों हरी खाद की बुआई बांध क्षेत्रों में ही करनी चाहिए जठे पानी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होवे, क्योंकि नमी की कमी के कारण ना तो हरी खाद की फसल बढ़वार कर सके और ना ही भूमि में हरी खाद जुताई करने से सड़ सके। तो जठे पानी है बठे हरी खाद की बीजांत जरूर करनी चाहिए। हरी खाद वास्ते शीघ्र पकड़ वाली फसलां जियाँ डेंचो ग्वार सनई मूंग उड़द और लोबिया की बिजाई आप कर सका। इनके अलावा हरी खाद वास्ते पेड़ पौधा और झाड़ियाँ की कोमल शाखावां पत्ता अन्य तोड़ के खेत में बुरका सका या बिखेर सका और बाद में खेत में अच्छी तरह जुताई कर देवा ताकि सड़ाव बढ़िया तरीका से हो सके। वो तरीको बठे ही काम करे जठे बरसात या पानी सिंचाई कम होवे। दलहनी और अदलहनी फसलों की पत्तियां के अलावा अमलतास पीपल बबूल सफ़ेद आंख आंगी पत्तियां और टहनियां भी आप काम में ले सका।
अब बात करें जैव उर्वरक में जीवाणु खाद की, तो किसान साथियों जैव उर्वरक या जीवाणु खाद

0: विशेष प्रकार के जीवाणुओं को एक विशेष समूह है। ईसा ईशु बीज उपचार भी आप कर सका, जीशु भूमि जनित या बीज जनित रोगों को नियंत्रण आप कर सका। इनके अलावा जीवाणु खाद गोबर की खाद के सागे या कंपोस्ट खाद सागे मिला के भूमि में नाखने से माटी में पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके और बढ़ोतरी भी हो सके। इनमें उपस्थित राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ा में ग्रंथियों को निर्माण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन ने भूमि में स्थिरीकरण करे। इन तरिया से ही एजेक्टोबैक्टर जीवाणु ए दलहनी फसलों की जड़ों की सतह और माटी में स्वतंत्र रूप में रह गए वायुमंडलीय नाइट्रोजन ने अमोनिया में बदल देवे और पौधा ने उपलब्ध करवा देवे। भाई लोगों, फास्फोरस विलेयक जीवाणु माटी में स्थिर फास्फोरस, पोटास विलेयक जीवाणु माटी में मौजूद पोटेशियम और जिंक विलेयक जीवाणु माटी में मौजूद जिंक ने घुलनशील रूप में परिवर्तन करके पौधा ने उपलब्ध करवावे। इनका सागे सागे फसल अवशेषा ने खेत में आग लगा के जलाने की बजाय अन्य यानी कृषि अवशेषा ने कार्बनिक खाद में परिवर्तन करके भी माटी की भौतिक और रासायनिक दशा में सुधार आप कर सका और भूमि ने मजबूत बना सका। फसल अवशेषा ने शीघ्र अपघटन वास्ते पर्याप्त नमी की अवस्था में जैव अवशेष अपघटक को प्रयोग करना चाहिए। ईशु अवशेष विच्छेदन क्रिया तेज हो जाए और आगामी फसलों की बीजांत करण में भी कोई समस्या कोनी आवेनी। तो आ सगली बातों को जो आप ध्यान रख के खेती करा तो आप अच्छी उपज अच्छी पैदावार ले सका। पण अब मैं खेत का नहीं चलूँ सा, राम राम सा राम राम।
1: श्रोता अभी खेत खलियान कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिसे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर निरीक्षण कर रहे हैं। श्री गडकरी एक्सप्रेसवे पर कई जगह सड़क टूटने और निर्माण में खामियों की खबरों के मद्देनजर सड़क निर्माण की गुणवत्ता को परख रहे हैं। श्री गडकरी दोपहर में बूंदी जिले में स्थित लबान इंटरचेंज पहुंचेंगे। यहां से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ इस निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीनों नेता कोटा के पास मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक बन रही दरा टनल का जायजा लेकर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। 1200 करोड़ रुपए की लागत से ये टनल बनाई जा रही है। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा का गोपालपुर मंडाना में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इस दौरान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर तथा ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। राज्य में समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रस्तावित प्रारूप पर आमजन से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है। विभिन्न जिलों में आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों तथा शिक्षाविदों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पाली में वर्चुअल बैठक हुई। इसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं प्रशासन ने अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट, पंचायत समितियों और नगर निकायों के सूचना पट्टों पर QR कोड भी लगाए हैं। इनके माध्यम से आम नागरिक ऑनलाइन सुझाव दर्ज करा सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा

0: हैकेथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। विद्यार्थी, नवोन्मेषक, स्टार्टअप्स, शोधकर्ता, डिजाइनर, उद्यमी तथा हथकरघा पेशेवर पंजीकरण कराने के साथ ही अपने विचार संबंधित वेबसाइट पर साझा कर सकते हैं। चुनी हुई टीमें 1 अगस्त को अपने समाधान जूरी के सामने प्रस्तुत करेंगी। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश स्थानों पर झोंकेदार हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई और कहीं कहीं जमकर बादल बरसे। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक 9.5 सेंटीमीटर बरसात कोटा के रामगंज मंडी में दर्ज की गई। विभाग ने आज उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी तथा बहुत भारी बरसात की संभावना जताई है। जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। झुंझुनू में जल्द ही विवाह पूर्व संवाद केंद्र शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल तेरे मेरे सपने के तहत ये केंद्र बनाया जा रहा है। केंद्र में विवाह से पहले युवक युवतियों और उनके परिवारों को वैवाहिक जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाएगा। इस केंद्र पर आपसी संवाद, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जिम्मेदारियां, विवाद समाधान, लैंगिक समानता और कानूनी अधिकारों जैसे विषयों पर मार्गदर्शन किया जाएगा। प्रदेश में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजना में पहले ऑनलाइन आवेदन की तिथि 30 जून निर्धारित थी। विभाग के निदेशक ललित कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं को सुविधा को देखते हुए ये तारीख बढ़ाई गई है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके तहत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी बहनों को रजनी मोदी का प्यार भरा नमस्कार। बारिश का इंतजार, आंखें पक चुकी हैं, न जाने कब ये बरखा आएगी और दिल को सुकून मिलेगा। इस चिलचिलाती धूप ने सबकी तौबा तौबा करवा रखी है। बहनों, आप अपना खूब ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य, आपकी मुस्कुराहट हमारे दिलों तक घर कर जाती है। बहनों, बात आज बहुत सारी करने वाली हैं आपसे, बहुत सारे विषय है हमारे पास, और बहुत ही सुंदर मनमोहक गीतों का सुखद संयोजन लेकर आपके बीच में पहुंची हूँ। बात पहले शुरुआत करते हैं छोटे बच्चों से। मैंने कहते हैं छोटे बच्चे जो हैं वो गीली मिट्टी के समान होते हैं, उसे जो आकार देना चाहें वैसा ही बन जाता है। लेकिन कुम्हार या कारीगर हमेशा एक बात का ध्यान रखते हैं कि कितना दबाव देना है बर्तन पे। मिट्टी सही आकार में आकर सुंदर रूप ले, ऐसा वो विशेष ध्यान रखता है। जहां कहीं भी थोड़ी सी

जिद करके प्रेशर या दबाव बनाया, वहीं पर बन रही आकृति टूट जाती है, बिखर जाती है। ऐसा ही हमारे बच्चों के साथ भी है। माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं और जी जान से करते हैं। सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हर खुशी अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है बहनों कि माँ बाप के लाड़ प्यार में बच्चा अनुशासित दिनचर्या नहीं बनाता। या यूं कहें कि हम पेरेंट्स ही कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। वो कब उठ रहा है, कब खा रहा है, कब सो रहा है, कोई स्थायी दिनचर्या नहीं बन पाती। बच्चों की परवरिश में लाड़ प्यार और अनुशासन दो ऐसे स्तंभ हैं जिनका संतुलन उनके भविष्य को संवारता है बहनों। अत्यधिक लाड़ प्यार जहां बच्चे को जिद्दी और आत्मनिर्भर बनने से रोकता है, वहीं जरूरत से ज्यादा सख्ती उन्हें विद्रोही भी बना देती है। बहनों, हमेशा अपने बच्चे को संस्कारित करते वक्त उनकी एक अनुशासित दिनचर्या भी बनाएं। उसे बताएं कि कितने बजे उठना उसके लिए सेहतमंद है, कितने बजे खाना उसके लिए सेहतमंद है, और क्या-क्या अच्छी बातें जो जीवन में वो धारण कर सकता है।

थक जाना नहीं तू कहीं हार के। मेहनत करने के बाद ही मंजिल मिलती है बहनों, ऐसा अपने बच्चों को सिखाएं, उन्हें तत्व ज्ञान करवाएं। अति लाड़ प्यार से बचना हमारा मतलब ये नहीं कि बच्चे को प्यार ना करें। हम प्रेम स्नेह जुड़ाव की बात नहीं कर रहे हैं बहनों। गले लगाना, प्रशंसा करना, ये केवल प्रेम नहीं बल्कि हम बात कर रहे हैं वो काम भी अपने आपने कर देना जो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। अक्सर माएँ क्या करती हैं, जब बच्चा कुछ करने लगता है ना तो हम कहते हैं अरे रे रे अभी तो तू छोटा है, लाओ मैं कर देती हूँ। बच्चा जब कहता है ना मैं करूँ, तो माता पिता यही उत्तर देते हैं, तुम तो अभी बहुत छोटे हो बेटा, मैं कर देती हूँ। और पेरेंट्स खुद उसका काम कर देते हैं। उन्हें डर है या तो कि उनके बच्चे सही या पूरी तरह से काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे प्रशिक्षित करें, मतलब पहले उन्हें सिखाएं फिर अभ्यास करने को कहें। इसमें कोई दोराय नहीं कि माँ बाप अपने बच्चे को बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, जिसमें उनकी देखभाल करना भी आता है, लेकिन बच्चे के रोने या गुस्सा होने पर सहानुभूति तो रखें, लेकिन गलत जिद के आगे बिल्कुल ना झुकें। उसकी हर मांग को बिनु तुरंत पूरा ना करें। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर चीज इच्छा अनुसार नहीं मिला करती, थोड़े से प्रयत्न करने पड़ते हैं, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। बच्चों को उम्र के अनुसार जिम्मेदारी बताएं, जैसे खिलौने समेटना, स्कूल बैग तैयार करना, खुद ना करके बच्चे को आत्मनिर्भर बनाए बहनों। चाणक्य नीति कहती है कि 5 वर्ष तक बच्चे को भरपूर स्नेह सुरक्षा और लाड़ प्यार की जरूरत होती है। आप दें, उसको खाना खिलाएं, उसके कपड़े अवेरें, उसके हर काम आप करें। 6 से 15 वर्ष के बच्चों के व्यवहार पर पूरा ध्यान रखें बहनों। गलत सही का अंतर सिखाएं और नियमों का पालन करना भी। 16 वर्ष की आयु में आते ही बच्चों के साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें, उनके विचारों का सम्मान करें, उचित राय दें, अच्छे बुरे का ज्ञान करावें। सोने जगने पढ़ने खेलने इन सब का समय तय करें ताकि बच्चा समय का प्रबंधन सीख सके। बहनों उसको भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की दिक्कत का सामना करना सिखाएं कि कैसे कोई भी परेशानी कोई मुसीबत आती है तो कैसे उस जंग से पार पाना है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जिंदगी हर घड़ी एक नई जंग है। जो जीत गए बहनों वो सिकंदर, और जन नहीं लड़ पाया वो हार के फिर कभी उभर नहीं पाता। इसलिए हमेशा अपने अंदर ऐसा जज्बा बना के रखें कि हमें हर हाल में जीतना है। बहनों, बात कर लेते हैं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता में हमारा क्या योगदान है। हर दिन हजारों लोग सार्वजनिक स्थल पर आते हैं, इन्हीं वजह से इन जगहों पर बहुत सारा कचरा भी जमा हो जाता है। इसके अलावा हमारे देश में कई जगहों पर नियमित रूप से मेले और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, वहां आने जाने वाले लोग भी कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता की कमी से बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए उचित समय इस कचरे का निपटान होना बहुत जरूरी है। बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन और मेले के मैदान जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सरकार ने पर्याप्त स्वच्छता और सफाई की सुविधा सरकार द्वारा होनी चाहिए। पर्याप्त संख्या में शौचालय उपलब्ध होने चाहिए, जिनमें हाथ धोने की सुविधा और साबुन कम से कम मौजूद हो।

सफाई होनी चाहिए। अक्सर देखते हैं बहनों की जो सार्वजनिक शौचालय बने होते हैं, या तो उनका उपयोग ढंग से कोई करता ही नहीं है, और अगर करता है तो वहाँ प्रॉपर जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं होती। गंदगी चारों तरफ ऐसे बिखरी होती है मानो वहाँ किसी को कोई सरोकार ही नहीं है। पर्याप्त मात्रा में कूड़ेदान होने चाहिए, कूड़े का निपटान सही तरीके से और नियमित होना चाहिए, क्योंकि सफाई ना होने से कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं। हर घर से बहनों कुछ ना कुछ कचरा रोज निकलता है, जिसे हो सके तो सड़क पर ना फेंकें। सफाई चाहे व्यक्ति का शरीर की हो या किसी स्थान की, सफाई होना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही तरह की अनदेखी जो है ना, आखिर परेशानी का सबब बन जाती है। मानव जाति को ही इसके लिए दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। यदि सब कुछ साफ होगा तो मन को सुंदर लगेगा और फिर हम खुल कर कह सकेंगे।

0: वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहीं। मैनू स्वच्छता में कहीं ना कहीं हमारा योगदान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि प्रत्येक नागरिक ये सोच ले कि हमारे शहर की, हमारे समाज में जहाँ भी हम रह रहे हैं, कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे यदि साफ़ सफाई हम रखते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए भी और शहर की सौंदर्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वरना चारों तरफ गंदगी होगी तो कहीं ना कहीं मक्खी मच्छर पैदा होंगे, और वही मक्खी मच्छर बहनों उड़ते हुए हमारे भोजन पे या हमारे कहीं भी बॉडी पे यदि वो टच करते हैं तो वो निश्चित है कि कोई ना कोई बीमारी भोजन के थ्रू या फिर हमारे बॉडी में काट लेने की वजह से या टच करने की वजह से जो बैक्टीरिया पैदा होते हैं उसकी वजह से हम बीमार होना हमारा जो है वो लाजमी हो जाता है। तो हम सभी का भी एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखें, खासकर इस जो अभी जो गर्मी है इस मौसम में पानी का हम लोग अत्यधिक यूज़ करते हैं, तो कहीं कूलर में पानी खड़ा है तो उसको बदलते रहें। बाहर आजकल हम एक गर्मी की वजह से पलिंडे जो भर के रखते हैं पक्षियों के लिए, मैंने थोड़ा सा उसका भी ध्यान विशेष कर रखें। पक्षी हैं आखिर, अनबोल हैं, नहीं बोल पाते, कह के कुछ नहीं सुना पाते, लेकिन हमारा एक फ़र्ज बनता है कि स्वच्छ पानी उनको दें। हफ्ते 10 दिन के बाद जो परिंदे आपने रखे हैं उनकी नियमित सफाई आप कर दें ताकि साफ पानी वो पीकर, क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा उसमें मच्छरों के लार्वा पैदा हो जाते हैं, तो कीटाणु युक्त यदि पानी वो पीते हैं तो पक्षियों का जीवन किसी ने नहीं देखा कि उन पे क्या बीत रही है। थोड़ी सी मानवता को दर्शाते हुए आप ये काम भी ज़रूर करिएगा। बात करते कर रहे थे हम सार्वजनिक स्थानों की, तो साफ करना या रखना ये हमारा सबका दायित्व बनता है, हमारी साझी जिम्मेदारी है। बीमारियां ना फैले, शहर सुंदर दिखे और पर्यावरण सुरक्षित रहे, ये सब जो है बहनों तभी संभव होगा जब हम भी अपना कर्तव्य समझेंगे। हमेशा कचरा जिसमें प्लास्टिक कागज़ या खाने के पैकेट हो सब कूड़ेदान में ही डालें, और कोशिश करें कि जो रसोई का कचरा है, खाने का जो है वो सब्जियों के छिलके हैं, उसको उस प्लास्टिक के साथ ना फेंकें, क्योंकि जाने अनजाने में यदि ये प्लास्टिक पशुओं के पेट में चला जाए तो बहुत भारी दिक्कत हो सकती है। यदि कचरा पात्र ना दिखे तो इधर उधर कचरा जो है वो फेंके नहीं, बजाय फेंकने के उसे उचित किसी स्थान पर रख दें ताकि उसका समय से निपटान हो सके। यहाँ वहाँ थूकने से खतरनाक जो बीमारियाँ फैलती हैं बहनों, कई लोग पान खाने के आदि होते हैं, वो जहाँ भी देखते हैं बस अपने आप को, उन्होंने अपने मुंह का जो थूक है उसको स्प्लिट करना है, फेंकना है, लेकिन जगह नहीं देखते। हम भारतीय नागरिक हैं, वो सुंदर भारत के एक सुंदर नागरिक हैं जहाँ की विशेषता के बारे में विदेशों में भी चर्चा होती है, फिर क्या हम छोटी सी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? इधर उधर ना थूकें, अपने शहर को सुंदर रखें, सार्वजनिक स्थानों पर कभी ना थूकें, और खुले में शौच ना जाकर हमेशा शौचालय का ही यूज़ करें। बहनों ऐसा करने से गंदा पानी और बदबू नहीं फैलती। सार्वजनिक शौचालयों व पार्कों को अपने घरों की तरह साफ रखें। अक्सर जो खुले में शौच जो लोग जाते हैं वो नदी किनारे या कहीं भी ऐसे खेतों के पास जाकर शौच निवृत्त करते हैं, इससे क्या होता है कि वहाँ जो पानी है वो उसमें घुल जाता है और वो गंदा पानी जो है वो हमारे घरों तक पहुँचता है और कहीं ना कहीं कीटाणु उसमें बहकर आते हैं। तो ऐसा ना करें, अपने घरों पे एक शौचालय आप निर्माण करवाएं ताकि घर और बाहर की जो स्वच्छता हम रख सकें। अपने आसपास के लोगों को समझाएं कि गंदगी ना फैलाएं, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। बस ये नियम यदि मन में बिठा लें तो हमारा समाज, हमारा देश हमेशा स्वस्थ रहेगा।
1: ये रातें, ये मौसम, नदी।

लोग चेहरे नहीं फिल्टर दिखाते हैं, लोग चेहरे नहीं फिल्टर दिखाते हैं, खुशियां असली नहीं बस पोस्ट की जाती हैं। हर मुस्कान के पीछे थकान है, हर फोटो के पीछे एक कहानी है। ये दुनिया सस्त से ज़्यादा दिखावा पसंद करती है बहनों। आजकल दिखावा बहुत होने लगा है बहनों। हम जैसे हैं वैसे ही रहें तो कितना अच्छा लगे, लेकिन नहीं, दिखावा करना है तो बस करना है बहनों। इसके चक्कर में हम अपनी स्वाभाविकता, अपनी पहचान सब खो देते हैं। बदले में मिलता है कुछ नहीं है, बल्कि लोग हंसी उड़ाते हैं। भले ही सामने नहीं, पर पीठ पीछे बातें जरूर होती हैं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती। वो किसी ने कहा है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। मैंने हर व्यक्ति में बहुत सारी खूबियां और बहुत सारी कमियां भी होती हैं, लेकिन दिखावे के चक्कर में हमारी खूबियां दब जाती हैं। ऐसे दिखावे से बचना चाहिए। एनर्जी वेस्ट बहुत होती है ऐसे दिखावे में, क्योंकि इस चक्कर में झूठ भी बोलना पड़ता है। मानसिक और शारीरिक बहुत यत्न करने पड़ते हैं झूठ बोलने के लिए। धीरे धीरे हम उस सच्चाई से परे चले जाते हैं बहनों, जब लगातार झूठ बोलने

की आदत होगी तो निश्चित सी बात है कि उस सच से हम परे चले जाते हैं जो हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से कभी छुपा हुआ है। बाकी सब तो ठीक है बहनों, लेकिन किसी चाहत में यदि दिखावा होगा ना तो वो बड़ा दुखदाई रहता है। प्यार में टूटा दिल जिंदगी भर नहीं जुड़ता।

बेनो, गुण अवगुण, अच्छाई बुराई सभी में होती है, किसी में ज़्यादा तो किसी में थोड़ी सी कम। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी व्यक्ति में कोई दोष ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि किसी बुरे व्यक्ति में कोई गुण नहीं। फिर महापुरुष किसे कहते हैं? ज्ञानी लोग अपने अंदर के दोषों को निकालकर बाहर फेंक देते हैं बेनो, यानी दोष मुक्त हो जाते हैं। फिर भी कोई दोष आसपास होता है तो उससे बचने के लिए ज्ञान का कवच काम करता है। दूसरी बात, कुछ लोग अपने अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बात उनके सब समझ में आती है, लेकिन शायद वे समझना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग समाज में अपना मान बढ़ाई के लिए अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं। मतलब ये कि अपने अवगुणों पर पर्दा डालकर केवल दिखावा करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। इस दिखावे की वजह से मिली वाहवाही भले ही कुछ समय के लिए हो, लेकिन व्यक्ति अपने दोषों को दूर करने की बजाय उसमें और अधिक डूब जाता है। बहनों, हमारा प्रत्येक कर्म बीज बनकर हमारे अंदर स्थित हो जाता है, और समय आने पर उसका फल तो हमें मिल ही जाएगा। इसलिए आप जैसे हैं वैसे ही रहें, दिखावे से बचें ताकि लोग आपकी सराहना कर सकें।

वो जो मिलते थे कभी और आज मिलते हैं जैसे कोई पहचानते नहीं। बिनु कम से कम अपनों के साथ इस तरह का दगा ना करें, आप जैसे हैं वैसे ही पेश आइए ताकि आपका एक किरदार, आपकी एक छवि उनकी नजरों में बनी रहे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ औषधि के बारे में। और कहते हैं कि औषधीय गुणों का खजाना जो है वो जामुन है, सीजनल फ्रूट है, आजकल बाजार में बहुत आ रहा है। स्वास्थ्य से जुड़े कुछ बिंदुओं पर यदि बात हम करें तो आज बात कर लेते हैं जामुन की। मेरा जामुन देखने में भले ही काले और छोटे होते हैं लेकिन औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। इन औषधीय गुणों के कारण जामुन के बड़े फायदे हैं। गर्मी के मौसम में आम के साथ ही जामुन भी आ जाता है, ये सबसे ज़्यादा फायदा करता है मधुमेह को कंट्रोल करने में। इसके साथ ही जामुन खाने को हजम करने के साथ साथ दांतों के लिए, आँखों के लिए, पेट के लिए, चेहरे के लिए, किडनी स्टोन के लिए भी फायदेमंद होता है। जामुन में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भी होता है बहनों, इसलिए ये बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है यदि बच्चे खाएं तो। क्योंकि बच्चों को तो कुछ और चाहिए होता है लेकिन हमें उसको बताना है कि इसके क्या फायदे हैं। औषधीय रूप में जामुन के बीज, पत्ते व छाल का भी प्रयोग किया जाता है। जामुन का फल खाने की इच्छा बढ़ाने के साथ साथ लीवर को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। डॉक्टर कहते हैं कि यदि एक कटोरी भर के लगभग वही 100-150 ग्राम यदि आप जामुन डेली खाते हैं तो काफ़ी लाभप्रद रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। बिना जामुन के जो बीज होते हैं ना उसको सुखाकर है मधुमेह की दवाई बनती है, बहुत सारे लोग इसका यूज़ भी करते हैं। पत्ते भी इसके काम आते हैं और छाल का भी बहुत बड़ा यूज़ होता है। इसकी गिरी जो है पाचन क्रिया को सुधारती है, इससे यूरिन और खून में जो शर्करा, मधुमेह जिसको कहते हैं, शुगर की मात्रा कम होती है। मतलब फल एक फ़ायदे अनेक हैं, इसलिए गर्मी का मौसम है आम का स्वाद भी ज़रूर लें, साथ ही जामुन जरूर खाएं।

न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, न पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहाँ तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहाँ तक है। वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, हमें तो देखना है तू बेवफा कहाँ तक है। बहनों, ये प्यार की एक हद होती है जिसे पार करना हर किसी के बस में नहीं होता, लेकिन हम आपके प्यार में आकंठ डूब चुके हैं और बस जाते जाते इतना ही कहेंगे।

मैनू आपसे बातें करते करते मन इतना उलझ जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता। अभी भी यही कह रहा है कि बातें और की जाएं, लेकिन घड़ी की जो सुइयां हैं वो इजाज़त नहीं दे रही। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। रजनी मोदी को दे आ गया नमस्कार।

0: The quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temple's conservation reflects shared cultural legacy of the two countries. Prime Minister Modi concludes his Indonesia visit, leaves for Australia to participate in third India-Australia annual summit. Two-day BRICS Women Ministerial Meeting begins in Kochi to strengthen cooperation on women's empowerment and sustainable development. Union Home Minister Amit Shah speaks to chief ministers of flood-affected states and assures all possible assistance from the centre. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country. Iran targets American military sites in Bahrain and Kuwait after a wave of US strikes. Global oil prices jump over 2%. And Switzerland beat Colombia 4-3 in penalty shootout to set up quarterfinals against Argentina in FIFA World Cup. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांबानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांबानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल

घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया।

0: राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वाइडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वाइडनाथ घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़ गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर की 2:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

पहला गीत आपको सुनवाते हैं नदिया के पार फिल्म से। आवाज़ें हेमलता और जसपाल सिंह की है और इस गीत को गीत संगीत रविंद्र जैन ने दिया है।

लीजिए अब सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में अगला गीत संगम फिल्म से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है शंकर जयकिशन ने।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

लीजिए अब सुनते हैं स्वीकार किया मैंने फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत को लिखा है निधा फाजली ने और संगीत उषा खन्ना का है।

लीजिए अब सुनते हैं गुलजार का लिखा गीत। फिल्म का नाम है आनंद, आवाज़ मुकेश की है और संगीत सलील चौधरी का है।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, संगीत इलैया राजा का है, आवाज़ सुरेश वाडेकर की है और फिल्म का नाम है सदमा।

लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का आखिरी गीत, याराना फिल्म से। आवाज़ किशोर कुमार की है, अनजान की शब्द रचना है और संगीत राजेश रोशन का है।

श्रोता अभी फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ का कॉटन सिटी चैनल है। लीजिए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

रसिया मस्से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफ़ती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छुट्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स ख़वातीन की दो रोज़ा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है ताकि ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में तआवुन को मुस्तहकम बनाया जा सके। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने सैलाब से मुतासर कई रियासतों के वज़रा आला से फ़ोन पर बात की और मरकज़ की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। और फीफा आलमी कप में स्विट्ज़रलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सद प्राबोवो सुबियांतो के हमरा आज योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म का क्लासिकी योग्यकार्ता रक्स के साथ रवायती अंदाज में खैर मकदम किया गया जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने नवीं सदी के मंदिर कॉम्प्लेक्स का दौरा किया जहाँ वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफ़्फ़ुज़ की जारी कोशिशों का जायज़ा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायज़ा लिया। एक मुश्तरका बयान में सदर प्राबोवो सुबियांतो ने कहा कि परम्बानंद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान सदियों पुराने तहजीबी रिश्तों की एक अलामत है। उन्होंने मंदिर कॉम्प्लेक्स के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए मदद पर भारत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सकाफत दोनों मुल्कों को जोड़ने के लिए एक पुल के तौर पर काम कर रही है। योग्यकार्ता में परम्बानंद मंदिर में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने दौरे को रूहानियत से भरपूर और यादगार करार दिया। उन्होंने तकरीबन 1200 साल तक इस शानदार विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करने पर इंडोनेशिया के आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ में भारत की शराकत दारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफ़ती विरासत का इजहार होता है। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बिलक़वामी कानून के मुताबिक इस ख़तरे से निमटने के लिए फैसला कुन और मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर के दरमियान दोतरफा बातचीत के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी अल्बनीज़ के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शरीक होंगे जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बरादरी के लोगों को एक बड़े जलसे से खिताब भी करेंगे जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सुतून है। भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में तआवुन को वसअत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM

बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला समंदर पार कैंपस कायम करेगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खित्ते के तलबा और पेशेवर अफराद के मुस्तफीद होने का इम्कान है। IIM बेंगलुरु के डायरेक्टर इंचार्ज यू दिनेश कुमार ने कहा कि इस पहलकदमी से तालीम के शोबे में इश्तराक और तआवुन को मुस्तकम बनाया जा सकेगा। जिदतराजी और सलाहियत साजी को फ़रोग मिलेगा और भारत और इंडोनेशिया के दरमियान कलीदी साझेदारी को मज़ीद तकवीत हासिल होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ब्रिक्स मुल्कों की खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। यह इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ है। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर मुमलकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। इजलास के मकाम के नज़दीक देही तरक्की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, तगज़िया और तालीम जैसे मुख्तलिफ शोबों में खवातीन की क़ियादत वाली तरक्की में भारत की हुसूलियाबियों को उजागर करने के लिए नुमाइश का अहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत में शदीद बारिश और सैलाब जैसे सूरतहाल के बारे में टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान जनाब शाह ने सूरतहाल से निमटने में वजीर आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र के बहुत से हिस्से गुज़श्ता चंद रोज से जारी मूसलाधार बारिश से मुतासर हुए हैं। जनाब शाह ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से भी रियासत में शदीद बारिश और पानी जमा होने से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती सरकार को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। ईरान ने अपने सूबे हरमुजगान और बंदरगाही शहर मशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीका की फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फजाइया ने अमरीका के 85 फौजी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरक कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा है कि सायरन बजने के बाद पनाहगाहों में चले जाएँ। इससे पहले अमरीका ने आबनाए हरमूज से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। उधर खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को ख़तरा लाहिक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। भारत ने दिल्ली में आसियान भारत की अशिया की तजारत से मुतालिक ज्वाइंट कमेटी AITIGA की 13वीं मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है, ताकि आसियान भारत तजारती समझौते का मज़ीद जायज़ा लिया जा सके। ज्वाइंट कमेटी की मीटिंग और इससे मुतलका मीटिंगें इस महीने की 6 तारीख से 10 तारीख तक मुनक्किद की जा रही हैं, जिनमें कुछ अरकान वहाँ मौजूद हैं जबकि बाज़ अरकान वर्चुअल तरीके से मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि ज्वाइंट कमेटी की बदौलत ज़ैली कमेटियों को उनके काम से मुतालिक शोबों के बारे में कलीदी नौयत की रहनुमाई फराहम हुई है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आज कहा है कि शोपियां के चनापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस ने कहा है कि यह कार्रवाई फौज और CRPF ने मुश्तरक तौर पर अंजाम दी। शारजा से पाकिस्तान के शहर कराची जाने वाला एक बोइंग 737 तैयारा नेविगेशन सिस्टम में खराबी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रबता मुनक़ता होने के बाद लापता हो गया है। इस तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। लद्दाख में आज से मानसून का आगाज़ हो गया है। वहाँ आज सभी ज़िलों के बहुत से मकामात पर रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। फुटबॉल में स्विट्ज़रलैंड वैनकूवर में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 3-4 से हरा कर 1954 के बाद से पहली मरतबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। उधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में अटलांटा में अर्जेंटीना मिस्र को 2-3 से हरा कर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में

0: बच गया है। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें, एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज में भारत की शिरकत से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। ब्रिक्स खवातीन की दो रोज़ा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है ताकि खवातीन को बाख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के बारे में तआवुन को मुस्तहकम बनाया जा सके। और मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह ने सैलाब से मुतासर कई रियासतों के वज़ीर आला से फ़ोन पर बात की और मरकज की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम वेव 71 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। तमाम सामईन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखलूस आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में मोहरा फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है वियू शाह ने।

प्रोग्राम की अगली पेशकश कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज़ों में 1942 अलावा स्टोरी फिल्म का यह नगमा, नगमा निगार जावेद अख्तर, मौसीकार आर डी बर्मन।

0: कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ों में, मौसीकाती संदेश चंदीलिया। इस नगमे के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम मेरी पसंद अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मैं आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है जनाब आफाक अहमद की तहरीर का दर्रा में सवेरा का दूसरा और आखिरी हिस्सा।
1: सुबह बखैर जन्नत के बासियो,
2: गुड मॉर्निंग
1: तस्लीमात मिजाजे गिरामी,
2: आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई?
1: स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी,
3: लगता है पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है।
2: आप हजरात अगर इसकी मदद करने का वादा करें तो मैं कुछ अर्ज करूं।
4: हम जानते हैं आप क्या कहेंगे,
2: यानी हम कहेंगे हाले दिल और आप फरमाएंगे क्या?
3: ये किसी सावली महबूबा की तलाश में हिंदुस्तान आए हैं,
4: यही ना?
2: लेकिन आपको किस तरह मालूम हुआ?
4: जब से आप लोग जन्नत की फजा से निकले हैं उस वक्त से अब तक की पूरी फिल्म हमारे पास मौजूद है।
2: ऐसा ही बायोस्कोप जैसा कि हम जन्नत में देखते हैं?
3: जी हाँ, हम चाहें तो जन्नत की भी फिल्म बना लें, मगर हम बैनुल अक्वामी सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं करते।
4: हालांकि ये लोग बगैर वीजा की दुनिया में आए हैं।
2: मगर आप बेफिक्र रहें, हम लोग यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, मिलने आए हैं, वापस चले जाएंगे।
4: आप कुछ मेरा जिक्र कर रहे थे, आप अपनी महबूबा का हुलिया बता दें तो हम यही बुलवा देंगे।
2: मगर मैंने तो उसको देखा ही नहीं, वो मेरे ख्यालों में बसती है।
3: उसकी कोई तस्वीर तो होगी आपके जहन में, हम वैसी ही एक औरत पेश कर देंगे।
2: उनका जिस्म और उम्र तो इनकी तरह होगी।
4: और
5: मेरी तरह?
2: और तुम अपनी नज्म का एक बंद सुना दो, इससे इन्हें अंदाजा हो जाएगा।
1: बहुत बेहतर। My mistress's eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red.
2: इसका तर्जमा सुनाओ, ये हिंदुस्तानी है।
1: सॉरी, बहुत बेहतर। मेरे महबूब की आंखें सूरज की तरह रोशन नहीं, मूंगा उसके होंठों से कहीं ज्यादा सुर्ख है, ताजा गिरती हुई बर्फ की सफेदी, उसके जिस्म में घुली हुई सांवली शाम के सामने मांद पड़ जाती है। अगर सर के बालों को तार कहा जाता तो उसके सर पर काले तार उगते हैं।
3: मिस सजीला, तुम समझ गई?
5: जी हाँ, बिल्कुल समझ गई।
2: मगर इनका रंग कुछ गोरा है।
4: तो क्या हुआ, रंग तो 5 मिनट में काला हो सकता है।
2: या इलाही, ये माजरा क्या है?
5: मैं अभी आ रही हूँ।
2: जरा जल्दी आइएगा।
3: अभी से इतने बेकरार है आप जानते

0: हमें बिछड़े हुए 1100 साल हो चुके हैं।
1: बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। खूबसूरत खातून बता रही थी कि दुनिया की आबादी बहुत बढ़ गई है, मगर लोग चलते फिरते नजर क्यों नहीं आते?
2: चले फिरें कहां साहब, जगह कहां है?
1: क्या मतलब? क्या लोग चहलकदमी के लिए नहीं जाते? ताजा हवा सेहत के लिए बहुत मुफीद है।
3: मिर्जा गालिब, आप जन्नत की खुली हवा से आ रहे हैं, इसलिए सोच भी नहीं सकते कि हमारी हालत क्या है।
1: कुछ तो कहिए कि लोग कहते हैं।
2: पूरी दुनिया को जिसमें समंदर, पहाड़ और दरिया भी शामिल हैं, अगर आबादी में तकसीम करें तो 100 आदमियों के हिस्से में 1 मुरब्बा गज जमीन आती है।
1: ओ गॉड, तो फिर लोग जीते कैसे हैं?
3: 30,000 खरब लोग मुश्तरी और यूनानस में भेजे जा चुके हैं। जोहरा और जोहल में नई बस्तियां बसाई जा रही हैं।
1: गर्ज मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई।
2: आसानी कैसी साहब, अगर कुछ और ना किया गया और आइंदा 200 साल तक यही सूरत हाल रही तो इस कायनात के किसी सयारे में भी दिल धरने के लिए जगह ना रहेगी।
1: तो आप कुछ कीजिएगा साहब?
3: कर तो रहे हैं। हर हफ्ते 1 करोड़ लोगों को खुदकशी के लिए मजबूर किया जाता है।
1: खुदकशी? वल्ला आप तो जुल्म में उस चरखे नाहिंजार से भी आगे बढ़ गए।
0: ओ जजमेंट, thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reasons.
3: ये जुल्म नहीं मजबूरी है।
2: अगर हम ये ना करें तो जानते हैं क्या होगा?
1: क्या होगा?
3: इस जमीन पर रहने वाले लोग अपने बहुत से तरक्याती मंसूबों से इतनी गर्मी पैदा कर रहे हैं कि अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की तमाम बर्फ पिघल जाएगी और पूरी दुनिया में 250 फीट गहरा पानी हो जाएगा।
1: क्या खूबसूरत मंजर होगा।
2: मगर ये सोच लीजिए, उस वक्त तमाम आबादी जन्नत में मुंतकिल हो जाएगी और आप 3 कमरों के फ्लैट में जो जन्नत में ऐश कर रहे हैं वो सब खौफ बनकर रह जाएगा।
1: मगर आप जानते हैं कि मैं जन्नत में सिर्फ 1 गालिब हूं।
3: हो गए, मगर जमीन पर इस वक्त 65,07,372 गालिब है।
1: क्या?
2: जी हाँ, हमारे पास 1 करोड़ शेक्सपियर हैं, 60 लाख अरस्तु हैं, जो छोटे शायर और फलसफी हैं उनकी तादाद न पूछो तो बेहतर है।
1: ब्रदर, हमारे दोस्त अरस्तु हेवन से आए थे, उनका क्या हुआ?
3: वो अपनी कैजुअल लीव खत्म होने से पहले वापस लौट गए, बल्कि 1,000 अरस्तु वो अपने साथ ले गए। कह रहे थे कि वहां फिलॉसफी डिपार्टमेंट में बहुत सी जगह खाली है।
1: एक बात बताइए, जब शायरों की तादाद इतनी है तो फिर यहाँ मुशायरे कैसे होते होंगे और लोग किस मैदान में सुनने के लिए जमा होते होंगे?
2: एक मुशायरा 30 साल से जारी है और अभी तो उस्तादों की बारी भी नहीं आई।
1: 30 साल से जारी है, लोग बैठे सुन रहे हैं?
3: बैठा कौन है, मैंने कहा ना, जमीन पर फालतू 1 इंच जमीन नहीं है और ना लोगों के पास फुर्सत।
1: तो फिर ये कैसा मुशायरा है जिसमें सुनने वाले ही नहीं और ना दाद देने वाले?
2: वो मुशायरा जितने लोग सुन रहे हैं अगर एक साथ दाद देने लगे तो यकीन मानिए दुनिया की 1/3 आबादी बहरी हो जाएगी।
1: पता नहीं आप क्या कह रहे हैं।
3: बात यह है कि मुशायरा टीवी के चैनल 738 से मुसलसल दिखाया जा रहा है। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं उन्होंने शायरों की फहरिस्त जो 7 जिल्दों में मिलती है वो खरीद ली है। इसमें हर शायर के पढ़ने का वक्त और दिन दिया हुआ है, जो जिसको सुनना चाहता है सुन लेता है। 40 लाख शायर तो मुशायरे के दौरान अपनी गजल सुनाने के इंतजार में इस दुनिया से चल बसे।
1: अब तुम समझे गालिब, पिछले दिनों जन्नत में शायरों का नंबर अचानक क्यों बढ़ गया?
2: आप लोग बेफिक्र रहिए।

0: जो हालत इस वक्त दुनिया की है आइंदा 50 वर्ष में जन्नत की भी हो जाएगी।
1: ऐसा कसम न कीजिएगा, हम लोगों की जिंदगी जहन्नम बन जाएगी।
0: अगर हमने कोई ऐसी दवा इजाद न की जिससे मौत की शरह अचानक बढ़ जाए, पता नहीं खुद हमारा क्या होगा।
2: मरना क्या मुश्किल है?
0: जमीन पर बहुत मुश्किल है। मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की की है आप सोच भी नहीं सकते। दूसरे अगर इंसान मर भी जाए तो जमीन पर ना उसे दबाने के लिए जगह है और ना जलाने के लिए।
1: क्या कह रहे हैं आप? तो क्या अब लोग बेगौरव कफन पार्सल कर दिए जाते हैं?
0: दुनिया का तमाम कूड़ा जिसमें मुर्दे भी शामिल है सब जमीन के ऊपर खला में फेंक दिए जाते हैं।
2: बदबू के राह से पर्दा उठ गया मेरे दोस्त।
1: वल्लाह बड़ी गैर शायराना हरकत है।
0: मजबूरी सब कुछ करा देती है मगर अब शायद ये भी ना कर पाए।
2: क्यों?
0: तुमने नया साइंस गैजेट नहीं पढ़ा?
2: नहीं, क्या लिखा था इसमें?
0: खला में इतनी गंदगी हो गई है कि सूरज की पूरी गर्मी जमीन तक न पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है।
2: अच्छा है साहब, अब दिल्ली के इस बेरहम सूरज से तो बच सकेंगे।
0: ये सोच लीजिए, अगर ऐसा हो गया तो फिर से एक बार बर्फ का दौर आ जाएगा।
1: मैं समझा नहीं।
0: हर तरफ बर्फ ही बर्फ होगी, दुनिया तकरीबन तबाह हो जाएगी।
1: लगता है तबाही तो आपका मुकद्दर बन चुकी है।
2: मगर ये सब किया धरा आप लोगों का है।
1: आप कम से कम मुझे इल्जाम नहीं दे सकते। मेरी हर औलाद मेरी जिंदगी में ही मर गई थी।
0: हम आपको इल्जाम दे भी नहीं सकते, आप हमारे मेहमान हैं। मगर आपसे एक दरख्वास्त है।
1: फरमाइए।
0: जब वापस जाए तो कम से कम 5 लाख गालिब अपने साथ लेते जाइए।
1: देखिए, आपके पास 2-4 करोड़ जौक मौजूद हो तो उनमें से जितने चाहे भेज दीजिए, मगर किसी और गालिब को जन्नत में नहीं घुसने दूंगा मैं।
0: हमें तो आबादी से गर्ज है, किसी को भी ले जाओ।
3: वो खातून नहीं आई।
1: आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब।
0: वो आ रही है।
2: आपको कैसे मालूम?
0: ये बल्ब देखिए, जब कोई 50 मंजिल नीचे ही होता है तो बल्ब रोशन हो जाता है।
2: हम कौन सी मंजिल पर हैं?
0: 875वीं मंजिल पर।
1: क्या जन्नत में तो अभी 3री मंजिल से आगे नहीं बढ़े हैं?
0: ये बिल्डिंग 2000 स्टोरीज की है।
2: 2000?
0: हाँ, मगर ऊपर की 1000 मंजिल में सिर्फ आलात, मशीनें, जनरेटर और स्टोर्स है। नीचे की 1000 मंजिल में लोग रहते हैं।
1: मगर वो बाजार वगैरह नहीं जाते?
0: बाजार है ही नहीं। लोग इन्हीं फ्लैटों में पैदा होते हैं, जवान होते हैं और यहीं मर जाते हैं।
2: आपका मतलब है वो बाहर घूमने नहीं जाते?
0: मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सफर करने वाले लोगों में से एक हूँ, लेकिन मेरा कुल सफर जमीन पर 200 गज से ज्यादा नहीं होगा।
1: तो फिर आप सफर कहाँ करते हैं?
0: इसी बिल्डिंग में, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, यही हमारी जिंदगी है।
2: मेरा कुछ दम घुट रहा है।
0: आप ऑक्सीजन की कमी महसूस कर रहे होंगे?
2: क्या अब ऑक्सीजन भी कम हो गया है?
0: जी हाँ, ऑक्सीजन इस्तेमाल ज्यादा हो रही है और पैदा कम।
1: ऐसा क्यों हुआ?
0: रिहायशी मंसूबों के लिए हमने अरबों पेड़ कटवा डाले, उससे पूरा निजाम गड़बड़ हो गया।
4: क्या मैं अंदर आ सकती हूँ?
1: गालिब, उधर देखो, वो आ गई। खबरदार, ये कोई दूसरी औरत लगती है।
5: मैं उसे दिल की आंख से देख रहा हूँ। यही है वो शांगली महबूबा जो मेरे तसव्वुर की खूबसूरत वादियों से भटकते हुए इस दुनिया में आ गई। मैं सिर्फ इसी के लिए दुनिया में आया था गालिब, सिर्फ इसी के लिए।
1: तुम खातून के तेवर देख कर बात करो।
5: इस हसीना के चेहरे पर गुस्सा कम है और मोहब्बत ज्यादा है।
0: कहिए, हम आपको अकेला छोड़ दें?
1: आप इन्हें माफ कर दें। आपने गालिबन सुना होगा, मैंने कहा था इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब।
0: मगर आपको पता नहीं।

0: हमारी दुनिया में इश्क सबसे बड़ा जुर्म है।
1: आप कोई सरकारी अफसर तो नहीं?
2: हमारे यहाँ सब आदमी सरकारी हैं, मगर यह कानून आप पर लागू नहीं होगा, आप सैयाह हैं।
1: शुक्र है,
2: थैंक गॉड।
0: आओ बड़ी आंख, हम चलते हैं। आज 5 दिन हो गए, सिर्फ 20 लाख मरे हैं। 2 दिन में 80 लाख का इंतजाम करना है।
1: अगर आपको नागवार न गुजरे तो एक बात कहूं।
2: कहिए।
1: आप दुनिया को बचाने के लिए कोई और इंतजाम नहीं कर सकते? लोगों के मरने की खबर सुनकर मेरा कलेजा कांपने लगता है। 57 का कदर देखे हुए हो ना?
2: गलत ठीक कहते हैं। दिस इज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल। हमें भी ये दफ्तरी काम बुरा लगता है। हर हफ्ते मरने वालों के लिए टेंडर तलब करने पड़ते हैं।
1: बक रहा हूं जनूं, क्या क्या कुछ कुछ न समझी खुदा करी कोई।
0: हम समझाए देते हैं। हमारे साइंसदान एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अगर वो कामयाब हो गया तो शायद हम बच जाएं।
1: वो कैसे?
0: हम चाहते हैं कि सरजमीन पर फिर से 20वीं सदी लौट आए।
2: कॉल बैक यस्टरडे, बिट टाइम रिटर्न।
1: शेख पीर, तुम बहुत हठधर्मी हो।
3: हाँ, फरमाइए किबला, आप क्या कह रहे थे?
2: अगर उस सदी में पहुंचकर हमने आबादी को काबू कर लिया तो फिर ये दुनिया बच जाएगी।
1: मगर आपने सुना नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं।
0: ये आपके जमाने की सच्चाई थी। हमने वक्त को काबू में कर लिया है।
1: अगर ऐसा ही है तो फिर आप 19वीं सदी में वापस क्यों नहीं जाते?
2: मेरा ख्याल है अगर आप 16वीं सदी में वापस जाएं तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी, और मैं भी उन लोगों से हिसाब बराबर कर लूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी में मेरी कद्र नहीं की।
1: मगर तब तो मुझे पैदा होने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ेगा।
2: हम 20वीं सदी से पीछे नहीं जाएंगे। हमारी रिसर्च काउंसिल ने यही तय किया है। आप वहां खड़ी क्या मुस्कुरा रही हैं? यहां आइए।
4: शुक्र है, आपको मेरा ख्याल तो आया।
2: मैं सोच रहा था, यू डोंट लीव पीपल अलोन।
0: कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं।
1: मुझे भी थोड़ी सी तनहाई मुयस्सर हो जाती। जमीन पर आ गया हूं, एक गजल कहना चाहता हूं।
0: आप बराबर के कमरे में चले जाइए। देखिए, जब ये बटन रोशन हो जाए तो समझ लीजिए कि हुकूमत कोई जरूरी ऐलान करने वाली है। फौरन इसको दबा दीजिए।
1: अगर हमें कुछ जरूरत हो?
2: आप ये बड़ा बटन दबा दीजिए और जो जरूरत हो कह दीजिए। 30 सेकंड के अंदर अंदर वो आप तक पहुंच जाएगी।
5: और अगर आपसे बात करनी हो तो?
2: ये हमारा टीवी टेलीफोन है, ये मेरा कार्ड है, इसको इस सुराख में डाल दीजिए। टीवी पर आप और हम एक दूसरे के सामने होंगे।
1: अब तो जन्नत में भी रंगीन टीवी आ गया है।
0: हमारा टीवी उससे बेहतर है। इसमें आप जिस रंग में चाहे उसी रंग के लिबास में किरदार को देख सकते हैं।
2: अगर कस्टम वाले परेशान न करें तो एक मैं भी ले जाऊंगा। एक कस्टम्स ऑफिसर मेरे दोस्त हैं, ड्यूटी फ्री भिजवा देंगे। अच्छा, फिर मिलेंगे।
1: बराबर के कमरे में जाने का रास्ता?
0: ये बटन। इस बटन को दबाते ही एक मौसीकी उभरेगी। जब तक वो खत्म ना हो जाए अंदर न जाइएगा, क्योंकि उस वक्त तक ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई वहां नहीं होगी।
1: ठीक है, मैं बटन दबाता हूं।

0: Doubt thou the stars are fire. Doubt that sun doth move. Doubt truth to be a liar. But never doubt I love.
1: आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं?
0: जी हाँ,

0: प्यारी खातून, ये अल्फाज मेरे ही हैं,
1: मगर आप हुकूमत की तौहीन के जुर्म में पकड़े जा सकते हैं।
0: मगर ऐसा मैंने क्या कहा?
1: इश्क और एक से ज्यादा बच्चा जमीन के संगीन तरीन जराइम है।
0: मगर हम तो तन्हा है, नोबडी इज लिसनिंग।
1: हुजूर, हमारी बातचीत कम से कम 200 जगह रिकॉर्ड हो रही होगी। अगर
0: ऐसा क्यों?
1: ऐसा ना हो तो इश्क की बीमारी आम हो जाए।
0: तो क्या अब जमीन पर कोई इश्क नहीं करता?
1: आमतौर से तो नहीं, सिर्फ उन लोगों को कुछ दिन के लिए परमिट मिलता है जो 40 साल की उम्र से पहले खुद को मरने के लिए पेश कर देते हैं।
0: अगरचे आपका हुस्न सदाबहार है और आप एक सुरमई शाम की तरह हसीन हैं, फिर भी अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपकी उम्र पूछ सकता हूं?
1: मेरी उम्र 83 साल है।
0: देखिए, आप मजाक कर रही हैं,
1: ये रहा मेरा बायोडाटा, आप देख सकते हैं।
0: मगर आप देखने में तो मुश्किल से 20 साल की लगती हैं।
1: ये प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है, वगरना आप मुझे मेरे असली रूप में देख लें तो मेरी खाल इसी तरह लटकती नजर आएगी जिस तरह खूंटी पर ढीले ढाले कपड़े।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ।
1: क्या हुआ?
0: वुमन शुड बी व्हाट दे सीम।
1: आप मेरी उम्र को दिल की नजर से देखिए ना।
0: ये कैसे हो सकता है? मुझे लौट कर जन्नत भी तो जाना है।
1: तो फिर आप मुझे क्या मशवरा देते हैं?
0: हमारे यहां 83 साल की उम्र में लोग सिर्फ इबादत करते हैं, इश्क नहीं।
1: सोच लीजिए, मैंने तो सिर्फ आपकी खातिर अपना रंग सांवला करवाया है।
0: क्या आप अपनी उम्र थोड़ी घटा नहीं सकते?
1: उससे क्या होगा?
0: अगर लोगों को पता चल गया तो वो मजाक उड़ाएंगे।
1: आप अभी तक लोगों की परवाह करते हैं?
0: आदत सी हो गई है, ये दस्तूर दुनिया से जन्नत में चला गया है।
1: देखिए, ये बटन सुर्ख हो रहा है, हुकूमत कोई ऐलान करने जा रही है। आइए सुने।
2: एक जरूरी ऐलान सुनिए। अभी अभी हमें मुश्तरी की तजर्बेगाह से इत्तला मिली है कि एक इंतहाई शदीद बर्फानी तूफान जमीन की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कम से कम 1 अरब लोगों के मरने की उम्मीद है। तमाम हुकूमतों को हिदायत की जाती है कि वो बचाव का कोई इंतजाम न करें। जिस इलाके में मौत की शरह सबसे ज्यादा होगी, वहां के बचे खचे लोगों को मेयारी ऑक्सीजन की एक बोतल मुफ्त दी जाएगी, जो संभाल कर खर्च करने पर 1 हफ्ते तक चल सकती है। ऐलान खत्म हुआ।
3: शेखबीर, तुमने ऐलान सुना?
0: हाँ।
3: जल्दी से भाग चलो।
0: कहाँ?
3: जन्नत।
0: मगर क्यों?
3: अगर इतने बहुत से लोग जन्नत में गए तो जरूर कस्टोडियन हमारे खाली फ्लैटों पर कब्जा कर लेगी।
1: मगर क्या पता ये सब जन्नत में ना जाए।
0: याद है उस खौफनाक जलजले के बाद जन्नत की पार्लियामेंट में एक कानून पास हो गया था कि हादसे में मरने वालों को जरूर जन्नत मिले।
1: तब तो आप लोगों का जाना जरूरी है।
3: तो फिर ऐ खूबसूरत आंख, बड़ी आंख से मुलाकात करवा दो।
1: आप लोग मुझे भी साथ ले चलेंगे ना?
3: ये तुम शेख पीर से पूछो।
0: मेरा ख्याल है मुश्किल होगी, क्योंकि बेन जॉनसन, मेरियो और बेकन भी मेरे साथ ठहरे हुए हैं और मेरा फ्लैट बहुत छोटा है।
3: ये क्या कह रहे हो शेखपीर? ले चलो ना अपने साथ।
0: चुप रहो, ये 83 बरस की है, 83 years old।
3: मेरे खुदा,
1: लीजिए, मैंने बड़ी आंख से आपको मिला दिया, बात कीजिए।
3: भाई साहब, आप हमारी वापसी का जल्दी बंदोबस्त कीजिए। मैं इतने दिन तो कलकत्ते के सफर में भी बाहर नहीं रहा।
0: देखिए, हमारे वीजा पर एंट्री भी नहीं है, अगर यहां ज्यादा टाइम लग गया तो मुश्किल हो सकती है।
4: ठीक है, 30 सेकंड बाद आपके कमरे की बालकनी में एक तश्तरी की शक्ल का जहाज उतरेगा। आप उसमें बैठ जाइए, उसमें एक नीला बटन होगा, उसको

0: दबा दीजिए, एक हल्का सा धमाका होगा, लेकिन डरिएगा नहीं, आप फौरन जन्नत के दरवाजे पर होंगे।
1: लेकिन आप इस खातून को वापस बुला लीजिए।
0: क्यों?
2: ये हमारे साथ जाने पर इसरार कर रही हैं। अगर हम कहीं अगवा के झूठे इल्जाम में पकड़े गए तो बड़ी बदनामी होगी।
0: आप घबराइए नहीं, वो साथ नहीं जाएंगे। आपका जहाज पहुंच गया है, बालकनी पर जाइए।

0: ये रहा नीला बटन, शेखपीर तुम दबाओ।
1: नहीं नहीं तो
0: अच्छी बात है। जल तू जलाल तू, जल तू जलाल तू, आई भला को टाल तू, आई भला को टाल।

0: अल्लाह, ये आवाज
1: दारोगा जन्नत, दरवाजा खोलो।
0: अजहर उठो, क्या कह रहे हो तुम?
1: अजहर? कौन अजहर? मैं मिर्जा गालिब हूँ।
0: क्या हो गया है आपको, जागिए ना।
1: तुम और वो शेख पीर कहाँ गया? और वो जुजिका बेगम?
0: क्या अब आप पराई नौ बेटियों के ख्वाब देखने लगे हैं? नसीब फूट गए मेरे।
1: नसीब तो नहीं बेगम, लगता है सुराही टूट गई है।
0: सत्यानाश, अरे सारी दरी चौपट हो गई।
1: और मेरी किताबें? अरे बेगम लपक कर उठाओ तो इन्हें।
0: ये लो।
1: दीवाने गालिब, ओफो ये तो सारा भीग गया।
0: और ये
1: हैमलेट, ओफो और बढ़ती हुई आबादी, ये भी तो भीग गई।
0: आपको किताबों की पड़ी है? दिन रात दीवाने गालिब, हैमलेट और बढ़ती हुई आबादी जैसी किताबों में सर खपाई करते रहते हो। सारी दरी चौपट हो गई, सोते सोते बच्चों की तरह हाथ मारकर सुराई गिरा दी।
1: गुस्सा ना करो बेगम, ये बताओ हमारे कितने बच्चे हैं?
0: मुझे ये बेवक मजाक अच्छा नहीं लगता।
1: मैं संजीदा हूँ।
0: आपको पता नहीं?
1: क्या बताऊं बेगम, कितना भयानक ख्वाब था। जल्दी से बताओ, मेरे हाथ पांव काबू में नहीं है।
0: ऐसा क्या देख लिया? अमजद के अलावा कौन है हमारा?
1: अरे हाँ, याद आया। शुक्र है मालिक तेरा।
0: किस बात का शुक्र?
1: कुछ नहीं, सो जाओ।
0: सारी दरी खराब कर दी और कहते हैं सो जाओ।
1: अरे परवाह न करो बेगम, दिल की सफाई का ख्याल रखो, घर की सफाई मैं कर लूंगा।
0: आपके ख्याल में इसको सुबह तक ऐसे ही पड़ा रहने दूं?
1: ये भी ठीक है। अब अगर उठी गई हो तो सफाई के बाद एक कप चाय भी बना देना।
0: क्या?
1: कुछ नहीं भगवान, कुछ नहीं। मैं जाग गया हूँ इसलिए समझा कि शायद

सामिन भी आप सुन रहे थे डॉक्टर आफाक अहमद की तहरीर का द ड्रामिंग सवेरा का दूसरा और आखिरी हिस्सा। हिस्सा लेने वाले फनकार थे इंदु रैना, शशि किरण छाबड़ा, ज्योति रैना, श्याम नागपाल, राणा सज्जाद, अब्दुल रशीद, विजय कुमार मट्टू और मनोहर परोथी।

पेशकश मनोहर पड़ोती की थी, माविन थे मोतीलाल कचरू। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लोफर फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और प्रोग्राम के अगली पेशकश किशोर कुमार की आवाज़ में अनुरोध फिल्म का नगमा, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे अंदाज फिल्म का नगमा। और सामिन लीजिए, आप सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में मजबूर फिल्म की ये पेशकश।

आप सुनिए महमूद रफ़ी की आवाज़ में मजरू का लिखा है गीत, जिसे मौसीकी सजाया है उषा खन्ना ने। फिल्म है साजन की।

0: पर सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में नमक हलाल फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है बप्पी लहिरी ने।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

मोहम्मद रफी राशा भोसले को आप सुन रहे थे। फिल्म थी कश्मीर की कली, नगमा निगार थे एसएच बिहारी, मौसीकार ओपी नैयर। सामिन, इस फिल्म के इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।

ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम परम्बानंद मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज में भारत की हिस्सेदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरक सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं, जहां वो भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स खवातीन की दो रोज़ा वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है। ईरान ने अमेरिका के सिलसिलेवार हवाई हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में अमेरिका के फौजी ठिकानों को

निशाना बनाया है। तेल की आलमी कीमतों में 2% से ज्यादा का इजाफा हो गया और फीफा आलमी कप में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हरा दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उसका मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के सदर प्राबुवो सुबियांतो के हमरा आज योग्यकार्ता में यूनेस्को के आलमी विरासत के मकाम प्रम्बानन मंदिर का दौरा किया। वजीर अजम का क्लासिकी योग्यकार्ता रक्स के साथ रिवायती अंदाज में खैर मकदम किया गया, जिसमें इंडोनेशिया के गुनागुन सकाफती विरसे की झलक पेश की गई। दोनों रहनुमाओं ने नवीं सदी के मंदिर कम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां वजीर अजम मोदी ने असल शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भारत इंडोनेशिया इश्तराक के जरिए तहफुज की जारी कोशिशों का जायजा लेने से पहले मंदिर की नक्काशी का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वो मुख्तलिफ मुकदस मकामात पर भगवान शिव के साथ जुड़ने के मुतादिद मौके मिलने को अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। इंडोनेशिया में योग्यकार्ता के मकाम पर प्रम्बानन मंदिर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर अजम ने कहा कि वो हटकेश्वर महादेव के वतन वाडनगर में पैदा हुए थे और ये के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उनके लिए खास अहमियत है, क्योंकि वो उसकी तामीर और तरक्की से बरह रास्त जुड़े हुए हैं। भारत और इंडोनेशिया ने आला तालीम के शोबे में तआवुन को वसअत देने की गरज से एक अहम कदम उठाया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कल ऐलान किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बेंगलोर इंडोनेशिया में अपना पहला समुद्र पार कैंपस कायम करेगा। ये कैंपस मशरकी जावा में शंगसारी खसूसी इकतसादी जोन में कायम किया जाएगा। इस कैंपस से पूरे आसियान खत्ते के तलबा और पेशा वाराना अफराद के मुस्तफिद होने का इम्कान है। भारत और इंडोनेशिया ने हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत की है और बैन अलावी कानून के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए फैसला कुन मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। जकार्ता में वजीर अजम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के सदर प्राबुवो सुबियांतो के दरमियान दो तरफा बातचीत के बाद जारी एक मुश्तर बयान में दोनों रहनुमाओं ने आलमी सतह पर करार दिए गए दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, जिनमें वो दहशतगर्द और दहशतगर्द तंजीमें भी शामिल हैं जिन्हें अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की 1267 बंदिशों की कमेटी ने नामजद किया हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इसके लिए साजगार पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम और इससे निपटने में ताउन को गहरा करने से इत्तेफाक किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचने वाले हैं, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरी सालाना सरबरा मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर अजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शरीक होंगे, जहां वो दोनों मुल्कों के सरकर्ता कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से खिताब भी करेंगे, जो भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात का एक मजबूत सतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ब्रिक्स मुल्कों की खवातीन की वजारती मीटिंग कोची में शुरू हो गई है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी और सेक्रेटरी अनिल मलिक समेत और दीगर सरकर्दा शख्सियात ने खास इजलास में शिरकत की। ये इजलास कोची के ग्रैंड हयात होटल में दिन के 10:30 बजे शुरू हुआ। इससे पहले खवातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर और सेक्रेटरी अनिल मलिक ने मुकम्मल इजलास में शिरकत की। खास इजलास के दौरान मुश्तरका बयान को मंजूरी दी जाएगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से रियासत में शदीद बारिश और सैलाब जैसी सूरत हाल के बारे में टेलीफोन पर बात की, जिसके दौरान जनाब शाह ने सूरत हाल से निपटने में वजीर आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। महाराष्ट्र के बहुत से हिस्से गुज़िश्ता चंद रोज से जारी मूसलाधार बारिश से मुतासिर हुए हैं। जनाब शाह ने गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल से भी रियासत में शदीद बारिश और पानी जमा होने से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बात की। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती सरकार को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने आज कहा है कि शोपियां के चन्नापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक तसादुम में एक दहशतगर्द हलाक हो गया है। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई फौज और CRPF की मुश्तरक तौर पर अंजाम

0: आकाशवाणी से बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी के बर्डी ने कहा कि मौके से हथियार और गोली बारूद समेत दहशतगर्द की लाश बरामद कर ली गई है, जिसकी शनाख्त का काम जारी है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला में 24 जून को आए दोहरे शदीद जलजले के बाद ऑपरेशन अमिस्टार्ट के तहत वहां भारत की जानिब से भेजी गई इमदाद की तौसीक करने के लिए वेनेजुएला हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जायसवाल ने कहा कि इस रिलीफ मिशन से दोनों मुल्कों के दरमियान जारी दोस्ती की अक्कासी होती है। लद्दाख में आज से मानसून का आगाज हो गया है। वहां आज सभी जिलों के बहुत से मकामात पर रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, जबकि लद्दाख के बुलंद मकामात और पहाड़ी दर्रों में बर्फबारी हो रही है और बहुत कम फासले तक ही साफ नजर आ रहा है। लद्दाख के महकमा मौसमियात ने मकामी नालों में अचानक और तेज पानी के बहाव और अचानक सैलाब आने के खतरे की वार्निंग जारी की है। केरलम के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इरनाकुलम, उदुकी, थ्रिसूर, मल्लापुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों में कहीं तेज और कहीं बहुत तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनके अलावा कुछ जिलों में इक्का दुक्का मकामात पर मूसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ईरान ने अपने सूबे होर्मुज़गान और बंदरगाही शहर मशहर पर अमरीकी हमलों के बाद अमरीका की फौजी तनसीबात पर जवाबी हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया और फजाइया ने अमरीका के 85 फौजी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से मुश्तरका कार्रवाई की। इस दौरान बहरीन की वजारत दाखिला ने अपने मुल्क के बाशिंदों से कहा कि सायरन बजने के बाद पनागाहों में चले जाएं। इससे पहले अमरीका ने आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले तजारती जहाजों पर ईरानी हमलों के बाद ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए थे। खाम तेल की आलमी कीमतों में आज 2% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान ताजा कशीदगी की वजह से जंगबंदी को खतरा लायक हो गया है। इस जंगबंदी की वजह से तवानाई की आलमी मंडियों को थोड़ी राहत मिली थी। शारजा से पाकिस्तान के शहर कराची जाने वाले एक बोइंग 737 तैयारा नेविगेशन सिस्टम में खराबी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से रबता मुनकता होने के बाद लापता हो गया। इस तैयारे में अमले के 5 अरकान सवार थे। K2 एयरवेज का यह तैयारा 27 साल पुराना है। इम्कान है कि यह तैयारा कराची के जुनूब मगरब में समुद्र में गिरकर तबाह हो गया। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वैंकूवर में पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 3-4 गोल से हराकर 1954 के बाद पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। अब क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने योग्याकार्ता में यूनेस्को को आलमी विरासत के मकाम परम्बानन मंदिर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर के तहफ्फुज में भारत की हिस्सेदारी से दोनों मुल्कों की मुश्तरका सकाफती विरासत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं, जहां वो भारत ऑस्ट्रेलिया की 30वीं सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। और ईरान ने अमरीका के सिलसिलेवार हवाई हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में अमरीका के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1073 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामीन शाम के 5 बजे चाहते हैं।
2: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुधवार है आज और आप इंतज़ार कर रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं हमारे इस पहले गीत से, जिसे हमने आशिकी फिल्म से लिया है। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की हैं। पसंद आप सभी श्रोताओं की। गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से वेद मिठा, अलका मिठा। सागर एमपी से चंद्रेश गोहर, श्रीमती वंदना गोहर, मयंक गोहर, तन्वी गोहर, जयपाल यादव। आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना और निवान शर्मा। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। सूरतगढ़ से भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानविका। इसी गीतों को सुनना चाहा है खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन बारासा। गांव कलाना, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा और इनके परिवार के सदस्य। और इनके साथ हैं लीलाधर स्वामी। नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, नीति, कुशल, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह। छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली, प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोड़के। हनुमानगढ़ टाउन से रज्जाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जोसान खान। गांव नोला रामपुरा से सुरेंद्र डीडन, सकीला डीडन, संदीप अनवर अकुबावरा और इनके परिवार के सदस्य। रवर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। चक 15 पीएस से सर्वजीत सिंह जोसन, सर्वजीत सिंह, सर्वजीत कौर, गुरमत सिंह, आदर्श पाल और रोबिन सिंह। पुरखोलुस गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अज्जान, साइमा नवाज, हसन नवाज, आबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और इनके परिवार के सदस्य। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष, दीपल, उर्वशी, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिकलानी, बबीता मिकलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, संगरिया से श्याम मिड्ढा, सुमन मिड्ढा, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, सुल्तानपुर यूपी से यशमित निरंजन, सौम्या, अविरल, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, यहीं से सरवन रेणवा।

हंसराज भाटिया, मनीराम रणजीत राम, सुरेंद्र भादू और इनके परिवार के सदस्य बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन एमपी से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मुणत, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, राजदीप राशि, श्रीमती शीतल राजेश, कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल रणजीत कौर, जयप्रकाश बिमला, मन्नत गुरकीरत, राहुल गुरशब सिंह, राहुल गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। आप सभी ने सुनना चाहा है आतिफ असलम की आवाज़ में रेस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुने फना फिल्म का गीत, शान और कैलाश खेर की आवाजों में। पसंद आप सभी श्रोताओं की। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल, निशा। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर। गांव हिप्पर सोगा ओसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा पानु शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। लखवाली हेड से मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या। यहीं से मोहम्मद रफीक, महावीर लोहरा, मुकनाराम और इनके परिवार के सदस्य। गांव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढुकिया, प्रपीला ढुकिया, ज्योति, शिवम ढुकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढुकिया, इवा धारणिया। अमरपुरा जालूघाट से जगदीश चंद्र प्रजापति, विमला प्रजापति, मोनू प्रजापति और राजेंद्र प्रजापति। गांव अरायण से डॉक्टर बनवारी लाल, जयपाल, विमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम, जयपाल और पूनम चालिया। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला शबाहत, कीरत हुजरे और रेहान शेख। चक 14 पीएसबी से कुलदीप सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विर्क, गोरा जगशीर और इनके परिवार के सदस्य। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गांव टोरवाल, नवा शहर, पंजाब से गगनदीप थांदी, चित्रा कुमारी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत, भरत, कमल साणी, ये पसंद करने वाले हैं गोरया जालंधर से। मेहरनगर उमरखेड़ पर महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रणीता, अर्जुन और इनके परिवार के सदस्य। बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बागड़िया, क्रियांश बागड़िया, रजत और बेबी गरिमा बागड़िया। बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जय श्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाबा साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पी बी कुल थे। साधुल शहर से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला। अलीका तहसील डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू रजनी। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां। उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचाणी, भारती, विनीत, मिथिल, बाबू भाई,

चांदीवाला और इनके परिवार के सदस्य। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम तुम बिन, आवाजें सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की।

साथियों, ये वाणी कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से सुन रहे हैं और इस समय आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए, अब सुनते हैं डर फिल्म का गीत उदित नारायण की आवाज़ में। कुछ पत्र शामिल करते हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता। मक्खू पंजाब से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, मनीष बजाज। गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और अंजू बेनीवाल। डबवाली से जेके बोकोलिया, श्रीमती सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल और मीनू बोकोलिया। श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेचा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार वर्मा, नरेश कुमार शर्मा। मसीता डबवाली से दर्शन लोट, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर और हनी लोट। इनके साथ हैं सारिका और निहारिका। मंडी गोलवाला से ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान। तो लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण मोनिका मनीष सहारण, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार हरियाणा से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजपाला नवीन, मंदी प्रियंका, सपना कार्तिक, वेदांश जांगड़ा, बिल्लू सूद, सुनीता सूद, आशीष सूद, चांदनी विश्वजीत मंडी केसरी सिंहपुर से, गांव बनवाला हनवता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और इनके परिवार के सदस्य, हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारी लाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, गांव खारिया जिला सिरसा से प्रताप, चिनाकल, इंद्रा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया और इनके परिवार के सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है सोनू निगम, उदित नारायण, साधना सरगम और साथियों की आवाज़ों में कल हो ना हो फिल्म का ये गीत।

डुंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तड़, मुकेश तड़, रामचंद्र तड़, कपिल देव और हिमानी जाखड़। अनूपगढ़ से ज्ञान चंद, पूनम, कोमल, रवि, नेहा, चंदन, मेहू, लक्ष्य और माधव। कासम कॉलोनी सनावत से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नुरुमीना इर्फ, इरफान मीना, कासिम मीना। गांव चार एम से कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप। हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा। कन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया, ताहिरा। भोला कॉलोनी घरोंडा करनाल हरियाणा से बीजेंद्र कुमार, जयचान, कांतारानी गुंजन, साहिल और वाणी जयचान। मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग। जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची कोमल, सोमल कार्तिक सोनगरा। भोपाल एमपी से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, लाली श्रीवास्तव, आशा, राधिका और श्रीवास्तव परिवार। भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीतू, कीनू, मदन शर्मा। यहीं से फुसाराम मील, महावीर लोहरा, अमित कुमार शर्मा और इनके परिवार के सदस्य। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव के साथ विनोदपुरी। आप सभी ने सुना चाहा है तन्नू वेड्स मन्नू फिल्म का ये गीत।

चोटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, सफीदो सिटी हरियाणा से नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाड़ो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लवकुश और समस्त खन्ना परिवार, मारारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, रशीद वारसी, कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, धानोरा विटाली तहसील नांदुरा जिला बुलडाणा से महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, बटीना रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहितर नारंग और तानिया नारंग, कुछ पत्र भी हमें मिले हैं, मलोट पंजाब से राजकुमार बिमला, गैरी इंदुरा, विकास प्रियंका, रमन रीतु, भविष मिशेल खन्ना, किंशो खन्ना, बेबी दीपांशी इंदुरा, प्रमिला गंजलोट रतलाम एमपी से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अनिल पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा, सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान, गांव कैरो पंजाब से गुरदर्शन लाल, सुनीता, शम्मी, रचनी, आकाशदीप, आनंद और गुरशाब, अबोहर पंजाब से राम सिंह सेन, सुनील सेन, इंदु सेन, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु शाहू। आप सभी ने सुनना चाहा है खुदगर्ज फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की आवाजों में।

श्रोतो, आज के कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया, प्रस्तुता में आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। आज के कार्यक्रम से अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार, और आप सुने ये गीत।

यशोदा भी युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वाइव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। अब से कुछ ही देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सराय की हिंदी में। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:30 पर। जिले की चिट्ठी 6:40 पर। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर, जिसे हम अपने जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। चौपाल आप सुनेंगे 7 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे कृषि संबंधी जानकारियों के

अलावा लोकगीत और लोक भजन। और आज बुधवार का दिन है और आज होता है पत्रोत्तर कार्यक्रम। चौपाल में श्रोताओं के पत्रों के उत्तर भी दिए जाएंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 7:45 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 8:00। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रात 8:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत सुनिएगा रात 9:15 पर। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम रात 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मनभावन आप सुनेंगे रात 10:00। प्रस्तुता संजय पैद, कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया। ये थी जानकारी कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी सूरत का के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं।

मीटिंग वेव 326 दशमलव 7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतकल के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 6:05 होने को हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सराय की।

भाई प्रकाश कौर ते सुरिंदर कौर तक आया कीत सुनना ना लियो आजकल साइबर फ्रॉड बहु वधें दे पाए हिन। तुसा सुनया हो सी के इंदे खाते चू 40,000 रुपये निकल गए। उन्होंने ऑनलाइन काम करें दे होए 2 लाख रुपये गुआ गिदे। इंज हर महीने हजारा धोखे आलिया लेवन देवन दिया शिकायत पईया मिलेंदियां हिन। तुहाडे कोलू भी इंज

0: नाल ही सराइकी प्रोग्राम इथा ही खत्म थींदा है। ए प्रोग्राम तोहा को किंज दा लगा साकु खत घल के दसना ते हुन हरजीत कौर को देवो इजाजत।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सराई की। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की एक कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार का इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार अलर्ट। बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2.25 लाख क्विंटल का राज्य बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क की गुणवत्ता, एक्सप्रेसवे की सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं की जमीनी स्थिति जानी। केंद्रीय मंत्री के साथ दिल्ली से NHAI और मंत्रालय के आला अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी रहा। उन्होंने एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर चर्चा की। इस दौरान दुर्घटना संभावित क्षेत्र यानी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान और सुरक्षा मानकों को और कड़ा करने पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरे में अलवर जिले के पिनान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्री गडकरी से मुलाकात की। अलवर और

0: दौसा के बाद केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी कोटा के लिए रवाना हुए। वे मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के पास बन रही दरा टनल का भी जायजा लेंगे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहेंगे। अब से कुछ ही देर पहले तीनों नेताओं ने बूंदी के लबान में आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा जिले के खातोली में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने करीब 71 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क निर्माण, संपर्क मार्गों के विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल सुविधाओं से जुड़े काम शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि विभिन्न गांवों को जोड़ने वाली नई सड़कों और पुलियाओं की मरम्मत तथा संपर्क मार्गों से क्षेत्र की एक्टिविटी को नई गति मिलेगी। इससे आम लोगों का जीवन अधिक सुगम और सुविधाजनक होगा।
1: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने की पानी की समस्या रहेगी, न बिजली की समस्या रहेगी। यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर काम चलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो बरसों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई। साथ ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और कुसुम योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आज डीग बाईपास निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बाईपास के निर्माण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था अधिक सुगम और व्यवस्थित होगी। इस मौके पर श्री बेढम ने कहा कि बाईपास के बनने से तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।
2: यह वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने शिलान्यास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, और भविष्य में भी जो जो आवश्यकताएँ हैं, हम जनता की अपेक्षा पर खड़े उतर के उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल और वित्त मंत्री ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्य सरकार ने इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए पौधों के वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज जयपुर में सचिवों की समिति की बैठक ली। इस दौरान विभिन्न योजनाओं, हरियालो राजस्थान अभियान और शहरी तथा ग्रामीण सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़, जयपुर और कोटा जिले पौधरोपण अभियान में अग्रणी है। मुख्य सचिव ने बताया कि शहरी सेवा शिविरों में अब तक 28,000 से ज्यादा पट्टे दिए जा चुके हैं। वहीं ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए 38 लाख से अधिक नागरिकों को फायदा पहुंचाया गया है। मुख्य सचिव ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और स्पष्ट रणनीति के साथ अलनीनो चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्रिय और सतर्क है। उन्होंने कहा कि जून महीने में कम बारिश के बाद अब जुलाई में स्थिति में सुधार आया है। इससे देश में कम बरसात वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री श्री

0: खान ने कहा कि अलनीनो संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए निगरानी तंत्र पूरी तरह सक्रिय है। मॉनसून में देरी का सोयाबीन और कपास पर असर पड़ा है। किसानों को मक्का, बाजरा, मूंग और कम अवधि तथा कम पानी वाली फसलों की बुआई की सलाह दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि जून महीने में चलाए गए खेत बचाओ अभियान के तहत 1,24,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे 80 लाख से ज्यादा किसानों तक सीधे पहुँच बनाई गई। उन्होंने बताया कि बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,75,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार किया गया है, जिससे किसी भी स्थिति में बुआई प्रभावित ना हो।
1: हमने 2-3 तैयारियों और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे, और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे, उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो, उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे के बाद आज ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी का ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को नई दिशा देगा। श्री मोदी मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देना है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारत इंडोनेशिया साझेदारी मजबूत हुई है, साथ ही भविष्य का महत्वाकांक्षी एजेंडा तय किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और मानव तस्करी मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने विशेष जांच दल SIT जांच का भी संज्ञान लिया है, जिसमें अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पीड़िता से संबंधित वीडियो और सामग्री को तत्काल हटाने को कहा है। देश भर में अब तक 23 करोड़ से अधिक लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि इनमें 7 करोड़ 81 लाख से अधिक युवा, करीब 5.25 करोड़ महिलाएं और 17 लाख से अधिक शिक्षण संस्थान शामिल हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस अभियान के तहत नारकोटिक्स ब्यूरो, राज्य और जिला प्रशासन, पुलिस, गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलकर देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को जोड़ना और सभी संबंधित पक्षों की गतिविधियों को एक साझा लक्ष्य के लिए एकजुट करना है, ताकि भारत को नशे की लत से मुक्त बनाया जा सके। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सलुम्बर जिले के जयसमंद क्षेत्र के देवपुरा में आज ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया। पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीनों से ग्रामीणों की जांच की गई। इस दौरान 10 लोगों में टीबी के लक्षण मिलने पर उन्हें उपचार के लिए चिन्हित किया गया है। मौसम विभाग ने आज जैसलमेर और बाड़मेर को छोड़कर प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट बताया है। बारां, झालावाड़ और कोटा में तेज बरसात का ऑरेंज, वहीं बाकी 33 जिलों में येलो अलर्ट है। कल सवाईमाधोपुर, कोटा और बारां में झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, वहीं 31 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश की गतिविधियों में 10 जुलाई के बाद कमी आने की संभावना है। इस बीच आज अलवर, कोटा और बारां में बरसात हुई। भीलवाड़ा में भी दोपहर बाद के साथ कुछ देर तेज बारिश हुई। दोहलपुर में सुबह से ही रिमझिम बरसात का सिलसिला बना हुआ है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और उमस का दौर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए दिल्ली से कोटा तक सड़क मार्ग से दौरा। राज्य सरकार

0: इस साल वर्षा ऋतु में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, पौधा वितरण और रोपण का कार्य मिशन मोड पर। अलनीनो की चुनौती पर केंद्र सरकार का अलर्ट, केंद्र सरकार अलर्ट, बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 2.25 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्रीगंगानगर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में संज्ञान लिया, 15 दिन में रिपोर्ट मांगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है, अब आप माधुरी वशिष्ठ से झालावाड़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर समाचार एकांश की ओर से तैयार किया गया है। अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए मशहूर झालावाड़ जिला संतरे की खेती के लिए अपनी खास पहचान रखता है। खूबसूरत स्थापत्य कला से बने किले और महल यहाँ की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत हैं। प्रदेश के दक्षिण पूर्व में बसा ये जिला इन दिनों मानसूनी रंगत में रंगा हुआ नजर आ रहा है। बरसात से कई इलाके तरबतर हैं, खेतों में नई फसल की तैयारी शुरू हो गई है और किसानों के चेहरों पर अच्छी उपज की एक उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ आज झालावाड़ जिले की चिट्ठी शुरू करते हैं। जिले में इन दिनों जन कल्याणकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहा है। जिले में इन दिनों ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाए जा रहे हैं। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों में 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। राजस्व संबंधी प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पेयजल, बिजली, कृषि और अन्य विभागों के काम मौके पर किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने अधिकारियों को समय पर प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भवानी मंडी और झालरापाटन में जनसुनवाई और अटल जन सेवा शिविर भी आयोजित किए गए। इन शिविरों में लोगों ने राजस्व, पेयजल, सड़क, सामाजिक सुरक्षा, किसान सम्मान निधि और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं रखी। अधिकारियों को सभी प्रकरणों का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से 3 दिन की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वहीं हाल ही में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाई गई। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई और अभियान को सफल बनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी जिले भर में सामूहिक योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हुए। जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में लोगों ने योगाभ्यास किया। आयुष विभाग ने नियमित योग अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, पौधरोपण के कार्यक्रम हुए, श्रमदान जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया और अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर जिले में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक पेड़ लोकतंत्र के नाम अभियान के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने पौधे लगाए तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। खेल संकुल में पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। इससे पहले झालरापाटन स्थित गोमती सागर और द्वारकाधीश मंदिर में प्रदेश में अच्छी वर्षा, कृषि समृद्धि और जन कल्याण की कामना के साथ विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। इसमें जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। उधर मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों को जल भराव वाले क्षेत्रों की निगरानी, साफ सफाई और आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, कैंसर और सिकल सेल जांच, टीबी जांच तथा आयुष्मान भारत योजना से जुड़े कामों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रम भी लगातार जिले में आयोजित किए जा रहे हैं। किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।

0: की है। साथ ही कृषि विभाग किसानों को समय पर तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहा है। जिले में पेयजल, बिजली और सड़क संबंधी कामों की भी नियमित समीक्षा की जा रही है। संबंधित विभागों को आवश्यक सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ झालावाड़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामारो जायजो लेवन सारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर किन्नो। राज्य सरकार ई चौमासा माय 10 करोड़ पौधा रोपणो तय किन्नो। पौधा देवण और रोपण रो काम मिशन मोड माथे। अल नीनो री चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजा री उपलब्धता तय करण बाबत 2.25 लाख क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए नाबालिग टाबरी सागे यौन दुराचार रा मामला माए संज्ञान लीनो। 15 दिन माए रपट मांगी। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रो दौरो किन्नो। वह सड़क री गुणवत्ता, एक्सप्रेस वे माथे हिफाजत री व्यवस्था और मुसाफिरा रा सुबिताओं जुड़िया हालात रो जायजो लीनो। केंद्रीय मंत्री दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और मंत्रालय रा आला अहलकारा सागे दौरो किन्नो। वह एक्सप्रेस वे माथे सड़क हादसा री तादाद माई कमी लावन रा उपाया रा बारा माई चर्चा कीनी। इस दौरान हादसा री शंका वाली ठोड़ा री पिछाण और हिफाजती मानका री पालना और कड़ाइयों करावन रा बारा माई चर्चा करी जी। अलवर जिला रा पिनान माई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी श्री गडकरी मुलाकात कीनी। अलवर और दौसा पाछा केंद्रीय मंत्री गडकरी कोटा सारू रवाना भया। मारो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कन्ने बन रही दरा सुरंग रोई जायजो लेवन रो कार्यक्रम है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही वहां सागर रह वेला। थोड़ी देर पहले तीन ही नेता बूंदी जिला रा लबान माए राखी जिया कार्यक्रम माए शिरकत कीनी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा जिला रा खातोली रे कृषि उपज मंडी माए राखी जिया कार्यक्रम माए करीब 71 करोड़ रुपये रा खर्च वाला विकास रा कामा री नींव रखी और पूरा भया काम जनता ने सौंपया। आम आए सड़क बनावण, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पीवण रा पानी रा सुविधाओं जुड़िया काम शामिल है। इ मौके श्री बिरला कहो के आ कामाओं न्यारा न्यारा गांवां ने जोड़बा वाली नई सड़क बनावण और सड़क और पुलिया री मरम्मत और हल्का रा जुड़ाव ने तेजी मिलेला।
2: इस खातोली के जो सारा इलाका है, न रोड की समस्या रहेगी, न पीने की पानी की समस्या रहेगी, न बिजली की समस्या रहेगी। यहाँ की रोड सबसे हालत खराब हुआ करती थी, जो खराब है बरसात के बाद उसको युद्ध स्तर पर काम चलाकर उसकी रोड कनेक्टिविटी, पुलिया, पीने का पानी, बिजली, ये सारी सुविधाओं का जो बरसों से अभाव था वो अभाव भी पूरा करेंगे।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मारा रहवास माथे ऊर्जा विभाग रा अहलकारा सागे मीटिंग कर और कामकाज रो जायजो लीनो। मीटिंग माए बिजली री पूर्ति लगातार बनाई राखण रे बारा माए चर्चा करी जी। इस आगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना रा तहत काम माए तेजी लावण रा हुक्म दिया जिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम आज डीग बाईपास बनावण रा काम री नींव रखी। करीब 9.5 किलोमीटर लंबी आ सड़क बनावण पर लगभग 60 करोड़ रुपया खर्च करया जावेला। वो बाईपास बन जावण ई हल्का माए आवण जावण री व्यवस्था और चौखी बनेला। ई मौके श्री बेढम कहो के वो बाईपास बन जावण तरक्की रा नुआ गेला खुलेला।
3: यहाँ वर्षों पुरानी मांग थी कि नगर में जाम की समस्या से निजात मिले और बाईपास का निर्माण हो। 61 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये बाईपास, जिसका मिट्टी का काम पूरा हो गया है, इसका हमने

0: पास किया है। इसके अलावा करीब 2000 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में चल रहे हैं, प्रगतिरत हैं, और भविष्य में भी जो जो आवश्यकताएं हैं हम जनता की अपेक्षा पर खड़े उतर के उनके विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने का काम करेंगे।
1: राज्य सरकार ई चौमासा में 10 करोड़ भत्ता पौधा रोपण तय किनो है। ई सारू पौधा लगावण रो काम मिशन मोड माथा चलायो जा रियो है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में सचिवारी समिति सागर मीटिंग में आ जानकारी दीनी। वे न्यारी न्यारी योजना में हरियाणो राजस्थान अभियान और शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर रा काम रो जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। मीटिंग में वन विभाग रा अहलकार बतायो के जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, झालावाड़ और कोटा जिला पौधारोपण रा काम में अगाड़ी है। मुख्य सचिव बतायो के शहरी सेवा शिविर में हाल ताई 28,000 बत्ता पट्टा दे दिया गया है, जबकि ग्रामीण सेवा शिविर के जरिए 38,00,000 बत्ता लोगों ने फायदो दियो चियो है। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अल नीनो रा असर री शंका न ध्यान रखता थका आज नई दिल्ली में आला दर्जा रा अहलकार सागर मीटिंग कीनी। वह कहो कि केंद्र सरकार पूरी तैयारी और साफ रणनीति सागे अल नीनो री चुनौतियां रो सामो करण सारू सक्रिय और सावचेत है। कृषि मंत्री कहो कि देश में जेठ महीना में भी कम बिरखा पाछे आषाढ़ में हालात सुधरिया है। देश में अब कम बिरखा वाला जिला री तादाद 262 घटर 178 रह गई है। मीटिंग पाछे खबर नवीसन सागे बातचीत करता थका केंद्रीय कृषि मंत्री कहो के अल नीनो री शंका न ध्यान रखता थका पूरी निगरानी रखी जा रही है। इबीचे चौमासा री बिरखा मोड़ी सरू वेवन रे कारण सोयाबीन और कपास री साख माथे असर पड़ियो है। किसाना ने मक्का, बाजरा, मूंग और बेगी पाकन वाली और कम पानी री जरूरत वाली साखा री बुआई री राय दीरी जी है। कृषि मंत्री बतायो कि जून महीना में चलाई गया खेत बचाओ अभियान रा तहत करीब 125,000 कार्यक्रम रखी गया और 80,00,000 बत्ता किसाना ताई पहुंच बनाई जी। वे बतायो कि बीज री उपलब्धता तय करण सारू करीब 2.25 लाख क्विंटल रो राष्ट्रीय बीज भंडार बनाई चियो है।
2: हमने 2-3 तैयारियों और की, एक तो बीज की कोई कमी ना रहे और इसलिए हमने लगभग 2.25 लाख क्विंटल राष्ट्रीय बीज का एक रिजर्व भंडार रखा है कि कहीं अगर एक बोनी खराब हो गई, बीच में कहीं गैप ज्यादा हो गया बरसात में, तो बीज की कमी हमारे पास ना रहे, उसकी व्यवस्था भी की है। ऐसे समय किसान को पैसे की भी जरूरत होती है, इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास नहीं थे वो बनाने का भी अभियान चलाया है। 30 जून तक जो 1,14,613 आवेदन प्राप्त हुए थे उनमें से 94,417 स्वीकृत करके उनके किसान क्रेडिट कार्ड बना दिए गए हैं। फसल बीमा योजना में भी किसान ज्यादा सम्मिलित हो उसके लिए भी हम अभियान चला रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरा पाछे आज ऑस्ट्रेलिया सारू रवाना भे गया। प्रधानमंत्री मोदी रो मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सागे मुलाकात रो कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों बीच कारोबार, निवेश, रक्षा, बनाई लिखाई और साफ ऊर्जा समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जावेला। विदेश मंत्रालय रा प्रवक्ता रणधीर जायसवाल सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बतायो कि श्री मोदी रा इंडोनेशिया दौरा हुई दोनों देशों बीच सहयोग रा खास नतीजा सामने आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए 13 साल री टाबरी सागे यौन दुराचार और मानव तस्करी रा मामला माए श्री गंगानगर रा जिला मजिस्ट्रेट और SP ने 15 दिन माए विगतवार कार्रवाई रपट पेश करण रा हुक्म दीना है। आयोग विशेष जांच दल SIT री ओर करीची जांच रोई संज्ञान लीनो है, जिन्हें तेत हाल ताई 18 आरोपिता ने गिरफ्तार करी चिया है। बाकी आरोपिता री बेगी गिरफ्तारी रा हुक्म ही दिया चिया है। इस आगे सगला डिजिटल प्लेटफॉर्म ई मामला माए पीड़िताओं जुड़िया वीडियो और सामग्री तुरंत हटावन सारू कही चियो है। देश में हाल ताई 23 करोड़ बत्ता लोग नशा मुक्त भारत अभियान जुड़ गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रे मुजब आम आए 7,81,00,000 बत्ता नौजवान, करीब 5.25 करोड़ महिलावां और 17,00,000 बत्ता स्कूल कॉलेज शामिल है। केंद्रीय सामाजिक

0: न्यायर अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कहो कि ई अभियान रा तहत नारकोटिक्स ब्यूरो राज्य और जिला प्रशासन पुलिस गैर सरकारी संगठन और अस्पताल मिलर देश में नशारी लत न जड़ों खत्म करण सारू लगातार कोशिश कर रहा है। टीबी मुक्त भारत अभियान रा तहत प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग री ओरों जांच और जागरूकता अभियान चलायो जा रो है। सलूम्बर जिला माए जयसमंद हल्का रा देवपुरा माए आज लगाई गया ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगों री पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन स्वास्थ्य जांच करी जी और टीबी री शंका वाला लोगों ने इलाज री राय दी जी। अरब मौसम मौसम विभाग आज जैसलमेर और बाड़मेर अलावा आखा राज्य माए बिरखा विवण सारू चेतायो है। बारा झालावाड़ और कोटा माए तेज बरसात रो ऑरेंज जबकि 33 जिला माए येलो अलर्ट जारी करी चियो है। काल सवाई माधोपुर कोटा और बारा जिला माए चोखे बिरखा रा आसार है। 10 जुलाई पाछे बिरखा माए थोड़ी कमी री संभावना है। ई बीचे आज अलवर कोटा और बारा माए में बरसियो। भीलवाड़ा माए दोपहर पाछे बादलों री गाज सागे थोड़ी देर ताई तेज बारिश हुई। धौलपुर माए सवारे हुई छांटो छिड़को भियो। दूजी कानी जैसलमेर माए उमस और जोरदार गर्मी रही। जयपुर माए विदेश मंत्रालय और राज्य सरकार री ओरों 16 जुलाई ने विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस राखी जावेला। जनता ने सुरक्षित और वैध प्रवासन रा प्रति जागरूक करण और फर्जी एजेंटा और गैर कानूनी प्रवासन बचाव रा उपायों की जानकारी देवन सारू आ कॉन्फ्रेंस राखी जा रही है। इनो दूजा देशों माए काम कर रहा भारत रा लोगा और मजूरा नो भलो तय करण माए मदद मिलेला। कॉन्फ्रेंस माए राज्य सरकार री प्रवासी राजस्थानिया जुड़ी न्यारी न्यारी पहला कौशल विकास और सैर सपाटा ने बधाओ देवन समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विचार करियो चावेला। आखिर माए खास समाचार एक फेर सुन ले रहो। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे री गुणवत्ता और बनाई चुनाई रा कामा रो जायजो लेवन सारू दिल्ली कोटा ताई सड़क मार्ग सफर कीनो। राज्य सरकार ई चौमासा माए 10 करोड़ पौधा रोपणो तय कीनो। पौधा देवण और रोपण रो काम मिशन मोड माथे। अल निनोरी चुनौती रो सामो करण सारू केंद्र सरकार सावचेत। बीजा री उपलब्धता तय करण बाबत 2.25 लाख क्विंटल रो बीज भंडार तैयार। और राष्ट्रीय महिला आयोग श्री गंगानगर माए नाबालिग टाबरी सागर यौन दुराचार रा मामला माए संज्ञान लीनो। 15 दिन माए रपट मांगी। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुननी है सगळ्या श्रोतावाने मुकेश भाई का घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम। भाई लोगो, आज बुधवार को दिन है और बुधवार का दिन आपा ले गया एक पत्रोत्तर, जका ग माँ में थारी प्रतिक्रिया बांचा और भांगा उथड़ा दिए एक। सैशु पहला तो थे मारो जको जीमेल को पतो है वो नोट कर लियो, aircsuratgarhchopal@gmail.com। ई पर थे 7 से 7:30 बजे तक जीमेल भेज सको, जबकि मारी तरफ पूरी कोशिश रहेगी कि मैं शामिल करा। इनके सागे सागे खूब सारा संदेश भी आयड है, वे भी शामिल करांगा। तो सैशु पहला आपा सुन लिया भजन, बिंग बाद का मां आपा ये सगली चीज़ा शुरू करा। सुनो सा

भाई लोगों, सुनियो भजन और बात करा आपा पत्रोत्तर की। और शुरुआत करा आपा पहला संदेश शू। वो संदेश भेजो है हनुमानगढ़ टाउन शू रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान और इरफान खान। ये लिखा है कि प्रोग्राम चौपाल पेश करता ने घनी घनी राम राम। राम राम सा थाने भी चौपाल में बरोबर सुना घणो फूट रो लागे। इंगे साग साग ये लिखा है कि गीता रो गजरों में गाना भजन जकर चलाओ वे पसंद आवे। मौसम की जानकारी बाजार भाव ये जो भी थे बताओ, ये सगली जानकारी माने घनी दाई आवे। तो रजाक मोहम्मद जी देवा थारो मोकड़ो सारो धन्यवाद। ई तरह ही प्रतिक्रिया लिखता रहो। अगलो जको संदेश आयो है वो है अनूप शहर शू। भेजनिया है गजानंद सारस्वत, डॉक्टर ताराचंद सारस्वत, सोनू, पवन, साहिल, राघव, मुरारी लाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, फुस्सा राम मील, महावीर लोरा। ये लिखा है कि माने थे मूंग की पछेती किस्म बताओ सा। चौपाल शू में खेती बाड़ी री बात सुन के फ़ायदो भी उठावा और संदेश जरूर शामिल करिया। तो आने बता देवा कि थारो संदेश जको है वो शामिल होने लाग रही है। और सागे सागे मूंग की पछेती किस्मा की बात करा तो थे दोपहर का माँ 12:50 पर एक कार्यक्रम आवे खेत खलियान। तो बिंग माई तिरऊ संबंधी जानकारी देता रहेवा। और बिंग अलावा चौपाल का माँ भी आपा खेती बाड़ी उस संबंधी जानकारी टाइम टाइम पर देता रहेवा। सिर्फ एक बुधवार और शुक्रवार ने छोड़ के बिंग अलावा आपा खेती बाड़ी उस संबंधी थी बात करा। तो बिंग माँ थाने जरूर मूंग की पछेती किस्म है जकी बंग बारे में जानकारी देश। अगलो जगह संदेश आयो है वो भेजो है 4M शू। कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत कौर, जसदीप कौर और श्याम लाल जी। ये लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम घणो अच्छो लागे और राजस्थानी प्रोग्राम जका भी है बे सगड़ा अच्छा लागे। तो आंगो भी देवा मोकलो सारो धन्यवाद। प्रतिक्रिया थोड़ी सी लंबी मांडो तो मैं बा भी पढ़ांगा। अगलो जो संदेश आयो है वो भेजो है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत, कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गोराया, जलंधर शू। ये लिखा है कि थे चौपाल कार्यक्रम पेश करो जो को माने घणो अच्छो लागे, जकी जानकारी दियो बा भी माने अच्छी लागे। इंगे सारे सारे किसाना ने और जकी जानकारी दियो बिंगो फायदो भी होवे और मनोरंजन। और किसी फसल कद बीजनी है और कीटनाशकों को कम कम उपयोग करना है तो इन बारे में भी आने बता देवा कि जैविक खेती की आप टाइम टाइम पर जानकारी देता रहवा और जे बी पर अमल भी करा तो आप अच्छो फायदो उठा सका। वो संदेश आयो है अपने ताई नांदेड़ महाराष्ट्र शू। भेजनिया है नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़। ये लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम पेश करनिया ने राम राम। राम राम सा थाने भी। मैं भी कार्यक्रम सुना अच्छो लागे, रोज सुना और मनोरंजक रेवे। तो आने भी देवा मोकड़ो सारो धन्यवाद। कोशिश करो सा कि संदेश जो है वो राजस्थानी गमा लिखो तो और भी बढ़िया है। बाकी राजस्थानी अगर थारे समझ में आने लग रही है तो आ भी एक अच्छी बात है। अगलो जो संदेश आयो है वो भेजो है मनाली हिमाचल शू। सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। ये भी राम राम लिखी है सा। राम राम अनेजा जी थाने भी। चौपाल कार्यक्रम तसल्लियों सुना बहुत अच्छो लागे। सारा अंगी पेशकश और मेहनत है जकी निष्ठा जकी अब रंग लियावे। इंगे सागे सागे लिखे है कि हास्य झलकी सेल्फी सुखा आज सुनायो जको घणो अच्छो लाग्यो। झलकी तो छोटी लेकिन इनमें जको संदेश हो वो मोटो हो। मोबाइल की जकी जरूरत है या बिंगो इस्तेमाल है बिंगी वजह हूँ आज परिवार है जगह टूटन ला रहे है। सेल्फी में इतना मस्त हो जावा कि आप अपनों नुकसान करा बे।

तो आप बहुत अच्छी बात है कि यूं आपा जागरूक होने लाग रहे हैं, और ये जगह संदेश है, ये जगह झलकी है, आशू आपा ने फायदो मिले, आगे भी आपा ये संदेश पुगावा। तो ईशू अगर कोई आ चीज़ा शू बचे तो बा बहुत अच्छी बात है। अनेजा जी थाने देवा मोकलो सारो धन्यवाद। वो जो को संदेश आयो है वो भेजो है आपने भोपालगढ़ राजस्थान शू, भेजनी है धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। ये लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम पेश करता ने नमस्कार। नमस्कार जी। सागे लिखा है कि आकाशवाणी सूरतगढ़ का सारा प्रोग्राम में बड़ी शिद्दत तू सुना, विशेषकर फरमाइशी गीतों को कार्यक्रम। किसान भाइयों वास्ते कृषि संबंधी जानकारी जकी थे दे वह भी बढ़िया हुए, इनके साथ साथ गीतों रो गजरो विशेष रूप सुना और आनंद उठावा। सागे सागे मौसम संबंधी जगह पूर्वानुमान की जानकारी थे दियो वह भी अच्छी लागे। इनके सागे सागे समय समय पर फसलों की बुआई निराई गुड़ाई और दवाइयों के छिड़काव की जानकारी दियो वे भी अच्छी लगे। तो चिंपा जी थे यहाँ सगड़ी जानकारियों को फायदा उठाओ देवा मोकड़ो सारो धन्यवाद। प्रतिक्रिया दी इन वास्ते भी धन्यवाद। संदेश और भी शामिल करांगा, पहला आप सुन लिया वो गीत सुनो सा।

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144-67186।
1: संदेश पहला सुनियो भाई लोगों गीत। अब आपां पढ़ा अगलो संदेश, वह भेजो है गांव हीरांवाली फाजिलका पंजाब शू। भेजनिया है सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादू। ये लिखा है राम राम मुकेश जी, राम राम सा। प्रोग्राम चौपाल में पत्रोत्तर लाइव सुनन लाग रहा हाँ। लारले हफ्ते चौपाल प्रोग्राम सुनियो, बहुत बढ़िया जानकारी दी खेतियों संबंधित। इंगा सागे सागे जका गीतारो गजरो पेश करियो, भी मैं भी लोक गीत मेरी माता गुड्डी देवी ने बहुत पसंद आया। लारले प्रोग्राम में दुर्गा राम नायक जी और रामेश्वर चावरिया जी की प्रस्तुति में प्रोग्राम बहुत दाए आयो। आने वाले दिन में नाटक को इंतजार रहेगा। दिन में हास्य नाटक सेल्फी सुख भी घणो पसंद आयो। तो गोदारा जी थे कार्यक्रम लगातार सुनन ला रहे हो, इं शू पतो चाल रहे थारा संदेश शू। और माता गुड्डी देवी जी अगर गीत भजन सुनन ला रहे तो आज भी आप गीत भजन चलान ला रहे, और उम्मीद है कि बन पसंद आवेगा। और मारी कोशिश आई रहे कि सगड़ा की पसंद के हिसाब से चलावा, ताकि किंगो भी ओड़मो ना रहे। और थे कार्यक्रम सुनो इंग वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। वो संदेश आयो है गाँव गमंडिया से, भेजनिया है जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, सायना, विष्णु ढूकिया और दोईती ईवा धारणिया। ये लिखा है कि चौपाल पेश करने वाला भाइया ने मोकली मोकली राम राम, थाने भी मोकली मोकली राम राम सा ढूकिया जी। लारले दिना चौपाल में गीतारो गजरो जको रामेश्वर भाई पेश करे वो घणो दाए आयो। लोक भजन हैर लोक गीत पसंद आया। इरे अलावा कृषि संबंधी जानकारी, पशुपालन, बाजार भाव और मौसम री जानकारी उपयोगी रहे। पिछलो पत्रोत्तर दो आवाज में दुर्गा राम जी और मुकेश भाई पेश करियो, सुन गए हिविड़ा शुंदाई आयो। दोना भाई ने मोकली मोकली राम राम। तो थाने भी मोकली मोकली राम राम और धन्यवाद थे कार्यक्रम सुनन लाग रहे हो और प्रतिक्रिया देन लाग रहे हो। और गोदारा जी, सुभाष गोदारा जी को जो को पहला नाम बोलियो तो बाने बता देवा कि ढूकिया जी अब की बार नाम सही लिख रहे जो है कि लारला प्रोग्राम में दुर्गा राम भाई और मुकेश भाई यानी मैं प्रोग्राम पेश करियो। रामेश्वर भाई है जो आगे आवेगा गीता गजरा में, वो थे जरूर सुनिया कार्यक्रम। कार्यक्रम ओ संदेश भेजो है गांव व डाकघर नीमनाबाद, जिला जींद हरियाणा शू, जसबीर सिंह अरोड़ा।

ये लिखा है कि कार्यक्रम चौपाल पेश करने वाले ने सह प्रेम नमस्कार, थाने भी सह प्रेम राम राम सा। मैं लगभग हर बार ई कार्यक्रम ने सुनू और इनमें थे जितनी भी जानकारी दो बे अच्छी लगे। ई खूबसूरत कार्यक्रम की पेशकश करने की जकी थारो अंदाज है वो मैंने पसंद आवे, इन वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। थारो भी अरोड़ा जी धन्यवाद, कार्यक्रम सुनता रहो प्रतिक्रिया लिखता रहो सर। वो संदेश आयो है सांगली जिले गए के जत शहर से, भेजनिया है अल्ताफ हुजरे, शेफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। ये भी लिखे है कि कार्यक्रम है जको मैं रोज सुना और माने पसंद आवे और थे ही मैं जका भी कार्यक्रम में गीत भजन चलाओ बे माने दाए आवे। अगलो जको संदेश आयो है वो भेजो है मेरे शू दिग्दर्शन और कविता गोड़। ये लिखे है कि ये वो देख के आजकल बहुत दुख होवे कि मारा कई किसान भाई आपकी जमीन महानगर के आसपास आ चुकी है जो कि बेचण लाग रहे हैं।

और थे ही मैं जका भी कार्यक्रम में गीत भजन चलाओ बे माने दाए आवे। आगलो जको संदेश आयो है वो भेजो है मेरे शू दिग्दर्शन और कविता गोड़। ये लिखे है कि ये ओ देख के आजकल बहुत दुख होवे कि मारा कई किसान भाई आपकी जमीन महानगर के आसपास आ चुकी है जो कि बेचण लाग रहे हैं प्रॉपर्टी डीलरा ने। तो देखो जी ओ तो बांगो आप पर्सनल मामलो है या केस काम भी बेचनो चाहे या बी पर खेती करनो चाहे वो बांगो व्यक्तिगत मामलो है, बी में आपा दखल कौन देश का नहीं। लेकिन इन चीज़ पर अगर लगाम लगानी है तो कई चीज़ों पर लगाम लगानी पड़े कि आपने जनसंख्या को बदे पोज को होने ला रही है बिना भी आपने कंट्रोल करनो पड़ेगा या नियंत्रण में करनो पड़ेगा। तो ये सगली चीज़ें एक दूसरों जुड़ेड़ी है तो इस सग यहाँ चीज़ों ने ध्यान में रख के ही होश के अगला की जरूरत हो जद भी बेच रहा हो या जब महानगर है वो बढ़न ला रही है तो बाने भी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ेड़ी है वो बांगो व्यक्तिगत मामलों है बीमा आप की कौन केस का नहीं। बाकी थे खुद समझदार हो वहीं पर विचार कर सको और आगे जो को मेल है वो है। बाकी हाँ आपकी प्रतिक्रिया दी गौड़ साहब और दिग्दर्शन जी कविता गौड़ जी तो इन वास्ते दे वहाँ को मोकड़ो सारो धन्यवाद। हाँ जकी समस्या है बा अपने बीच में रखी तो सगला सुनने लाग रहे है और ज़रूर आपने कोई ग्रुप का माध्यम हूँ या ज़रूर आपने अवगत करवा सकेंगे के हल हो उसके। अगलो जो को संदेश आयो है वो आयो है संगरिया शू भेजनिया है श्याम मिड्डा। ये लिखे है कि आज ये आज वो पत्र आकाशवाणी के बेहद लोकप्रिय और मारे दिलों के करीब रहने वाले कार्यक्रम चौपाल की सराहना में लिख रहे हूँ। चौपाल की सहसू बड़ी खूबी इनकी सीधी सरल और आम बोलचाल की भाषा है। जब भी मैं कार्यक्रम रेडियो पर सुना तो महसूस हो गए कि मानो रेडियो कौन ही सुन ला रहे बल्कि गांव की गुआड़ गमा चौक पर या कि बरगद की छियाँ में पीपल की छियाँ में बैठ के आपस में बतियान लाग रहे हैं। तो देखो आ भी बहुत अच्छी बात है मिड्डा जी थे कार्यक्रम ने बहुत गहराइयों सुन ला रहे हो और इन मजे की प्रतिक्रिया दे वा भी बहुत अच्छी बात है। तो थे सुनता रहो कार्यक्रम और आगे लिखा है कि वो कार्यक्रम आज भी आपकी मिट्टी की सौंधी महक ने समेटेड हुए। तो वो सगड़ो सगड़ो श्रोताओं को प्रेम स्नेह ही है जगह की वजह से मैं थारे से जुड़ेड़ा और थे मारे से जुड़ेड़ा हो। सागे आपको कोई अनुभव लिखण ला रहे है कि लारे दिना में नोरगे कन्ने एक ढाणी में मित्र सतवीर स्वामी के अठे गयो बैठे घर की दीवार पर रखेड़ो रेडियो में चौपाल कार्यक्रम चलन ला रहे हो। वो दृश्य इतो जीवंत हो कि परिवार का सारा सदस्य बेहद तल्लीनता और चाव से कार्यक्रम सुनने लाग रहा। आज के इन दौर में जैठे हर हाथ में मोबाइल और एक ही छत के नीचे हो गए भी एक दूसरा दूर है बैठे भी डाणी का माँ कोई भी सदस्य के हाथ में मोबाइल को नहीं हो सारा का सारा एकाग्र हो गए रेडियो सुनने लाग रहा। वो दृश्य एक जीवंत प्रमाण है कि रेडियो की आत्मीयता का गए आज तक आज भी सोशल मीडिया और मोबाइल भी फीका है। चौपाल जैसी प्रस्तुतियाँ हमारी संस्कृति और आपसी जुड़ाव ने जिंदा रखेड़ी है। मिड्डा जी थे काफ़ी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया लिख के भेजी है और सगली बातें जो की है वो सच में बहुत ही मायनों रख है। तो ई प्रतिक्रिया वास्ते देवा थाने मोकलो सारो धन्यवाद। कार्यक्रम सुनता रहो और आगे भी प्रतिक्रिया भेजता रहो। तो भाई लोगों आप सुन लिया ओ भजन सुनो सा।

भाई लोगो आगलो से जो संदेश है वो आयो है अपने ताई चक 15 PSU भेजनिया है सरवजीत सिंह जोशन, सरवजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल जोशन मेलबर्न और रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर। ये लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम में रोज सुना सह शू पहला पत्रोत्तर पेश करता जिन्हें हमारी तरफ से घनी घनी राम राम सा थाने भी राम राम। और सागे लिखा है कि चौपाल में मैं नियमित श्रोता और सारा ही प्रोग्राम बढ़िया लगे जिया गीतारो गजरो नाटक बाजार भाव खेती री बाता ये सब गीत भजन। तो आने भी देवा मोकलो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो। आगलो जो को संदेश आयो है वो भेजो है कस्बा गुन्नौर यूपी शू भेजनिया है फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। ये भी लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम मैंने घणो पसंद आवे। गुजरात गांधी ग्राम शू आपने संदेश भेजो है प्रवीण सोनी और सोनी परिवार। ये भी चौपाल की बड़ाई लिखी है, लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम में जकी जानकारी दो बे माने बहुत अच्छी लगे। वो जो संदेश आयो वो आयो है मोताला महाराष्ट्र शू विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर। ये भी चौपाल कार्यक्रम सुने देवा मोकलो सारो धन्यवाद। अगलो जो संदेश आयो है वो आयो है खारिया जिला सिरसा हरियाणा शू भेजनिया है प्रताप जिनागल, इंदिरा मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। ये लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम में लोक गीत भजन जगह चलाओ संस्कृति और खेती बाड़ी शू संबंधी जकी थे जानकारी देव माने घनी अच्छी लगे। सागे लिखा है कि दशका शू वो कार्यक्रम उत्तर पश्चिम राजस्थान विशेषकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर रे साथ साथ पंजाब और हरियाणा रे गाँव री धड़कन बनेड़ो है। जिनागल जी थे या बात लिखी इंग वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। बाकी थाने बता देवा कि आपने ताई दूर दूर तू शू संदेश और मेल आवे तो आपनों जो को कार्यक्रम है वो सिर्फ आ जिला री आ जगह री अपनी धड़कन को नहीं, वो कई जगह री धड़कन है। लोग इन्हें बड़ा चाव से सुने और आपकी प्रतिक्रिया वहाँ भी देवें। थे कार्यक्रम की प्रतिक्रिया लिखी इंग वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। वो जो को संदेश आयो है वो भेजो है मेहर नगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र शू भेजनिया है अभिजीत ग्वानकर राही। ये लिखा है कि चौपाल कार्यक्रम में जकी जानकारी देवे बे बहुत पसंद आवे आने देवा मोकलो सारो धन्यवाद कार्यक्रम सुनता रहो। वो जो को संदेश आयो है वो आयो है हयात कॉलोनी अररिया बिहार शू फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण। हाँ भी कार्यक्रम की बड़ाई लिखी है देवा मोकलो सारो धन्यवाद। वो जो को संदेश आयो है आगलो वो भेजो है सुरेश राठौड़ गांधीनगर गुजरात शू। हाँ भी कार्यक्रम की बड़ाई लिखी है कि कार्यक्रम घणो लोकप्रिय है और मैं रोज सुना गौरबंद गीत गंगा मारा प्रिय प्रोग्राम है तो देवा मोकलो सारो धन्यवाद। आगलो संदेश आयो है मारा ताई गाँव जोगीवाड़ा श्री गंगानगर शू प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। ये लिखा है कि लारला हफ्ता में खेती बाड़ी शू संबंधित और पशु धन के बारे में जानकारी दी वे माने घनी अच्छी लगी लाभकारी लगी। बाकी पशुओं ने बीमारियों से बचाव और बीमारी होने

होने पर इलाज के बारे में समय समय पर डॉक्टर जी से जानकारी दिलवाया करो सा। तो आने बता देवा कि थे कार्यक्रम रोज सुनता रहो और प्रतिक्रिया लिखता रहो, थाने इस सगली जानकारियां ई कार्यक्रम में सुनने मिलेगी। देवा थारो मोकलो सारो धन्यवाद। वो संदेश आयो है अपने सूरतगढ़ राजस्थान शू भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का। ये लिखे कि चौपाल पेश करने वाले ने मारी तरफ शुभ राम राम सा, थाने भी राम राम। लारलो पत्रोत्तर सुनियो, लोक भजन और लोक गीत और प्रोग्राम पेश करने को जो को अंदाज है वो घणो पसंद आयो। शुक्रवार ने गीतार और गजरों में लोक भजन और गीत सुनवाया, बेबी माने पसंद आया। माने शामिल करने के लिए धन्यवाद। बाकी दिना चौपाल में कृषि संबंधी जानकारी, मौसम, बाजार भाव और पशुपालन संबंधी जानकारी दो, बेबी पसंद आवे। तो मिशन साहब थे कार्यक्रम सुनो और थे थारी प्रतिक्रिया लिखी, इंग वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। अगलो जगह संदेश आयो वो आयो है कासम कॉलोनी सनावत शू, भेजनिया है यूनुस खत्री, शफी खत्री, इद्रिश खत्री, नूर मीना, नूरू मीना, इरफान मीना और कासिफ मीना। ये लिखा है कि सूरतगढ़ का सारा कार्यक्रम है जगह पर घना अच्छा लगे और सागे लिखे है कि आज चौपाल कार्यक्रम में माने जरूर शामिल करियो। तो खत्री साहब थाने चौपाल कार्यक्रम में शामिल कर लियो सा और थे संदेश भेजियो, प्रतिक्रिया भेजी, इंग वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। तो भाई लोगों अब आप सुन लिया वो गीत सुनो सा।

भाई लोगों सुनियो गीत, और अब आपने ताई जका मेल आईडा है वे भी शामिल करा। वो जको मेल आयो है वो भेजो है गांव बांडी बांडी वाला फाजिलका शू भेजनी है ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। ये लिखा है कि लार लो कार्यक्रम सुनियो, खेती संबंधी जानकारी दी, घनी अच्छी लगी। इनके सागे सागे लार ला हफ्ते गीतारो गजरो कार्यक्रम पेश करियो, रामेश्वर भाई खुश कर दियो श्रोताओं ने। फसला में कीटनाशक के इस्तेमाल के बारे में जानकारी खातिर डॉक्टर छू भी मुलाकात करवाया करो। तो बगड़िया जी डॉक्टर छू भी मुलाकात करवा से थे, कार्यक्रम सुनता रहो और लार लो जगो गीतारो गजरो कार्यक्रम सुनो भी मैं रामेश्वर भाई ये जगो अच्छो प्रोग्राम दियो, थारे लोकगीत पसंद आया, लोक भजन पसंद आया, इन वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। और थारी जकी आ प्रतिक्रिया है बारा रामेश्वर भाई ताई भी पुगण लग रही है, तो थे तरी प्रतिक्रिया लिखता रहो और कार्यक्रम सुनता रहो। वो मेल आयो है लोहारू हरियाणा शू भेजनी है बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार, निहारिका। ये लिखा है कि चौपाल पेश करता ने हमारा घना घना राम राम, राम राम सा थाने भी। दो आवाज में चौपाल प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे, आकाशवाणी परिवार ने धन्यवाद देवा। तो देखो चिंडालिया जी थे कार्यक्रम सुनता रहो, बीच बीच में थाने दो आवाज में भी सुनने ने मिलेगो। और इनके सागे सागे ये लिखा है कि आगे मारो सुझाव वो है कि सुबह गीतों फरमाइशी आता है बिना ग्रुप के बजाय सीधो लाइव कर देवे। तो देखो वो सुझाव मेरे आप जका आला अधिकारी है बाँ ताई पूग तो कर देंगे थारो, अगर सुनवाई हुई तो थारा सागे सागे मैं भी यहीं पर अमल करांगा। वो जो को मेल आयो है वो भेजो है लखवाड़ी हेड शू मास्टर भंवरलाल, कृष्णा, सौरभ, विशाल, राजबाला, ममता, नव्या, लक्षिता, मोहम्मद रफीक, महावीर, लोहरा, मुकनाराम। प्रोग्राम लाइव सुनने लग रहे हैं, गीत भजन नाटक खेतीबाड़ी मौसम की जानकारी दो वे बढ़िया लगे। तो भंवरलाल जी ने देवा मोकलो सारो धन्यवाद, थे कार्यक्रम सुनता रहो और प्रतिक्रिया लिखता रहो। गांव खोखराम वाली शू भेजो है मेल विनोद बरासा, विशाल बरासा, विकास, रोशनी, शगुन बरासा। ये लिखा है कि चौपाल पेश करता मुकेश भाई ने मारी तरफ शू घना घना राम राम, राम राम सा थाने भी। सागे लिखा है कि चौपाल में रोजीना सुना घणो ही दाय आवे, लोक गीत भजन कहानियाँ और राजस्थानी नाटक घना फूटरा लगे। सागे लिखा है कि नाटक प्रथावलो जरूर सुनवाओ सा। तो बरासा साहब थे कार्यक्रम सुनता रहो, थाने नाटक प्रथावलो भी सुनने ने मिलेगो और इंगे सागे सागे कोई नयो नाटक है वो भी सुनने ने मिलेगो। थे कार्यक्रम सुनता रहो, प्रतिक्रिया लिखता रहो, थे प्रतिक्रिया आज मंडी इंगे वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। वो मेल भेजे है राइश नगर शू सोनलाल जांगिड़, मंजू जांगिड़, शिव प्रकाश, सुनील जांगिड़, धनराज जी भांबू, प्रवीण सरावगी, साबराम स्वामी। ये लिखा है कि पत्रोत्तर चौपाल कार्यक्रम पेश करता मुकेश चावरिया ने घनी घनी राम राम सा, थाने भी राम राम। चौपाल कार्यक्रम सगड़ा मिल गए लाइव सुना, मुकेश जी थारी बोली और थारो प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत ही निरालो, ऐसा बड़ो आनंद आवे। चौपाल में जत थे और नवीन जी कार्यक्रम ले गया हो, चौपाल कार्यक्रम में लोक भजन और लोकगीत और प्रोग्राम पेश करने को अंदाज पसंद आवे। शुक्रवार ने गीताओं गजरों में लोक भजन और लोकगीत सुनवाए वे भी पसंद आया, मारो पत्र शामिल करने के लिए धन्यवाद। सागे लिखा है कि चौपाल में कृषि संबंधी जानकारी, मौसम, बाजार भाव और पशुपालन संबंधी जानकारी भी थे सुनाओ जो कि पसंद आवे। जैविक खेती के बारे में बहुत सी जानकारी दो बड़ी फायदेमंद हो ऐसा। जहांगीर साहब थे जकी प्रतिक्रिया लिखी है, इंशू पतो चाले कि थे सगड़ा कार्यक्रम है जगह सुनो और प्रतिक्रिया लिखी है। सागे सागे थे लिखी है कि दो आवाज़ का माँ जी या नवीन जी का सागे अगर कार्यक्रम देवा तो घणो पसंद आवे, तो थे सीधो नवीन जी ने मेल मंडो सा एक ताकि वे हमारे सागे बैठे और थारी जकी है आप।

माई साहब भी पूरी होवे तो दो आवाज़ आगा माँ मैं भी समझा कि कार्यक्रम अच्छा हो जावे, लेकिन कोई विशेष परिस्थितियां होवे बिंगी वजह से दो जना बैठ कौन सका नहीं। बाकी आगे से कोशिश करांगा कि पत्रोत्तर गीतारो गजरो ये जगह मुख्य कार्यक्रम है, हम एक दो जना बैठ के दो आवाज़ आगा माँ देवा तो थाने भी दाई आवेगो, देवा मोकलो सारो धन्यवाद। वो मेल भेजे है चौटाला हरियाणा से, भेजनिया है दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा और सागर माणक सर छूँ, महेंद्र शेखावत और गुड्डू, पुनित पंचारिया, जका जका साथी चौपाल सुने सूरतगढ़ स्टेशन छूँ, बने सगड़ा ने राम राम सा, थारी राम राम पुगण लाग रही है। दारा पंडित जी और सागे सागे ये लिखा है कि प्रोग्राम में जकी जानकारी सुनाओ बा अच्छी लागे और इंगे सागे सागे फसल में रोग स्प्रे की भी जानकारी दो बा भी अच्छी लागे और माल्टा में रोग की जानकारी की भी कोशिश करो। तो आने बता देवा कि थे कार्यक्रम सुनता रहो, माल्टा की भी जकी रोग संबंधी जकी कोई जानकारी है रोग से निवारण की तो बा भी थाने सुनने ने मिलेगी, थे कार्यक्रम सुनता रहो। वो मेल आयो है नाम लिख कौन रखियो आ खटा छूँ भेजो, अच्छा रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर छूँ, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, ये लिखा है कि चौपाल पेश करता ने घना घना राम राम सा, थाने भी राम राम। चौपाल में लाइव सुनन लाग रहा हूँ और लाला हफ्ते प्रोग्राम सुनियो जको मैंने घणो पसंद आयो और गीतारा गजरा में गीत भजन पेश कराया बे भी मैंने घना पसंद आया, लाला प्रोग्राम में दुर्गा राम जी और रामेश्वर चांवरिया जी प्रोग्राम पेश करियो बहुत दाय आयो। तो लाला प्रोग्राम पत्रोत्तर का माँ दुर्गा राम जी के सागे मुकेश चांवरिया हो और रामेश्वर चांवरिया आगे थाने जरूर सुनने ने मिल सी, थे सुनता रहो कार्यक्रम, देवा थारो मोकलो सारो धन्यवाद। गांव गंदेली छू आपने मेल भेजियो है पाला राम जी सिहाग, रमेश, मोनिका, संदीप और भावना और आंगा मम्मी बिमला सिहाग, पोतो राघव सिहाग, ये भी कार्यक्रम की बिदाई लिखी है और ये लिखा है कि गीत भजन सुनाओ जगह घना पसंद आवे, आंगो भी मोकलो सारो धन्यवाद, कार्यक्रम सुनता रहो। रूपाणा बिश्नोयन सिसा हरियाणा सिंह, सूरजमल मास्टर, पाल टेलर, भीम टेलर, चिराग, दुर्गा शक्ति, आ सगलांग ओर छूँ घनी घनी राम राम। ये लिखा है कि सारे प्रोग्राम जो कहे वे लाजवाब अंदाज में पेश करिया जावे और इंगा वास्ते बधाई का पात्र पात्रो थे सगड़ा और सागे लिखा है कि राजस्थानी कविता सुनना चाहते हैं, सुनानी सुनाना चाहते हैं, वो समझ में कौन आए और मास्टर साहब थे थोड़ा सा इन्हें सही लिखो इंगो ये मैं थे लिख रहा है राजस्थानी कविता सुनानी चाहते हैं तो भी थे सुनाना चाहो या सुनना चाहो बात चीज़ समझ में कौन आई तो थे इन्हें थोड़ा सा सही मांड के भेजो ताकि माने भी की पतो चले। तो आपकी प्रतिक्रिया लिखी इंगे वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। वो जो मेल आयो है वो भेजो है मध्य प्रदेश गए मंदसौर जिले छूँ, नाटाराम गाँव छूँ, भेजनिया है दशरथ सेन, ये लिखा है कि चौपाल पेश करना राम राम, थाने भी राम राम और चौपाल कार्यक्रम में गीतारो गजरो पेश करो वो भी माने पसंद आयो और इंगे अलावा जगह कार्यक्रम सुना बे भी माने पसंद आयो, राजस्थानी भाषा में कार्यक्रम पेश होवे जगह माने घना दाय आवे। इंगे सागे सागे ये लिखा है कि मारे हेठ बारिश होने लाग रही है, मूँगफली सोयाबीन मक्का की फसल लगाई है जिन जगह का उत्पादन भी बहुत बढ़िया होवे और इंगे सागे ही आकाशवाणी सूरतगढ़ ने नाटाराम गए हेयर सलून में ही वक्त कार्यक्रम सुनन लाग रहा, आज थे मैंने राजस्थानी भाषा में सीमा मिश्रा को जो को गीत है वो सुना दियो तो आने बता दें कि सीमा मिश्रा को गीत है जो को आने सुनवायो है और आने जरूर पसंद आयो उसी, थे मैंने इतनी प्रतिक्रिया लिखता रहो तो और मैं थारी मैं प्रतिक्रिया जो कि बांचांगा और थे संदेश भेजो इंग वास्ते देवा मोकलो सारो धन्यवाद। तो आज कई भाइयांगा अगर किंग संदेश या मेल किंग रह गया तो क्षमा प्रार्थी हैं और बाकी किंग अगर शामिल नहीं हुए तो बे समझ जावे कि एक शू ज़्यादा अगर मेल भेजोगा तो मैं ही मैं शामिल कौन कर पाऊँगा, तो आ चीज़ पहला शू ही आप कर ली ही और अब मैं चालू सा राम राम सा राम राम।

ग्रामीण श्रोता भी चौपाल कार्यक्रम सुन रहे थे मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ की कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

श्रोता वही आप सुने चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत, आवाज़ें अमिताभ भट्टाचार्य और साथियों की।

कृष्ण फिल्म में अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल को। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतकल के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 8 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राजेंद्र शर्मा। साथियों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी कालजयी कृति की दुनिया में, जिसे समय बीतने के साथ और अधिक सम्मान मिला। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म गाइड भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे उत्कृष्ट फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म का निर्देशन किया था विजय आनंद ने, जबकि मुख्य भूमिकाओं में थे देवानंद और वहीदा रहमान। फिल्म का संगीत दिया था महान संगीतकार सचिन देव बर्मन ने, और इसके अधिकांश गीत लिखे थे हिंदी सिनेमा के अमर गीतकार शैलेंद्र ने। साथियों, गाइड केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मखोज, संघर्ष, प्रेम, त्याग और जीवन दर्शन की अनोखी यात्रा है। तो आइए इस संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं। साथियों, कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब मन सारी बेड़ियों को तोड़कर खुलकर जीना चाहता है। ये गीत उसी आत्मविश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। हौसलों की उड़ान जब आसमान को छूने लगे, तब जिंदगी कुछ यूं कहने लगती है।

लता मंगेशकर की मधुर आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। साथियों, प्रेम में इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी होती हैं, ये गीत उसकी खूबसूरत अभिव्यक्ति है जो गीत अब हम आपको सुनवाएंगे। कुछ लोग पास होकर भी दूर लगते हैं और कुछ दूर होकर भी हर धड़कन में बस जाते हैं। शैलेंद्र के भावपूर्ण शब्दों और मोहम्मद रफी की दर्द भरी आवाज में आइए सुने ये गीत।

गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। साथियों, ये गीत प्रेम और जीवन के उत्साह से भरा हुआ है। सफर हो और साथ में अपना हम सफर हो तो हर रास्ता सुहाना बन जाता है। जब दिल में प्रेम हो तो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ते लगने लगते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल आवाजों में सुनिए ये गीत।

साथियों, एक ही फिल्म से कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से। आज की फिल्म है 1965 में प्रदर्शित हुई फिल्म गाइड।

साथियों, जीवन के उतार चढ़ाव और परिस्थितियों के बदलते रंगों को ये गीत बहुत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करता है जो अभी हम आपको सुनवाएंगे। वक्त कभी कभी इंसान को ऐसी राहों पर ले जाता है जहां पीछे मुड़कर देखने पर बस एक ही सवाल रह जाता है, क्या से क्या हो गया। गीतकार शैलेंद्र की कलम और रफी साहब की आवाज का यह कमाल, आइए सुने।

साथियों, फिल्म की एक रोचक जानकारी हम आपसे साझा करते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है कि गाइड को उस दौर में भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार के लिए भी भेजा गया था। फिल्म की कहानी और प्रस्तुति अपने समय से काफ़ी आगे मानी जाती थी। आज भी इसे भारतीय सिनेमा की श्रेष्ठ फिल्मों में शामिल किया जाता है। साथियों, प्रेम तब और सुंदर हो जाता है जब दो लोगों के सपने एक हो जाएं। रिश्ते सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों को अपना बनाने का नाम भी है। शैलेंद्र के अमर शब्दों में ढला ये गीत आज भी प्रेम गीतों की सूची में सबसे ऊपर गिना जाता है। आइए सुनें।

साथियों, ये केवल एक गीत नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। फिल्म के सबसे महत्वपूर्ण गीतों में से एक। आखिरकार हर मुसाफिर को अपनी मंजिल से पहले खुद को पहचानना पड़ता है।

तो श्रोतावास हमने फिल्म गाइड के कुछ सदाबहार गीतों का आनंद लिया। इसी के साथ मुझे अपने दोस्त राजेंद्र शर्मा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज की फिल्म थी गाइड। मीडियम वेव 326.7 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतकर के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन, जिसे हम अपने दिल्ली के

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल की टीमों की सूची तय। पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मोरक्को होंगे आमने सामने। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 क्रिकेट मुकाबला कल ब्रिस्टल में खेला जाएगा। तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया और सातवां अल्टीमेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट कल से गोवा में खेला जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं विंबलडन से, जहां पुरुष क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मार्टिन्स को 6-3 7-5 से और मार्ता कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को 6-3 6-2 से हराया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिज का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लोविया कोबली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। वहीं प्रतियोगिता में यानिक सिनर, नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ ने पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक रिपोर्ट।
1: नोवाक जोकोविच ने विंबलडन में 5 घंटे और 15 मिनट तक चले अब तक के सबसे लंबे क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। वह विंबलडन में लगातार 8वीं और अपने करियर में 55वीं बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। जोकोविच ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फेलिक्स ऑगर अलियासिमी को 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 से हराया। क्वार्टर फाइनल में 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने ऑगर अलियासिमी के बैकहैंड को लगातार बनाया और अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़े। हालांकि कनाडा के खिलाड़ी अलियासिमी ने उन्हें कड़ी चुनौती दी और मैच को 5वें सेट के टाई ब्रेकर तक पहुंचाया। आखिर में जोकोविच अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए मैच अपने नाम करने में सफल रहे। इस जीत के साथ जोकोविच ने विंबलडन में शीर्ष 10 खिलाड़ियों के खिलाफ लगातार 3 हार का सिलसिला भी खत्म किया। अब सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। मौजूदा चैंपियन यानिक सिनर ने जॉन लेनार्ड स्ट्रफ के

0: जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना दी है। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पहला सेट हारने और दूसरे सेट की शुरुआत में ही एक ब्रेक से पिछड़ने के बाद स्ट्रफ ने अपनी आक्रामकता बढ़ाई। स्ट्रफ ने पूरे सेट के दौरान दबाव बनाए रखा और 5-4, 30-40 पर सेट पॉइंट हासिल किया। इसके बाद टॉप सीड खिलाड़ी ने अपनी शानदार सर्विस के साथ साथ बेस लाइन पर लगातार अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने दूसरे सेट के टाई ब्रेक में जबरदस्त खेल दिखाया और फिर 2 घंटे 35 मिनट तक चले इस मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए जीत दर्ज की। उधर महिला सिंगल्स में कोको गॉफ ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अमेरिकी स्टार खिलाड़ी ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करते हुए जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-3 से मात देकर अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में पेगुला लगातार अच्छा खेल रही थी और पहले सेट में ग्रास कोर्ट पर कोको गॉफ की कमजोरियां सामने आ गई, लेकिन 7 सीट खिलाड़ी ने अपने प्रतिद्वंदी की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। 1 घंटे 48 मिनट तक चले इस मैच में जीत के साथ 2 बार की मेजर चैंपियन गॉफ अपने करियर में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सेमीफाइनल या उससे आगे पहुंचने वाली 7वीं सक्रिय खिलाड़ी बन गई। उनसे पहले वीनस विलियम्स, सेरेना विलियम्स, कैरोलिना प्लिस्कोवा, आर्याना साबालेंका और ईगा स्वाइतेक भी ऐसा कर चुकी हैं। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
1: और अब रुक कर लेते हैं सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल के लिए टीमों की सूची तय हो चुकी है। फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड, स्पेन, बेल्जियम, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। क्वार्टर फाइनल का पहला मुकाबला 10 जुलाई को देर रात 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को के बीच होगा। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना बेल्जियम से होगा। तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना आखिरी क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं राउंड ऑफ 16 के रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से और स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनाल्टी शूटआउट में हराया। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
2: अटलांटा में खेले गए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना ने 0-2 से पिछड़ने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए मिस्र को हराया। मिस्र के लिए यासर इब्राहिम ने 15वें मिनट और मुस्तफा जिको ने 62वें मिनट में गोल किए, जिससे मौजूदा चैंपियन के टूर्नामेंट से जल्द बाहर होने का खतरा पैदा हो गया। इसके बाद लियोनेल मेसी ने अपना जादू दिखाया और 79वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो के गोल में मदद की।
3: Argentina right back in it, Cristian Romero.
2: और इसके बाद खुद 83वें मिनट में एक शानदार गोल किया। लुटारो और अर्जेंटीना के कप्तान के बेहतरीन तालमेल ने अर्जेंटीना को मुकाबले में 2-2 से बराबरी पर ला दिया।
3: Lautaro sent it across. It's swept in. And of course it's Lionel Messi.
2: और इसके बाद एंजो फर्नांडीज ने स्टॉपेज टाइम के 3rd मिनट में एक शानदार गोल करके अर्जेंटीना की जीत को सुनिश्चित करते हुए स्कोर 3-2 कर दिया।
3: एंजो फर्नांडीज, इट्स बीन एपिक इन अटलांटा, अ गेम दैट हैड एवरीथिंग, हार्टब्रेकिंग फॉर इजिप्ट, इट्स फिनिश्ड, अर्जेंटीना 3, इजिप्ट 2।
2: वहीं एक अन्य मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। 1954 के बाद पहली बार स्विट्जरलैंड ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। रूबेन वर्गास ने विजयी किक मारकर स्विट्जरलैंड को 7 दशकों में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है। वैंकूवर में खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमें निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय में भी कोई गोल नहीं कर सकी। मैच के दौरान दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाया। इसके बाद मुकाबले का फैसला हुआ पेनल्टी शूटआउट से। स्विट्जरलैंड के लिए रूबेन वर्गास ने सबसे अहम पेनल्टी को गोल में तब्दील कर अपनी टीम की जीत पक्की की। मुकाबले के पहले हाफ में कोलंबिया ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा, लेकिन टीम गोल का कोई मौका नहीं बना सकी। कोलंबिया की सबसे अच्छी कोशिश गुस्तावो पुएर्ता ने की, जिनके शानदार शॉट को स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से रोक दिया। दूसरे हाफ में लुइस सुआरेज को भी मौका मिला, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के फैबियन रीडर की वॉली को कोलंबिया के गोलकीपर कैमिलो वर्गास ने आसानी से बचा लिया। अतिरिक्त समय में मुकाबले का रोमांच अपने चरम पर रहा। कोलंबिया के जॉन लुकुमी का हेडर क्रॉस बार से टकरा गया, जबकि स्विट्जरलैंड के जैकियम दोनी का शॉट भी गोलकीपर ने रोक लिया। आखिरकार पेनल्टी शूटआउट में ग्रेगर कोबेल ने

0: एक अहम बचाव किया और रूबेन वर्गास ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर स्विट्जरलैंड को ऐतिहासिक जीत दिला दी।
1: It's all over! Switzerland are going to the quarter final of the World Cup and they've got a date with Lionel Messi.
0: स्कैन के लिए मुनीश शर्मा।

0: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। और अब बात करते हैं क्रिकेट पर। नॉटिंगहम में तीसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन के बड़े अंतर से हराया। इंग्लैंड के 202 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 12वें ओवर में सिर्फ 76 रन पर ही सिमट गई। जोफ्रा आर्चर को धारदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: टॉस जीतकर भारत ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। फिल सॉल्ट ने इंग्लैंड के लिए 44 गेंद में 70 रन की दमदार पारी खेली। वहीं जॉश बटलर ने भी 36 रन का अहम योगदान दिया। सैम करन ने अंतिम ओवरों में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 41 रन की पारी खेली। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 201 रन बनाए। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। अभिषेक शर्मा महज 10 रन बनाकर जॉश टंग का शिकार बने। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी भी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। सूर्यवंशी 5 गेंद में 13 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने। ईशान किशन भी 13 रन ही बना सके। कप्तान श्रेयस अय्यर के पेविलियन लौटने के बाद भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अक्षर पटेल 10 और तिलक वर्मा 3 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने पूरी भारतीय पारी को 11 ओवर 4 गेंद में ही समेट कर श्रृंखला में बढ़त बना ली। जोश टंग ने 4, जोफ्रा आर्चर ने 3 और आदिल रशीद ने 2 विकेट झटके। बल्लेबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के चलते भारत को T20 इंटरनेशनल में रन के लिहाज से अपनी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि पावर प्ले में 4 विकेट गंवाना हमें मुकाबले में महंगा पड़ा।
2: I feel that we need to accept this loss and completely go back to the drawing board and see what we did wrong. Looking at the wicket, I don't think that it was a 200 wicket. The way we batted, we lost 4 wickets in the power play. I think we lost over there. Great opportunity to come back strong. Not dwell too much about what's happened in the past. Every individual have to think by himself and see how they can win the matches and take that sort of responsibility.
1: इससे पहले भारतीय टीम को वर्ष 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन से हार झेलनी पड़ी थी। T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम अपने दूसरे सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट हुई। 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम सबसे कम 74 रन ही बना सकी थी। अब भारत ब्रिस्टल में कल खेले जाने वाले मुकाबले को जीतकर श्रृंखला में जीत का खाता खोलना चाहेगा। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: उधर ICC ने T20 बल्लेबाजों और गेंदबाजों की रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन पहले और अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। T20 गेंदबाजों में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले और भारत के वरुण चक्रवर्ती 5वें स्थान पर हैं। और अब बात करते हैं टेबल टेनिस पर। अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन UTT के 7वें संस्करण का आयोजन कल से 26 जुलाई तक गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इस लीग में 7 फ्रेंचाइजी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। घरेलू टीम डेम्पो गोवा चैलेंजर्स का लक्ष्य रिकॉर्ड तीसरी बार UTT खिताब जीतना होगा। ये लीग सिंगल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेली जाएगी, जिसमें प्रत्येक टीम लीग चरण के दौरान दूसरी टीम से एक बार भिड़ेगी। टूर्नामेंट से पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मानव ठक्कर ने कहा कि ये प्रतियोगिता आगामी एशियन गेम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
3: It's a very good place. I want to play my best in this league and I want to set the momentum for the Asian Games which is going to happen this September. So yes, it will be a very good challenge for me to play here and be ready for the Asian Games which is going to be in this year and hopefully I will be ready for the Asian Games.
0: टेबल टेनिस खिलाड़ी दिया चिताली ने कहा कि इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
4: Every season I think I learn a lot and honestly I think UTT has, it's a lot of pressure playing in such kind of situation. When you're there at 6-6 and you know you need those 2 points in the end, I don't think we ever feel that kind of pressure. So I think playing here has really helped me develop myself and yeah, it's a great preparation I think before the Asian Games.

0: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जारी एशियन अंडर 19 और अंडर 23 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रतियोगिता के अंडर 19 50 किलोग्राम कैटेगरी में अंबेडकर मितई ने पुरुषों के वर्ग में दमदार जीत हासिल की। और जन्मदिन की श्रृंखला में आज बात भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की। दादा के नाम से प्रसिद्ध सौरव गांगुली का आज 54वां जन्मदिन है। प्रिंस ऑफ कोलकाता ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन बनाए।
1: लाउड अप्लॉज फॉर द फॉर्मर इंडिया कैप्टन वॉकिंग आउट टू द सेंटर द लास्ट टाइम इज कमिंग आउट टू बैट इन टेस्ट मैच क्रिकेट और अ क्रिकेटर ही हैज बीन सौरव गांगुली फुली डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज।
0: सौरव गांगुली ने 311 एक दिवसीय मैच में 11,363 रन बनाए। उनकी कप्तानी में भारत ने 49 टेस्ट में 21 और 146 एक दिवसीय मैचों में 76 जीत दर्ज की। सौरव गांगुली मानते हैं कि क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट मैदान पर होना सबसे सुखद क्षण है।
2: क्रिकेट एक दिन छूट जाना है और 15 साल भारत के लिए खेले वो वापस नहीं आएगा। वो सेटिस्फेक्शन अलग ही है जब तुम एक तेज गेंदबाज को कवर ड्राइव मारते हो ना जब बॉल बीच में लगता है और कवर और मिड ऑफ के बीच से जाता है और सारे ताली मारते हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितने भी आप काम कर लो, जितने भी बड़े बन जाओ, जितने भी पैसे कमा लो, वो वापस नहीं आएगा।
0: से विदा लेने का कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य संचिता ओब्रोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
2: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
3: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं।

0: कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
2: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
3: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोत्सुक ने जैस्मीन पाउलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और

0: तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक मानचित्र तैयार करने की नई तकनीक विकसित की है। ये तकनीक जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
2: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
1: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia annual summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister in a social media post said he is looking forward

मीडियम वेव 326.9 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में आइए सुने जगजीत सिंह की गाई गजलें।

0: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी सूरतकढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। चर्चा का विषय ये कार्यक्रम थोड़ी देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार,
4: धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मानसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं ये स्लैकन कर जाती हैं, ये वीक पड़ जाती हैं। जब ये वीक हो जाती हैं तो क्या होता है, जो पानी था वहाँ जिस जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज़्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहाँ समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज़्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफ़ी सारे बदलाव लेके आता है कि जहाँ कहीं बारिश होती है पहले वहाँ सूखा पड़ने लगता है और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहाँ की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है इतने

0: तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही हैं, तो ये ठीक है। मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एलनीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मानसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ धन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र है वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा, जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहाँ पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहाँ पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में NDMA की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे अभी शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरीज जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो हैं जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती हैं, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी

0: तीनों की घटनाओं से सीधा संबंध है, जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
1: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, और एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही हैं, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी, तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है, कंटीजेंसी प्लान की आप महावीर जी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है, प्रभावित होंगे, वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2000 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं, जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एलिनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज़्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती हैं। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफ़ी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहाँ हम लोग ये डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध हैं कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफ़ी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वेराइटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है
0: जी,
1: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहाँ पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पर लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पर बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
0: जी,
1: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई एलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए,
0: बिल्कुल
1: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न UP जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती, आप देख लीजिए वहाँ पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहाँ पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
0: जी,
1: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है सामान्य से ज्यादा है, मगर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई एंड में मिल गई और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
0: जब जरूरत थी तो नहीं मिली।
1: तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी

0: होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। आज इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं, ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वेराइटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वेराइटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है। और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए बिजनेस। किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स। तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है, डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं, उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटरशेड सिस्टम चलाता है, और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है, हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटरशेड के लिए। तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है, और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरीके जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है।

0: तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि पिछले कुछ बरसों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें यह भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है, वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है, मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है। क्योंकि देखिए, दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी, वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूँगा नहीं, अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है, ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में, जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है, वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा, शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है। और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता हूँ वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था। और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई, मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो। तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए, घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम सोइंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है। तो कई बार क्या होता है कि

0: चल आया, मगर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में. आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मवेशी, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा. तो सोइंग रेन कब होंगी, तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं. जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है. तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है. और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है. और जैसा आपने कहा, एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है. एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए. कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा. और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले. और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी.
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है, तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो?
2: नहीं, देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरीगेशन है. मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरीगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बोरवेल्स जो है. तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन हैं वो दुरुस्त हों, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है. दूसरे, देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेंट भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए. उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है. लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है. तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है? पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है. और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून का क्या होता है, कि मानसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है, कि उसका जो हमारा मानसून का पीरियड है जून टू सितंबर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है. अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है. और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई, उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी. और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है, या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है, और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है. और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं. तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं.
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा. विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है. जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें. आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार.
0: धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए. नमस्कार.
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह. कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव. यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या

0: व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

0: हम आकाशवाणी सूरत का के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन भवन। प्रस्तुता संजय पैथ। कार्यक्रम के निर्देशक और संयोजक हैं नवीन सिसोदिया।
1: हेलो मन भवन के सभी श्रोताओं को आज संजय बैद की ओर से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, किसी ने क्या खूब लिखा है, हवा का साथ मिलता हवा में घर बना लेता, परिंदा शाख से उड़ता तो खुद को आजमा लेता। बहुत ही खूबसूरत सी गजल है जिंदगी अपनी, जरा सा वक्त मिल जाता तो मैं भी गुनगुना लेता। सितारे अपने आंगन में चमक कर बुझ गए कल ही, हवा देती चुनौती तो मैं सूरज भी जला लेता। इस गर्मी के मौसम में जहाँ कुछ क्षेत्रों में मानसून की फुहारें भी बरसी हैं, आज के इस नए ताजा अंक के साथ इस प्रोग्राम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि आज के इस प्रोग्राम का भी आपको हमेशा की तरह बेसब्री के साथ इंतजार है। आप अपनी टेलीफोन कॉल्स के साथ दिन के 11 बजने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि रात को 10 से 11 के बीच आप अपनी कॉल को सुन सकें और अपनी पसंद के गीतों का आनंद ले सके। हमें विश्वास है कि एक श्रोता की जो फरमाइश होगी, दूसरे साथी भी उस गीत को उतना ही पसंद करेंगे जितना वो खुद की पसंद इस कार्यक्रम में शामिल होने पर किया करते हैं। तो देर किस बात की, आगाज करते हैं आज के इस हेलो मन भवन का और लेते हैं आज की ये पहली कॉल। हेलो मन भवन
2: सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
2: सर, मैं विनोद मोड़ा बोरखेड़ा उज्जैन से बोल रहा हूँ।
1: विनोद जी, कैसे हैं आप बताएं?
2: जी बढ़िया हूँ सर, बढ़िया। सर मेरा पहली बार फोन लगाया।
1: आज तक आपने कभी आकाशवाणी सूरतगढ़ पे फोन नहीं किया?
2: नहीं सर, ट्रायल करा बहुत सी बार पर लाइन नहीं मिल रही थी।
1: तो पहली बार बात हो रही है आपकी?
2: जी सर जी।
1: आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं, आपके खूब खत हमें मिलते हैं, मेल आपकी आती हैं, व्हाट्सएप पे आपके संदेश हमें मिलते हैं।
2: सर आप भी हमको कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, इसमें शुक्रिया।
1: आप मुझे आने का इंतजार कर रहे थे क्या? संजय जी आए तो ही फोन करूंगा।
2: नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
1: कहिए विनोद जी, कैसे हैं आप?
2: बस ठीक हूँ सर, बढ़िया।
1: तो आपने शिद्दत से प्रयास नहीं किए फोन करने के?
2: नहीं नहीं सर, हमेशा करता हूँ, समय पर लाइन नहीं मिल रही, आज पहली बार मिला है।
1: देखिए, आज की पहली कॉल और वो भी पहले ऐसे श्रोता की जिसने पहली बार इस कार्यक्रम में फोन किया है।
2: जी सर,
1: इसे आपकी किस्मत माने या मेरी किस्मत मानूं मैं?
2: सर आपसे बात हो रही, मेरी किस्मत मानता हूँ।
1: नहीं नहीं, देखिए हमारी किस्मत है कि आज विनोद के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे हम आज के इस प्रोग्राम में, है ना? हाँ बताइए विनोद जी, कौन कौन है आपके साथ?
2: सर मैं अभी तो खुला निकला हूँ, मैं बैठा हूँ बाहर।
1: अच्छा, परिवार में आपके साथ कौन कौन है? नाम तो काफी आते हैं आपके खतों में।
2: हाँ सर आते हैं, मेरे बच्चे हैं दो।
1: बताइए नाम बता दें, नहीं बच्चे नाराज हो जाएंगे आपके।
2: सर मेरा का नाम नेहा जैन लिखता हूँ सर मैं
1: जी,
2: और मयंक मुणत, चेतन नाटा है सर मेरा भांजा है
1: जी।
2: सर मेरा एक साथी है दिलीप सिंह पवार
1: जी,
2: वो भी शिक्षक साथी है। वैसे मैं शिक्षक रह चुका हूँ, रिटायर हो गया हूँ सर।
1: आप बच्चों को पढ़ाते रहे आसपास के जो भी बच्चे हैं आपके पास, कोई झुग्गी है झोपड़ी है जी?
2: मैं बच्चे को हमेशा मेरे मोहल्ले को गाइड करता ही रहता हूँ।
1: जी जी
2: बराबर।
1: तो आज क्या सुनवाए आपको?
2: सर अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो फिल्म का नाम है बरसात
1: जी,
2: और गाने के बोले बरसात के दिन आ रहे हैं।
1: आपके तो बरसात होगी, हमारे सूरतगढ़ में बरसात अभी तक नहीं हुई है।
2: क्या बात कर रहे हो सर, हमारा रात को तो बहुत पानी गिरा,
1: यहाँ कई जिले अभी प्यासे बैठे हैं सर।
2: चलो हो जाएगी सर जल्दी बाजू।
1: ठीक, आपको सुनाते हैं बरसात फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मन भवन।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: रानी जहाँ बीकानेर से।
1: हाँ जी।
0: कैसे मिजाज है आपके?
1: बिल्कुल बढ़िया।
0: परिवार में सब सुख शांति है?
1: बिल्कुल।
0: मौसम अच्छा है वहाँ?
1: हाँ जी।
0: जबकि बीकानेर तो रेतीले दौरों की धरती है।
1: हाँ जी रात को बारिश हुई है सर।
0: अच्छा अच्छा बारिश होगी बीकानेर में, हमारा सूरतगढ़ अछूता है अभी।
1: हाँ जी हो जाएगी, वहाँ भी हो जाएगी।
0: अच्छा आज कैसा मौसम आपके वहाँ?
1: अभी बादल है।
0: बादल हैं?
1: हाँ जी।
0: बरसेंगे?
1: कुछ कह नहीं सकते।
0: अच्छा अच्छा दुआ करते हैं कि वहाँ भी बारिश हो और उसके बाद वो बीकानेर से लून करंसर होती हुई सूरतगढ़ आए और पूरे हमारे जिले को तर बतर कर दे।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: कौन है रानी जी आज आपके साथ?
1: मेरे हस्बैंड होते हैं बिट्टू जान।
0: बिट्टू जी से कभी बात नहीं करवाई आपने?
1: हाँ जी करवाऊंगी, सोचती तो हूँ, पर शॉप चले जाते हैं।
0: शॉप चले जाते तो वहाँ भी तो मोबाइल काम करता होगा ना?
1: वो बीच में कस्टमर आ जाते हैं ना।
0: चलो कस्टमर तो आते रहने चाहिए, देखिए बिजनेस है वो भी करना है और हमारे प्रोग्राम भी सुनने हैं, लेकिन रात को प्रोग्राम आप उनको सुनवाएगी जरूर, ये वादा करें हमसे।
1: सर वो तो सुनते हैं।
0: नहीं आपकी तो सुनते हैं, प्रोग्राम भी सुनते हैं क्या?
1: हाँ जी प्रोग्राम सुनते हैं ना।
0: अच्छा अच्छा खैर क्या सुनवाएं आज उनको?
1: देश परदेश मूवी से
0: कौन सा
1: किशोर
0: गीत
1: दा की आवाज में
0: बोल बता दें।
1: नजराना भेजा किसी ने प्यार का।
0: अच्छा अच्छा ये गीत हम आपको सुनाते हैं।
1: हाँ जी।
0: सुनिए रानी जी अपनी पसंद का ये नगमा।
1: थैंक यू सर।
0: धन्यवाद।

0: हेलो मन भावन,
1: हेलो मन भावन
0: कौन सा बात कर रहे हैं?
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: कैसे मिजाज हैं फरीदी साहब आपके?
1: जी सर बहुत अच्छे हैं। और सर बहुत समय के बाद मेरी इस प्रोग्राम में कॉल लगी।
0: और कौन है आज आपके साथ?
1: बस सभी फैमिली वाले सुनते हैं और कॉल भी सर मैं काफी समय के बाद लगा रहा हूँ।
0: तो बिजनौर के बारे में बताएं, कहाँ पड़ता है ये, कौन सा जिला है?
1: हमारा जो गांव है वो है शेरकोट, शेरकोट में, और जिला हमारा बिजनौर लगता है।
0: अच्छा, तो क्या खासियत है बिजनौर की?
1: हाँ सर बिजनौर की खासियत तो कुछ ऐसी खास है नहीं।
0: नहीं, एक तो देख फरीदी साहब वहां रहते हैं, ये तो खासियत है, इसके अलावा बताएं कुछ तो होगा वहाँ आपके अलावा भी,
1: हाँ बहुत सर ऐसा कुछ खास तो मुझे मालूम नहीं है
0: कोई हिस्टोरिकल पैलेस वहां
1: क्योंकि
0: हो?
1: हाँ खास करके मैं अपने शहर के बारे में तो बता सकता हूँ जहाँ मैं
0: हाँ
1: रहता हूँ,
0: जी
1: क्योंकि
0: बताएं।
1: बिजनौर हमारे यहाँ से काफी दूर है।
0: अच्छा,
1: हाँ तो जिस गांव में मैं रहता हूँ शेरकोट में, उसमें खासियत यह है कि यहाँ एक नदी बहती है,
0: कौन सा नाम है?
1: इसको कहते हैं खोबेराज।
0: अच्छा,
1: आसपास घूमने की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो लोग वो देखने आते हैं।
0: तो मौसम सुहावना रहता होगा वहां पे, तो गर्मी तो नहीं पड़ती होगी ज्यादा?
1: ना ना ना सर वहाँ तो बहुत अच्छा मौसम रहता है और लोग सुबह शाम दोनों टाइम वहाँ घूमने जाते हैं।
0: तो बिजनौर
1: और
0: यदि
1: अब
0: हम
1: तो सर
0: घूमने आए तो
1: मौसम
0: फरीदी साहब आप मिलेंगे हमें वहां?
1: हाँ बिल्कुल सर
0: अच्छा
1: मिलेंगे और
0: अच्छा
1: आपको घुमाएंगे भी।
0: तो और कौन होंगे आपके साथ वहां,
1: हमारे साथ साथ तो बहुत सारे लोग होंगे
0: नाम
1: जो जो
0: बता सकते
1: प्रोग्राम
0: हैं?
1: सुनते हैं, पूरी
0: बताइए,
1: फैमिली।
0: नाम बताएं
1: हाँ मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सास
0: जी।
1: दरानी, हिना कौसर।
0: जी क्या
1: जी
0: सुनवाएंगे
1: सर।
0: सभी को?
1: सर फिल्म का नाम है बंदिश।
0: बंदिश
1: हाँ जी सर, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पे फिल्माया गया है, 1980 की मूवी है।
0: जी।
1: और इसका गीत है सर रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, हाँ देखो तेरी मांग में सिंदूर सजा के।
0: तो मौसम ऐसा है वहां, है ना?
1: हाँ सर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, कल से बारिश हो रही है
0: अच्छा
1: और बहुत
0: अच्छा
1: सुहावना मौसम है।
0: जी, इस सुहावने मौसम में सुनिए अपने पसंद का ये नगमा।
1: ओके सर, थैंक
0: धन्यवाद।
1: यू।

0: हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी सूरत कर कार्यक्रम मन भावन
0: जी।
1: सर, मैं आपका नियमित रेडियो श्रोता अस्पतालों केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौर बोल रहा हूँ। सर,
0: कैसे हैं गौर साहब आप?
1: बस सर, दुआएं हैं और आप लोगों के द्वारा जो हम श्रोताओं के मनोरंजन के लिए जो एक से एक बढ़कर कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। सर,
0: प्रोग्राम तो आपके हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं सिर्फ।
1: नहीं, तो कहीं ना कहीं सहयोग तो सर आप लोगों का भी होता है ना उसमें।
0: हम तो प्रयास कर सकते हैं,
1: अहम भूमिका तो आप ही निभाते हैं सर।
0: देखिए भूमिका हमारी इतनी सी है कि जो आपकी पसंद है वैसे कार्यक्रम हम तैयार करने की कोशिश करते हैं बस।
1: बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं सर। मैं तो अन्य आकाशवाणी केंद्रों को भी सुनता हूँ
0: जी,
1: लेकिन जो अपनत्व, जो प्यार, इतने लाड़ प्यार दुलार आकाशवाणी सूरतगढ़ से हम श्रोताओं को मिलता है उसके लिए हम आप सभी उद्घोषकों को सलाम करते हैं सर, प्रणाम करते हैं।
0: देखिए प्यार तो बांटने से बढ़ता है, जो जैसा बांटता है उसे वैसा ही कुदरत प्रदान करती है।
1: इसमें कोई दो राय नहीं है सर, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ सर। क्या होता है सर, जो तराजू होता है ना
0: जी,
1: वो बराबर होता है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: जब उसमें अपन बजट तो एक तरफ झुक जाता है सर।
0: हाँ देखिए संतुलन तो जरूरी है हर चीज में।
1: बिल्कुल, तो बस वही चीज है सर।
0: चंदे जी, दो शब्द जो आपने प्यार के कहे ना, तो मुझे भी दो पंक्तियां उसमें याद आ गई।
1: बिल्कुल सर, स्वागत है आपको।
0: किसी ने लिखा है कि प्यार ही प्यार करोगे तो निखर जाओगे।
1: क्या बात है सर,
0: प्यार ही प्यार करोगे तो निखर जाओगे, लोग चाहेंगे तुम्हें यार जिधर जाओगे, और भूल जाओगे ये नफरत ये अदावत तुम भी मेरी बस्ती में जो एक बार ठहर जाओगे।
1: बस यही तो पहचान है आप लोगों की सर
0: जी। आपका स्वागत है हमारी इस बस्ती में, छोटी सी बस्ती में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो बताएं आज आपके साथ और कौन कौन है?
1: सर, हमारे प्रिय मित्र हैं दारा सिंह चौटाला जी हैं
0: जी,
1: और तमाम श्रोता हैं हमारे
0: जी,
1: और श्रीवास्तव जी हैं आपकी के केंद्र के बहुत नियमित श्रोता,
0: आलोक श्रीवास्तव,
1: आलोक श्रीवास्तव जी,
0: जी।
1: हाँ और चंडीगढ़ से मेरे प्रिय भाई हैं सतीश अनिजा जी।
0: सतीश जी हमारे रेगुलर श्रोता हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: तो अपने दोस्तों के लिए क्या लेकर आए आज आप?
1: सर, फिल्म महबूबा का एक गीत सुनना है।
0: राजेश खन्ना की?
1: बिल्कुल बिल्कुल सर।
0: कौन सा गीत?
1: मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यार।
0: सावन तो अभी दूर है, अभी तो आषाढ़ चल रहा है लेकिन आएगा जरूर, ये तय।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी विश्वास और आशा के साथ आश्वासन, सावन बहुत अच्छी खुशियां लेकर हम लोगों के बीच आएगा।
0: आमीन आमीन। ठीक है चंदे जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज हम आपको सुनवाते हैं आपकी महबूबा का गीत।
1: नहीं सर, मेरी महबूबा नहीं
0: अच्छा,
1: फिल्म महबूबा का,
0: फिल्म महबूबा का। ठीक है, ओके सर, ओके
1: ठीक सर, थैंक यू,
0: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो मन भावन।
1: हेलो मन भावन
0: जी
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं राजेश सर से प्रेम कुमार लेगा बोल रहा हूँ सर जी।
0: प्रेम जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया सर, आपके हाल चाल सुनाइए, कैसे हो सर?
0: मैं ठीक हूँ प्रेम, कई दिनों बाद बरसा है शायद।
1: अबकी बार 1.5 महीनों से बसा हूँ मैं।
0: 1.5 महीने से कहाँ थे इतने दिन?
1: हाँ जी
0: कहीं बाहर
1: बिल्कुल
0: थे
1: सर।
0: क्या?
1: हाँ जी
0: कहीं बाहर गए हुए थे?
1: नहीं है, पर ये क्योंकि अब बना रखा ना आप 1 महीने से ऊपर कॉल करें, इसलिए मैं 1.5 महीने से कॉल कर रहा हूँ सर।
0: देखिए कुछ तो ऐसे श्रोता हैं जो इस नियम का पालन करते हैं, वरना कई श्रोता में हर हफ्ते फोन करते हैं और उनका फोन लग भी जाता है, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि वो कॉल हमें काटनी पड़ती है ताकि दूसरे श्रोताओं को
1: नहीं
0: भी
1: नहीं
0: मौका
1: नहीं
0: मिल
1: सर,
0: सके।
1: हम नहीं करते हैं सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका तो नाम ही प्रेम है, देखिए आप तो फिर प्रेम की बातें करेंगे ना, तकरार की थोड़ी
1: बिल्कुल सर
0: करेंगे,
1: कर रहा हूँ सर।
0: है ना?
1: हाँ जी
0: कैसे हैं राजेश सर, बारिश हुई थी क्या कल?
1: नहीं सर, वही सर
0: नहीं हुई अभी
1: मालिक का आज सुनाई कर ले तो। आज बादल भाई खूब है,
0: तो। बरानी फसलों के क्या हाल है आपके वहाँ?
1: बहुत अच्छी है अभी तक तो फिलहाल तो।
0: अच्छा, बिजाई हो गई खूब?
1: बिल्कुल होगी सर।
0: ग्वार मूंग मोठ की बिजाई, तिलों की आपने की होगी वहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा, चलो अच्छा है। हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि मौसम मेहरबान हो, क्योंकि फसलें भी जलने लगी हैं, तो
1: हाँ
0: बरसात
1: जी
0: यदि हो जाए एक अच्छी तो बरानी
1: हाँ
0: फसलों
1: जी
0: को भी फायदा मिलेगा।
1: हाँ जी। मैं एक
0: तो
1: गाना सुनना चाहता हूँ सर जी,
0: बताएं कौन सा?
1: तीसरी कसम फिल्म में गाना है
0: राज कपूर,
1: मैं। हाँ जी
0: वहीदा रहमान, है
1: गाने के
0: ना?
1: बोल है, सज्जन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है।
0: सिर्फ गाना है या अमल भी करते हैं इस पे?
1: नहीं अमल भी करते हैं, गाना भी आप सुनते हैं, ये
0: पसंद आता है आपको?
1: बिल्कुल पसंद आता है सर जी।
0: देखिए गीत के बोल ही ऐसे हैं, शैलेंद्र की फिल्म थी ये,
1: हाँ जी हाँ जी
0: जिसमें राज कपूर वहीदा रहमान ने काम
1: हाँ
0: किया
1: जी हाँ जी
0: था और फिल्म लिखी थी फणीश्वरनाथ रेणु ने।
1: अच्छा सर, और कुछ मेरे पास होता खड़े उसे नाम बोल दूँ?
0: बताइए सर, बताइए
1: ये है अनिल कुमार खंतड़िया,
0: जी।
1: योगेश कुमार खंतड़िया और महेंद्र कुमार खंतड़िया,
0: जी
1: रामकिशन स्वामी, ऐतराम हुड्डा, जसराम सारद, इतने हैं सर जी।
0: इनको बोलें कि सभी आज का प्रोग्राम सुने और हमें
1: बिल्कुल सुनते
0: नियमित
1: हैं
0: रूप
1: सर। ठीक
0: से कॉल भी करें, खत भी लिखें, व्हाट्सएप भी करें।
1: सर जी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आपके?
1: बस बढ़िया है। आप सुनाइए।
0: मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे चल रही है आपकी रिटायरमेंट की
1: बहुत
0: जिंदगी?
1: रिटायरमेंट की जिंदगी बहुत अच्छा है, लेकिन दो दो हाथों से दो दो फोन पर कॉल मिलाकर आप तक पहुंचता पहुंचता हाँफ गया हूँ मैं।
0: दो फोन से आपने ट्राई किया और आपका फोन लग गया? कई तो लोग 10-10 फोन लेके बैठते हैं हमारे साथी।
1: 10 फोन में हाथ तो दो ही होंगे। हाँ
0: हाथ धो ही होंगे उनके, साथी तो हैं, साथी हाथ बढ़ाना, परिवार वाले
1: ये
0: हैं।
1: बात है।
0: देखिए, एक व्यक्ति 5 नाम बोलते हैं तो 10 साथ हो गए ना।
1: मैंने तो 3 नाम बोलने होते हैं और दो फोन लेके बैठा हूँ दोनों हाथ से।
0: दो फोन हो गए, अब 3 नाम भी बता दें।
1: साथ में है प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का, मेरी पोती है 4 साल की। पोती
0: अच्छा, क्या करती है वो, कौन से स्कूल में पढ़ती है?
1: यहीं पढ़ती है, प्राइवेट स्कूल में है
0: अच्छा,
1: और UKG में है।
0: तो विद्यालय खुल गया तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी, जल्दी उठाना, स्कूल भेजना, टिफिन तैयार करना, है ना?
1: बिल्कुल, असल में आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट हैं, हमारी लाइफ से आराम से उठ जाते हैं। और असल में जिंदगी की खुशी की बात ये भी है कि वो अपने आप तैयार होने के लिए रहती है कि मुझे तैयार करो और स्कूल छोड़ के आओ।
0: ये तो अच्छी बात है, बच्ची में लगन है पढ़ाई के प्रति, और ये संस्कार
1: बिल्कुल
0: आप लोगों के हैं।
1: जी, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि परिवार का साथ रहता है बच्चों को, वैसा ही वो हो जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आज मैं

0: आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट हैं, हमारी लाइफ से आराम से उठ जाते हैं। और असल में जिंदगी की खुशी की बात ये भी है कि वो अपने आप तैयार होने के लिए रहती है कि मुझे तैयार करो और स्कूल छोड़ के आओ।
1: ये तो अच्छी बात है, बच्ची में लगन है पढ़ाई के प्रति, और ये संस्कार
0: बिल्कुल
1: आप लोगों के हैं।
0: जी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परिवार का साथ रहता है बच्चों को, वैसा ही वो हो जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज मैं नौनिहाल फिल्म का गीत सुनना चाहूंगा, हरी
1: अच्छा,
0: जुल्फ के साये में शाम कर लूंगा।
1: अरे अरे अरे अरे, काफी रोमांटिक गीत सुना है आपने।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कैफी आजमी ने गीत लिखा है और संगीतकार मदन मोहन है इस गीत के,
1: जी,
0: और बेहद अच्छा गीत है
1: अच्छा गीत है, अच्छे लोग सुनेंगे आज इस गीत को आपकी
0: जी, और
1: फरमाइश पर।
0: बिल्कुल अच्छे लोग ही सुनवाएंगे। आप
1: जी
0: भी
1: जी
0: बहुत अच्छे हैं संजय जी
1: ठीक है भूपेंद्र जी,
0: जी
1: सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये नगमा।
0: जी थैंक यू।
1: धन्यवाद।

0: आज आपके साथ और कौन कौन साथी हैं?
1: जी हमारे साथी है नारायण इंगले जी, सोपान तायड़े, आशीष मुरीकर, संतोष काले और सुनने वाले सभी श्रोता साथी थे।
0: क्या सुनाएंगे सभी दोस्तों को?
1: सर मुझे आज फिल्म का नाम है अमानत
0: बताइए गीत।
1: और स्वर दिया है मोहम्मद रफी जी ने
0: जी
1: और गीत के बोले मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं।
0: चलिए आपकी
1: जरूर
0: पसंद
1: सुनाए सर।
0: का गीत हम आपको सुनाते हैं। दुनिया तो मतलब ही कई लोगों के लिए है, लेकिन जो सेवा का काम करते हैं, एक दूसरे प्यार मोहब्बत रखते हैं, उनको जो मतलब है वो सिर्फ दोस्ती से, सेवा से है, प्यार से है। किसी ने लिखा भी है ना नावकर साहब की, यूं सरे राह मुलाकात हुई है अक्सर, यूं सरे राह मुलाकात हुई है अक्सर, उसने देखा भी नहीं, हमने पुकारा भी नहीं।
2: मतलब

0: हेलो मन भावन,
1: प्यार भरा नमस्कार सर।
0: आपको भी नमस्कार प्यार भरा।
1: नमस्कार सर, मैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नागौर बात कर रहा हूँ सर। ये हमारा गांव है नलेश्वर नगर नरवेल जिला बुलढाणा महाराष्ट्र।
0: अच्छा, महाराष्ट्र से आप बोल रहे हैं, वहां तो काफी बारिश हो रही है अभी,
1: बहुत बारिश आ रही है सुबह से।
0: तो कहीं बाढ़ के हालात तो नहीं है वहां? मुंबई में तो काफी जगह स्थिति खराब है।
1: नहीं, वो साधारण बारिश है
0: अच्छा, तो क्या करते हैं आप वहां नावकर साहब?
1: जी। हम तो मजदूरी का काम करते हैं सर।
0: अच्छा, जीवन यापन ठीक से हो जाता है?
1: जी,
0: तो रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
1: मैं तो 35 साल से रेडियो सुन रहा हूँ सर।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम?
1: आपके कार्यक्रम तो बहुत ही अच्छे होते हैं सर।
0: आज एक झलकी
1: और
0: बजी थी
1: कौन
0: सुबह, आपने सुना था उसको?
1: सा कार्यक्रम सर?
0: एक झलकी बजाई थी आज आपने, सेल्फी का सुख।
1: नहीं, वो मैं आज नहीं सुना।
0: अच्छा, आपने सुनी नहीं?
1: नहीं सर।
0: मन भावन सुनते हैं आप लगातार?
1: जी, मन भावन और फरमाइशी कार्यक्रम, सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
0: अच्छा,

0: हेलो मन भावन
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार। राम राम जी।
0: राम राम। राम राम,
1: आज तो चमत्कार हो गया,
0: कैसे?
1: मेरा फोन मिल गया। सुरेश
0: नाम बता दें फिर चमत्कार को, नमस्कार हम भी कर दें।
1: सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से। बढ़िया
0: गगनेजा जी, कैसे मिजाज है आपके? कितने
1: जी, बढ़िया। आज तो और अच्छे हो गए जी।
0: दिन बाद फोन लगाया आपका?
1: बस ना ही पूछे जी, एक मुद्दत ही समझे होगी, मिलता
0: एक मुद्दत
1: ही
0: के
1: नहीं जी,
0: बाद?
1: क्या करूं मैं।
0: अच्छा, या तो फोन बदल के देखें या नंबर
1: राजी,
0: बदल के देखें।
1: नंबर तो दोनों मैं लगाता हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन आज तो चमत्कार ऐसा हुआ। अभी 11:20 पे शुरू किया जी,
0: जी,
1: और देखिए 5 मिनट में मिल गया।
0: आज तो फिर आपने वो कहते हैं ना कि दही खाया होगा सुबह सुबह, है?
1: बिल्कुल, आपकी बात सही है। अभी
0: अच्छा
1: अभी आलू का पराठा दही के साथ खाया जी मैंने।
0: अच्छा अकेले अकेले
1: आप भी आते हैं, मुझे क्या पता था आप चाहवाने खाने के, तो मैं बुला लेता आपको।
0: चलिए, आज आपके साथी हैं और आपने जो इतनी प्यार भरी बात की ना, उससे हमारा पेट भी भर गया।
1: क्या बात है, बिल्कुल
0: कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम हमारे?
1: बहुत बढ़िया जी। जो आपने ये नया क्रम शुरू किया, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस मेरी एक ही गलती होती है, मैं भूल जाता हूँ।
0: भूलिए मत, देखिए यदि हम आपको भूल गए तो
1: नहीं, मैं नहीं
0: हाँ?
1: भूलने दूंगा जी। 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी
1: रेडियो
0: जी
1: से,
0: जी
1: और आपके साथ तो स्थापना से ही जुड़ा हुआ
0: तो बताएं,
1: हूँ।
0: आपने साथियों के नाम बताएं। गगनेजा जी
1: साथी हैं जी, ओम प्रकाश बगड़िया
0: जी,
1: और शीश अनेजा,
0: अच्छा क्या
1: बस
0: सुनवाएंगे
1: यही दो दोस्तों काफी हैं, लेकिन बस दो ही बताऊंगा जी।
0: बताइए, उनको क्या सुनवाना चाहते हैं
1: उनको सुना दिए, फिल्म है जीवन मृत्यु,
0: जी?
1: झिलमिल सितारों का आंगन होगा
0: ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।
1: जी। धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी।

0: हेलो मन भावन,
1: भोपाल मध्य प्रदेश से हर्षिता श्रीवास्तव बात कर रही हूँ सर। कवाई राजस्थान सती श्रीवास्तव जी की बेटी।
0: कैसे हैं आप?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: कौन कौन से प्रोग्राम?
1: मन भावन सुनते हैं, गीत गंगा सुनती हूँ, सूरतगढ़ सुनती हूँ।
0: तो सिर्फ फरमाइशी कार्यक्रम सुनती हैं, दूसरे भी सुनती हैं आप?
1: सर दूसरे भी सुन लेते हैं, जैसे महिलाओं के भी आते हैं ना।
0: हाँ, महिला जगत आता है, यूथ के लिए युवाणी आता है, किसान भाइयों के लिए चौपाल आता है,
1: और वो राजस्थानी गीत भी आते हैं।
0: हाँ गोरबंद भी आता है हमारा मंगलवार को।
1: और हाँ कल सुना था मैंने,
0: कल सुना था, कैसा लगा आपको?
1: जी अच्छा लगा सर।
0: समझ आती है राजस्थानी अच्छे से?
1: सर अच्छे से तो नहीं आती, पर फिर भी समझ में आ ही जाती है।
0: अच्छा, भाव समझ
1: जी
0: लेते हैं
1: सर।
0: आप, है ना?
1: हाँ जी।
0: कितने सालों से आप हमारे इस प्रोग्राम को सुनती आ रही हैं?
1: सर अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे 1-2 साल ही हुआ है।
0: अच्छा, पहले फोन किया कभी आपने?
1: नहीं पहले कभी नहीं किया, एक बार जरूर लगा था,
0: अच्छा
1: बहुत पहले लगा था।
0: काफी समय हो गया।
1: जी हाँ जी।
0: तो इतने दिनों के बाद याद आई आपको?
1: नहीं सर लगाती तो हूँ पर लगता नहीं।
0: लगता नहीं है। चलो, आज आपका फोन हमारे कार्यक्रम में शामिल हो गया।
1: पसंद तो कोई सा भी सुनवा दीजिए।
0: हमारी पसंद का
1: जी सर पिताजी के लिए सुनना है मुझे।
0: तो आप नहीं सुनेंगे रेडियो फिर?
1: हाँ जी।
0: देखिए, आज नीतू
1: क्या?
0: सिंह का जन्मदिन भी है, यदि आपको ध्यान में हो तो।
1: हाँ
0: 1958 में उनका जन्म हुआ था और इतनी शानदार अभिनेत्री रही है, और ऋषि कपूर
1: जी
0: के साथ
1: सर।
0: तो बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं।
1: हाँ
0: तो आप कहें तो उन्हीं की फिल्म का कोई गीत आपको सुनवा दें,
1: हाँ सर उनकी फिल्म का सुना दीजिए।
0: कोई विशेष पसंद हो
1: सर आप अपनी इच्छा से सुना
0: मेरी इच्छा
1: दीजिए।
0: से।

0: हेलो मन भावन।
1: हेलो मनभावन, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग रेडी के श्रोता सर, बस स्टैंड वंडा विलेज से लक्ष्मण चाय वाले बोल रहे सर। हाँ, कैसे हो सर?
0: मैं ठीक हूँ, आप बताएं।
1: बस भवन कर पाए, अब अभी अभी पानी गिरने लगा है।
0: कैसी है, तेज है बारिश
1: होने लगी।
0: तेज बारिश है क्या?
1: हाँ, बारिश होने लगी।
0: अच्छा, कई दिनों से हो रही है लगातार?
1: हाँ, लगातार तो नहीं हो रही, मगर थोड़ा थोड़ा गिर रहा है।
0: अच्छा, थोड़ा थोड़ा। तो इससे फसल से तो फायदा होगा वहाँ की, आपकी फसलों को?
1: हाँ, फसलों को अच्छा है, जैसे कम कम गिर रहा है तो अच्छी फसलें बढ़ती जा रही है।
0: तो लक्ष्मण जी, आप क्या काम करते हैं वहाँ?
1: हम तो चाय की दुकान है सर।
0: तो चाय तो
1: हाँ
0: फिर
1: सर।
0: ठंड में तो खूब बिकेगी, है ना?
1: हाँ, ठंड में हमारे तो 12 महीने बिकती है सर।
0: 12 महीने बिकती है चाय के साथ, तो दिन की शुरुआत होती है ना।
1: हाँ, बस
0: लक्ष्मण जी, कौन कौन है आपके परिवार में?
1: चार भाई है, चार बहुएं हैं, बस 5 बहनें हैं,
0: पोते पोती?
1: मम्मी है। भी हमारे बच्चे हो गए हैं, बच्ची दो हैं और बच्चा एक है।
0: अच्छा,
1: उसे तो मटके हैं।
0: तो नाम नाम बताएं उनके।
1: इनके अपने जैसे अपने दीपेश रैकवार, मिताली, वैष्णवी,
0: जी,
1: हाँ आयुष, ये
0: क्या सुनवाएंगे आप उनको?
1: दो रास्ते,
0: गीत कौन सा है?
1: ये रेशमी जुल्फे सरबतिया का।
0: ये रेशमी जुल्फे।
1: हाँ
0: बारिश को देख के याद आया क्या गीत आपको?
1: हाँ अच्छा लगता है, पुराने गीत सब अच्छे लगते
0: अच्छा, तो सुनवाते हैं आपको दो
1: हैं।
0: रास्ते फिल्म का ये नगमा।

0: हेलो
1: हेलो मन भवन
0: जी।
1: जी, मैं जयेश पंचाल बोल रहा हूँ, नवसारी गुजरात से, सूरत के बाजू में।
0: सूरतगढ़ के बाजू में?
1: नहीं, सूरत गुजरात है ना।
0: सूरत के बाजू में।
1: हाँ, वहाँ पे नवसारी पड़ता है।
0: अच्छा, छोटा कस्बा है, बड़ा शहर है ये?
1: बड़ा शहर है वो नवसारी, गुजरात में। मैंने पहली बार फोन किया है।
0: तो पहले कभी कोशिश नहीं की आपने या इच्छा नहीं हुई?
1: नहीं, इच्छा तो हुई पर नंबर नहीं मिला, तो वो नंबर मिला तो मैंने कोशिश की तो लग गया।
0: तो आप नंबर हमारा सेव कर लें, 1 महीने बाद फिर से आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल कर सकते हैं।
1: अब अभी तो मैंने पहली बार कॉल किया है, तो मुझको चलिए अब बात करते हैं। आप, तबीयत पानी अच्छी है ना
0: तभी तो
1: आपकी?
0: अच्छी है, तो और गुजराती में भी बोल के बता दें, बहुत प्यारी भाषा है गुजराती तो।
1: गुजराती में तो क्या बोलते हैं कि तबीयत पानी सारी है
0: अच्छा,
1: ना।
0: आपके वो जो नमकीन है काफी प्रसिद्ध है, खमन ढोकले है ना, फाफड़ा,
1: जी,
0: आपको भी
1: आप
0: पसंद
1: आइए
0: है?
1: कभी नवसारी गुजरात में, तो हम जरूर खिलाएंगे।
0: जरूर आएंगे तो जरूर आपकी सेवा का हम लाभ लेंगे जय जी।
1: और आपका कार्यक्रम रेडियो पे सुनता हूँ और मुझे रात को मिलता है फोन इन प्रोग्राम।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: तो आप दिन में सुनना चाहें तो मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर लें, न्यूज़ ऑन AIR।
1: जी, वो मेरे पास है ना, वो सादा फोन है, इसलिए मैं ब्लाइंड हूँ ना, तो मैं ये फोन यूज नहीं कर सकता।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: जी, वो कल दिलीप कुमार की पुण्यतिथि थी ना,
0: जी
1: तो वो दिलीप कुमार पर फिल्माया गया और मोहम्मद रफी का गाया हुआ वो दिल दिया दर्द लिया का गाना है ना,
0: जी कौन सा?
1: दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, वो गाना सुनने की इच्छा है मुझे। हाँ
0: तो आप किच्चा पूरी कर दें,
1: जी, वो कुछ दोस्तों का नाम ले लूँ?
0: बताइए सर, बताइए।
1: ऐप पे सुनने वाले हमारे रेडियो दोस्त है, सूरत गुजरात के पीयूष भाई मेहता है,
0: जी
1: और भावनगर के अफजल भाई है, और संबाद गुजरात के जिग्नेश भाई खारवा है।
0: अच्छा, सभी को
1: ये
0: सुनवाते
1: हमारे
0: हैं।
1: दोस्त है, रेडियो के माध्यम से मिले हैं मुझे।
0: अच्छा, चलिए ठीक है,
1: हाँ
0: सभी दोस्तों को याद आपने किया और
1: हाँ
0: ये गीत आपकी पसंद का हम आपको सुनवाते हैं।
1: जी, शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो मन भावन।
1: लतीफ अहमद रीना कश्मीर से। ये
0: लतीफ अहमद कश्मीर में कौन से स्थान से?
1: कश्मीर जिला का अंदर बस सोनमर्ग।
0: अच्छा,
1: आज यहाँ पे अमरनाथ यात्रा करने के लिए बहुत यात्रा आते हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: तो क्या होता है उस यात्रा में?
1: बस यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, बहुत यात्रा।
0: अच्छा, तो कैसी काफी भीड़ रहती है वहाँ?
1: हाँ, काफी रश।
0: तो मौसम तो ठीक है वहाँ? कोई गर्मी का मौसम या भारी बारिश हो, कोई पत्थरों का जो हिमस्खलन होता है वैसा तो नहीं है कुछ?
1: ना ना ना, मौसम ठीक है।
0: अच्छा, शांतिपूर्ण यात्रा वहाँ चल रही है।
1: हाँ, मौसम ठीक है। आज
0: आज
1: हमें गाना सुना
0: बताएं कौन सा गीत है,
1: है राजा हिंदुस्तानी का,
0: कौन सा नगमा?
1: आई हो मेरा जिंदगी में तुम बहार बन के।
0: आपको सुनाते हैं ये गीत। अपने साथियों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: रमेश प्रजापति और भगवान सिंह वर्मा
0: जी
1: और राकेश कुमार।
0: ठीक है, सभी साथियों को सुनवाते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये नगमा।

0: हेलो मन भावन।
1: हेलो मन भावन, मैं
0: हाँ जी
1: मोहम्मद जाकिर मंसूरी बोल रहा था, बाजार रोड मुंगीशापुर जिला कानपुर देहात।
0: अच्छा, पहले तो कॉल नहीं किया आपने हमारे प्रोग्राम में।
1: अरे कम से कम 1.5 महीना हो गया होगा।
0: कैसे लगते हैं आपको हमारे कार्यक्रम?
1: अरे भाई, आकाश पानी सूरज के सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: अच्छा
1: इसमें आपका गीत गंगा कार्यक्रम,
0: जी,
1: गोरवंद कार्यक्रम
0: अच्छा,
1: और ये पंजाबी प्रोग्राम चलते हैं ना आपके, तो खासकर जो फरमा व्हाट्सएप पे कार्यक्रम हो गए आपसे,
0: हाँ, तो ये कैसा लगा
1: सारे
0: आपको
1: कार्यक्रम
0: प्रयोग?
1: हिस्सा भी लेता हूँ और सारे कार्यक्रम पसंद भी करता हूँ।
0: व्हाट्सएप का प्रयोग आपको कैसा लगा?
1: बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात ये लगी, जिस श्रोता के दो दो श्रोता मैसेज करते थे ना,
0: हाँ,
1: उसको डिलीट कर देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक ही मैसेज करना चाहिए एक गाने के लिए हम और आपको, क्योंकि तो भाई बहुत सारे श्रोता सुनने वाले हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: सभी को उसमें जगह मिल जाए वो ज्यादा बेहतर होता।
0: देखिए, ये हमारी कोशिश है, बार बार हम संदेश भी डालते हैं कि दो बार आप मैसेज ना डालें, दो बार ईमेल ना करें, और फोन इन कार्यक्रम में भी 1 महीने के बाद ही आप हमें कॉल करें।
1: हाँ, और हम जैसे श्रोता, हम तो भाई कम से कम 1995 से जुड़े हुए हैं रेडियो से। जी
0: अच्छा, 30 साल हो गए आपको?
1: हाँ,
0: उम्र कितनी
1: और
0: है आपकी?
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से भाग लेता रहता हूँ हमेशा।
0: अच्छा, तो आपके साथ और भी साथी होंगे जो आपके इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं?
1: मेरा मेरा सारा परिवार होगा,
0: अच्छा,
1: सारा परिवार सुनकर बैठ बैठ कर सुनता है प्रोग्राम पूरा।
0: कौन कौन से साथी
1: और
0: हैं?
1: ये आप लोगों से छुपे नहीं है कोई भी नाम,
0: नाम
1: मेरी
0: बता
1: बेगम
0: दें।
1: साहिबा है,
0: जी
1: कमरुन निशा,
0: जी
1: बेटी सविस्ता, दामाद नसीब,
0: अच्छा,
1: और पलक लुबना, और बेटा यश मंसूरी।
0: तो सभी को क्या सुनवाएंगे आज?

0: आज आप फिल्म आग और शोले का गीत सुना दीजिए।
1: आग और शोले का कौन सा गीत?
0: मनहर उदास और अनुराधा बड़वाल जी की आवाज है,
1: जी
0: और इस समय मेरे यहाँ बारिश हो रही है और बारिश का ही मजा ले रहा हूँ,
1: जी
0: और बारिश का ही नगमा है ये, बरसा रे बरसा आपके बरस जो बरसा रे पानी।
1: फिल्म का नाम आग और बात बारिश की।
0: आग आग और शोला।
1: हाँ, तो आग और शोला और बात आप बारिश की कर रहे हैं ना?
0: इन चीजों का मिश्रण अच्छा होता है
1: जी, पसंद आपकी
0: ना।
1: अच्छी है और समय अनुकूल है पूरा।
0: और आपका कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो अंदाज होता है बेहद लाजवाब होता है।
1: देखिए, बात ही आपकी ऐसी है तो फिर कार्यक्रम तो सफल होगा ही, अच्छा लगेगा ही।
0: ये तो हम आप लोगों से ही सीखा है
1: जी, कुछ हम भी आपसे
0: कि
1: सीखते
0: समय से
1: हैं।
0: प्रोग्राम सुन चले आ रहे हैं, तो सब आप लोगों से सीखा है, पूरा आकाशवाणी हमको सिखाता है। चलिए,
1: आपका अंदाजे बयां वो भी हमें अच्छा लगा।
0: हमें भी आपके बहुत अच्छा अंदाज लगा, और आपसे बात करने का अंदाज, आपने मुझसे बात की है,
1: जी
0: इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ आपका।
1: धन्यवाद। सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये नगमा।
0: ओके जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो मन भवन कार्यक्रम। कार्यक्रम के संयोजक थे नवीन सिसोदिया, तकनीकी सहयोग में मिला जितेंद्र सिंह, ओम प्रकाश वर्मा, कप्तान सिंह और धर्मपाल का। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। यदि आप भी हमारे इस प्रोग्राम में टेलीफोन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीफोन नंबर हैं 01509-220-992 और 220-993। प्रत्येक बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं। और अब कार्यक्रम से अपने साथी संजय बैद को इस बात के साथ अनुमति दे दें, किसी से ख्वाब का चर्चा न करना, तमन्नाओं को बेपर्दा न करना, जमाना लाख बहकाए मगर तुम, वफाओं का कभी सौदा न करना, खताओं की सजा आखिर मिलेगी रुलाएगा उसे तोबा न करना, बिछड़ते वक्त आंसू रोक लेना, तुम अपने आप को रुसवा न करना। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आप ही के टेलीफोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो मन भवन। प्रस्तोता थे संजय बैद, निर्देशक और संयोजक नवीन सिसोदिया।

0: हम आकाशवाणी सूरतकल के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। 11 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया के मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ

0: over Belgium's Elise Martins. And that's the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ के कॉटन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी ये सभा संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में सवेरे 5:52 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। जय हिंद।